दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं क्यों उसका भला करूं, पर जो उसने किया वो उसके कर्म है। हम किसी के बारे में गलत सोचकर अपने कर्म क्यों खराब करें? आइए सुनते हैं घर संसार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में फिल्म अनाड़ी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हमें ना आगे का पता है और ना पीछे का, यानी ना भूतकाल का और ना ही भविष्य का। हमारे पास जो भी पल है वो आज ही है, तो उस आज को क्यों ना बढ़िया से जिया जाए। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, आपके पास जो पल है उसी का ही आनंद लीजिए और अब हमें भी भोर सुहानी कार्यक्रम से इजाजत दीजिए, मुझे यानी अर्चना को, और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम अर्पण। सुबह 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरितमानस गान का।

गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:10 पर। सुबह 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज सवेरे।

सुबह 8:45 का समय रहेगा। कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी का 9:10 पर सुनिएगा स्पेशल सीरीज जन सेवा से देश सेवा।

म्यूजिकल दिल्लगी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 9:45 पर भी। 10:30 का समय रहेगा कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स।

सुबह 11:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम तस्वीर। 12:10 का समय रहेगा आकाशवाणी FM गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन का।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुलसी राम ते अधिक राम भगत जिए जान, रनिया राजा राम में धनिक भये हनुमान। जी हां, श्री राम के भक्त को राम जी से भी अधिक समझा जाता है। जहां राज राजेश्वर श्री रामचंद्र भी हनुमान जी के ऋणी हो गए। ये भक्ति की ताकत है जो भगवान को भी अपने भक्त का ऋणी बना देती है। ये अर्पण की ताकत है जो जीवन की राह को और अधिक आसान बना देती है। मंगलवार की ये प्रभात मंगल की मुक्ता के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए सर्वप्रथम अर्पण करें श्री हनुमान के चरणों में।

एक भक्त ये जानता है कि हर एक अंत नई शुरुआत का संकेत होता है। सृष्टि के इसी नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं महादेव। भगवान शिव केवल संहारक नहीं बल्कि परिवर्तन और पुनर्जन्म के भी देव हैं। शिव सत्य हैं, सुंदर हैं। शिव शक्ति है, शिव विश्वास है।

ब्रह्म ज्ञान अशांत मन और शांत आत्मा के बीच एक पुल की तरह है। सत्य का ज्ञान होने पर हम अपने और इस सर्वशक्तिमान निरंकार के बीच संबंध को समझने लगते हैं। हो सकता है इस जागृति से पहले ज्यादा सोचना, आंतरिक द्वंद होना हमारी शांति को भंग करते रहें, लेकिन ये भी सत्य है कि हम जब जब अर्पण करेंगे तब तब ये शक्ति आएगी कि हम जीवन का सामना, घटनाओं का सामना, हालात का सामना निडरता से कर पाएंगे। अर्पण की इसी ताकत को आप कर रहे हैं महसूस आकाशवाणी की एफएम गोल्ड चैनल पर। मंगलवार की इस प्रभात 6:25 और ठीक 36 सेकंड हो चले हैं। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जो भी मनुष्य इस परमात्मा की कृपा का पात्र है वो ये जानता है कि मेरा इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो ये जानता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे परमात्मा मेरे साथ खड़े होंगे। भक्त के इसी विश्वास को दृढ़ करने के लिए लिखा भी गया है कि जिस तू रखे हथ दे, तिस मार न सके कोई।

ये संसार दुख नहीं है, बल्कि इस संसार के प्रति हमारा मोह, अपनापन और आसक्ति ही दुख का कारण बनते हैं। संत कहते हैं कि हे मानव, जब तू इच्छाओं से, लालसाओं से मुक्त होता चला जाएगा, तब समझना कि तूने मुक्ति पाई है और तेरे जीवन में भी इसके बाद चिर शांति आनी शुरू हो जाएगी। संसार उपभोग के लिए मिला है, मछली बनकर नदी में रहना है, लेकिन पानी को अपने भीतर आने नहीं देना।

इसकी कृपा से लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है। लिखा गया है, यहां का सब कुछ यहीं रहेगा, साथ न कुछ भी जाएगा। यहीं तेरा बस जोर चलेगा, वहां नहीं चल पाएगा। इसीलिए संत कहते हैं, करते रहिए अर्पण। 6:44 और ठीक 27 सेकंड हो चले हैं। अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। आइए मिलकर श्रवण करते हैं।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाह

समाधि में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं। रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरि भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हट करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: दाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में 2026 से 2029 के दौरान स्वापक नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रमुख उद्योग सूचकांक ICI में इस वर्ष अगस्त में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई में ये 5% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। इसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इनमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें 14 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिला प्रशासन में भी बदलाव किया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक के मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने कल निशानेबाजी में 3 पदक जीते, जबकि सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Marking a new chapter in India cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema, as part of a major policy initiative by the Ministry of

0: प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: सात बजकर 24 मिनट और ठीक लीजिए हो चुके हैं 43 सेकंड। जनाब, जीवन में अनुभव लेते रहने चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुभव अच्छे हों या बुरे ये कुछ ना कुछ सिखा तो जाते ही हैं।

जनाब, अगर गौर से देखा जाए तो जीवन की हर एक घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हर एक चुनौती में एक सबक छिपा हुआ होता है, हर एक अजनबी में एक पहचान छिपी हुई होती है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। अगर हम चेतन हैं, अगर हम जागरूक हैं, तो हम बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी अनकही और बहुत सारी कठिनाइयां पार कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, सुबह उठिए, अपने आप से मिलिए, खुद से बात कीजिए, खुद को पहचान लेंगे ना तो दुनिया की समझ आनी शुरू हो जाएगी। 7:29 और ठीक 21 सेकंड हो चले हैं। वक्त अब आपसे इजाजत लेने का है। आप सुन रही थी गोल्ड सुप्रभात और अब समय हो चुका है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत, आपसे मिलेंगे म्यूजिकल दिल्लगी में 8:45 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार। नदी कभी ये नहीं पूछती कि ये रास्ता कितना लंबा है, वे बस बहती रहती है क्योंकि उसे पता है समंदर तक पहुंचना उसका वादा है। हम भी अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा बहते रहें, रुके बिना, थमे बिना, तो मंजिल खुद ब खुद हमारे कदमों तक चली आती है बिना किसी शिकवे के। श्रोताओ, जिंदगी में जरूरी नहीं कि हम कितनी तेज चले, जरूरी ये है कि हम चलना बंद ना करें। नदी की तरह अगर हम अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहें तो हर मुश्किल अपने आप छोटी लगने लगती है और इसी प्रकार एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास और उमंग के साथ आज सवेरे कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नीना आरिकल। हेलो नीना।
1: हेलो वैष्णवी। And you said about walking continuously, and it's not what we do once in a while that shapes our lives, it's what we do consistently.
0: Bilkul.
1: And Vaishnavi, consistency can actually be our superpower.
0: Ji.
1: With that thought, a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 22nd of September 2026. Let's begin with the headlines, Vaishnavi.
0: Bilkul. Aaj ka pehli khabar hai. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सिनेमा में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए आज शाम गुजरात के एकता नगर में ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। 1954 में शुरू किए गए ये पुरस्कार भारत के सिनेमा जगत के शीर्ष सम्मानों में गिने जाते हैं और फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ये समारोह पहली बार एकता नगर में आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन भारतीय सिनेमा की विविधता और रचनात्मक प्रतिभा को सम्मान देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ परणा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: From the glamour of Indian cinema, let's now turn to an important effort aimed at protecting society and the nation's future from the challenge of drugs. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads in New Delhi today. Organized by the Narcotics Control Bureau, the two-day conference will focus on strengthening efforts against drug abuse and protecting the younger generation from the menace of narcotics.
0: और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रयासों के बाद अब रुख करते हैं भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत की एक खूबसूरत झलक की ओर, जहां परंपरा, प्रकृति और पारिवारिक रिश्तों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। झारखंड में आज करम पर्व पूरे उत्साह और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्रकृति के प्रति सम्मान और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य भर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: झारखंड की लोक संस्कृति और प्रकृति आराधना का सबसे बड़ा उत्सव कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ों में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेशवासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। रांची के ऑड्रे हाउस में कल कर्म पर्व पर संगोष्ठी सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ढोल नगाड़ों और मांदर की थाप के साथ पारंपरिक पारंपरिक कर्म गीतों की गूंज से पूरा परिसर झारखंडी रंग में रंग गया। कर्म पर्व फसलों की सुरक्षा, प्रकृति के सम्मान और भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व पर बहनें भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की डाली स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में कर्म पूजा स्थलों और अखड़ों की साफ सफाई, रोशनी, पेयजल और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कर्म पर्व की तैयारियों का जायजा लिया है और विभिन्न आयोजनों में भागीदारी की है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: श्रोताओं, परंपरा से जुड़ी ये भावना हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति हमारी ताकत है, और इसी सकारात्मक सोच के साथ अब बात करते हैं स्वस्थ भविष्य की एक प्राचीन और विश्वसनीय परंपरा की।
1: The 11th Ayurveda Day will be celebrated tomorrow under the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow. More than 9,700 activities have been reported across 30 states and union territories, with over 3 lakh participants registered. The Ministry of Ayush informed that around 89 lakh citizens have also pledged their support through the Ayurveda Day 2026 microsite ayurvedaday.org.in. A healthier tomorrow also depends on cleaner and smarter energy choices, and Delhi is taking another step in that direction.
0: बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नया पंजीकरण पोर्टल solar.delhi.gov.in शुरू किया है। इसका उद्देश्य दिल्ली वासियों के लिए घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार 78,000 रुपए की सब्सिडी देगी, यानी कुल मिलाकर 1,56,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती है। सूरज की ऊर्जा से लेकर विज्ञान की नई रोशनी तक, अब बात एक ऐसी पहल की जो युवाओं में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा दे रही है।
1: The Council of Scientific and Industrial Research has launched the CSIR Science and Innovation Quiz, or CSIR Sci Quiz, on the My Bharat portal in association with the Ministry of Youth Affairs and Sports. Open to all Indian citizens, the quiz is being conducted from 20 to 26 of this month. It will feature questions on CSIR's scientific achievements, technologies, innovations and contribution to society. Curiosity begins with looking up and wondering about the world around us, and now students and astronomy enthusiasts in Srinagar will have a new window to explore the universe.
0: एनआईटी श्रीनगर देश का पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनने जा रहा है, जहां परिसर में समर्पित खगोलीय वेधशाला होगी। इसका उद्घाटन आज किया जाएगा। वेधशाला में 14 इंच का उच्च क्षमता वाला श्मिटिक कैसग्रेन टेलीस्कोप लगाया गया है। इसके जरिए चंद्रमा, ग्रहों, तारों के समूह और दूरस्थ आकाश गंगाओं का अध्ययन किया जा सकेगा। ये सुविधा छात्रों के प्रशिक्षण, शोध और खगोल विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। आसमान की दूरियों से अब लौटते हैं अपनी नदियों की ओर, जहां इतिहास, संस्कृति और हमारी स्मृतियां सदियों से बहती आई हैं।
1: The Indira Gandhi National Center for the Arts in New Delhi will organize the 7th edition of Nadi Utsav from Thursday to Saturday. This year's festival focuses on the Yamuna River and explores the river as a source of life, memories, culture and history. We have a report.
4: The 3-day festival this year is themed on the eternal Yamuna, chronicles of conflict, biotic healing and the socio-cultural hearth. Addressing a press conference in the national capital, Member Secretary of the IGNCA, Dr. Sajidran Joshi, said that the vision behind this festival is to connect our bond with rivers in Indian culture. He said the country's traditional rituals, custom, fast and festivals are deeply tied to rivers. Therefore, the river is an integral part of everyone's life and serves as a source of inspiration for countrymen. He highlighted that the objective of the entire river festival is to collectively reflect on rivers and deliberate on how to conserve them.
5: नदियों के बारे में वो चेतना, वो जागृति नहीं हो पाती जो हमारे पुराने लोगों को होती थी, जो नदियों के किनारे रहे, नदियों के किनारे जो हमारी संस्कृतियां पनपी बढ़ी। और इसलिए अगर कोई नदी किसी संकट में है, किसी खतरे में है, उदाहरण के लिए अभी हम लोग यमुना नदी के प्रदूषण के बारे में चर्चा करते हैं, यमुना नदी को स्वच्छ करने के बारे में चर्चा करते हैं।
4: In addition to that, IGNCA will host a documentary film festival with the theme River as an Archivist. Renowned documentary filmmakers from across the country who make films on rivers are participating in the event. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: And finally, we move from rivers and culture to the excitement of sport, where determination and teamwork take center stage.
0: बिल्कुल नीना, अब खेल खबर की ओर रुख करते हैं. जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे. ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया.
1: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in a special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through natural farming.
6: Apart from mystic lakes and snow-capped mountains, Sikkim is famous for its vast agricultural offerings, not only in India but to the world. Sikkim has been

0: Declared as first organic state and is famous for crops like large cardamom, ginger, buckwheat, etc. Sikkim produces around 90% of large cardamom, which is highest large cardamom production in India and is exported to countries like Australia and UAE. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has played a pivotal role in natural farming scenario in Sikkim. Prime Minister Narendra Modi visited Sikkim on April 2026 and said,
1: "Hamara Demajong ab keval rice utpadan ke liye nahi jana jata. Uski pehchan ab ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
0: Apart from large cardamom, buckwheat is one of the crops that's extensively harvested in Sikkim, which is around 1600 kg per hectare. Being the third largest crop and second most common cereal crop in Sikkim, buckwheat has a GI certification. With time and with farm collaboration with Government of India, ICAR Sikkim and Department of Agriculture, Government of Sikkim, the scene of natural farming as well as organic farming is growing stronger in Sikkim. Moinak Chatterjee from Akashwari News, Gangtok.
2: श्रोताओं, अब जरा अपना सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। तो शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आज की खबरों में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है।
3: And now news from Chennai. A high-level delegation led by Ghana's Interior Minister Mohammed Mubarak Muntaka visited the State Crime Records Bureau in Chennai to study the crime records management and use of technology in policing from administrative processes to day-to-day work. The delegation was briefed on the crime and criminal tracking network and systems, crime data integration and digital record maintenance.
2: और चेन्नई से आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस जी से कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे, लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि समारोह के कारण दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने सरकार से ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम, तय शोर की सीमा और उनके पालन की स्थिति की जानकारी मांगी है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा है। नीना, ये पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेज शोर का जो असर है वो केवल बच्चों, बुजुर्गों या ध्वनि के प्रति संवेदनशील लोगों पर ही नहीं रहता, बल्कि पालतू जानवरों और सड़क पर रहने वाले कुत्तों जैसे बेजुबान जीवों पर भी पड़ता है, जिनके लिए तेज आवाज डर और परेशानी का कारण बनती है।
3: Now I'm actually apprehensive of the crackers which will be burst during the festival time. So we need to take care of that also. So now from Mumbai, we move to Bengaluru. Karnataka's Food Safety and Drugs Administration has cancelled the licenses of 16 pharmaceutical firms and suspended those of 8 others, including Pfizer's depot in Bengaluru, over alleged involvement in supply of spurious medicines. Health Minister U.T. Khader said the action followed raids in Bidadi and Oderi areas where suspected counterfeit drugs worth around 5 crore rupees, along with fake labels and bills, were seized. An SIT is probing the racket. The FDA has blocked the related batch numbers and sent samples for laboratory testing. It has urged the public to buy medicines only from licensed pharmacies and insist on valid bills.
2: और रुक करते हैं कोलकाता की। अब पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र में किए जा रहे सरकारी निवेश के वित्तीय रिटर्न और प्रभाव का आकलन करने के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स CMA की मदद लेने की योजना बना रही है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम

0: में उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटकों की पसंद और व्यवहार को समझकर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ ये भी देख रही है कि सरकारी धन का कितना प्रभावी और लाभदायक उपयोग हो रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए पर्यटन विभाग कई बड़ी पहल की तैयारी कर रहा है।
1: News from Hyderabad. Indian Institute of Technology, Hyderabad hosted the 11th Babul Eco Film Festival on campus, aligning with the global celebrations of the United Nations International Year of Rangelands and Pastoralists 2026, organized by Dr. Rashmi Singh of the Department of Liberal Arts in collaboration with the Babul Film Society. The event highlighted the crucial connections between herding communities, ecosystems, and climate change through cinema and interactive exhibits. The festival showcased international and Indian documentaries, including Dr. Singh's research-backed films on Himalayan pastoral life, alongside an eco-cartoon display by cartoonist Jeet Royards, a photography exhibition, and a recycling drive.
0: और नीना, अब मौसम का हाल जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से ही। दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई की बात करें तो यहां आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यहां अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और यहां भी कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
1: Metro City weather news of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is likely to see rain or thundershowers in evening or night. The temperatures are expected to range between minimum 25 degrees and maximum 36 degrees Celsius. Bengaluru is to experience generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature is expected to be 20 degrees while the maximum may reach 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see generally cloudy sky with moderate rain. Temperatures are expected to range from 23 degree to 32 degree Celsius.
0: और श्रोताओं, अब जानते हैं आज के दिन की विशेषता। आज शरद विषु है, एक ऐसा दिन जब दिन और रात लगभग बराबरी पर आ जाते हैं। प्रकृति की घड़ी में भी कुछ पल ऐसे आते हैं जब दिन और रात मानो एक दूसरे के सामने बराबरी पर खड़े हो जाते हैं, और ऐसा ही खगोलीय अवसर है शरद विषु। शरद विषु वे समय है जब सूर्य आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता हुआ दक्षिण की ओर बढ़ता है और उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों को लगभग समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसी वजह से इस समय दुनिया के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात की अवधि लगभग बराबर हो जाती है। हालांकि दिन और रात बिल्कुल 12-12 घंटे हो, ऐसा हर स्थान पर नहीं होता। उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव खगोलीय शरद ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है। इसके बाद धीरे धीरे यहां दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत वसंत ऋतु शुरू होती है। तो शरद विषु सिर्फ मौसम का बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर निरंतर यात्रा और उसके अक्ष के झुकाव से जुड़ी एक खूबसूरत खगोलीय घटना है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति भी अपने संतुलन के क्षण तलाशती है। और अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है।
1: In 1789, the Office of the Postmaster General of the United States was officially established by the U.S. Congress, creating the foundation of the modern postal system.
0: और 1888 में आज ही के दिन पहली बार विश्व प्रसिद्ध विज्ञान और अन्वेषण पत्रिका National Geographic मैगजीन का पहला अंक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हुआ था।
1: In 1953, the four-level interchange in Los Angeles, the world's first multi-tier stack freeway interchange was officially opened to public traffic.
0: और 1955 की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में पहली बार व्यावसायिक टेलीविजन नेटवर्क ITV का शुभारंभ हुआ, जिसने ब्रिटिश प्रसारण मीडिया में एक नए युग की शुरुआत की।
1: In 1961, U.S. President John F. Kennedy signed congressional legislation formally establishing the Peace Corps, encouraging international peace and volunteer development work.
0: और 1964 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे में क्लासिक संगीत नाटक फिडलर ऑन द रूफ का पहला सफल मंचन हुआ, जो थिएटर इतिहास के सबसे लोकप्रिय

0: नाटकों में से एक बना।
1: In 1991, the Huntington Library in California officially made photographic archives of the ancient Dead Sea Scrolls accessible to researchers and the public for the first time. And in 2006, the Atlantis Space Shuttle, which had been on a construction mission to the International Space Station, landed safely at the Kennedy Space Center in the United States. A 10-member National Cadet Corps team also departed for Moscow. And in 2007, Iran displayed the missile, which had a range of 1,800 kilometers, a NASA aircraft discovered seven cave-like formations on Mars.
0: और इतिहास की इन घटनाओं के बाद अब आपको मिलवाते हैं उन शख्सियतों से जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। एक ऐसी वाणी जिसने धर्म को केवल पूजा की परिधि में नहीं बल्कि सत्य, सेवा और मानवता के आचरण में देखा, वे थे गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ईश्वर की एकता, मानव समानता और सच्चे आचरण का संदेश दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक देव जी करतारपुर में रहे, जहां कीर्तन और लंगर की परंपरा को उन्होंने जीवन का हिस्सा बनाया। उनकी वाणी का एक बड़ा हिस्सा आगे चलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हुआ। उनकी वाणी का सार मानो इन शब्दों में सुनाई देता है, सचू ता परो जानिए जा सच्ची धरे पियार, अर्थात सच्चाई को वही समझ सकता है जिसके जीवन में सच्चे आचरण के प्रति प्रेम हो। ये पंक्ति गुरु नानक देव जी की सोच को सामने लाती है, जिसमें सिर्फ सत्य बोलना नहीं बल्कि सत्य को जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है।
1: Today we fondly remember a legend who redefined Indian cricket, Nawab Mansur Ali Khan Pataudi, fondly called Tiger Pataudi. Born in 1941, he carried the royal legacy of the Pataudi family, but it was his fearless spirit on the field that made him unforgettable. At just 21, he was handed the reins of the Indian cricket team, becoming one of the youngest captains in history. And what a captain he was, leading with courage, vision and an unshakable belief in his players. Despite losing vision in one eye after a car accident, Tiger Pataudi never let adversity dim his brilliance. His sharp reflexes and unmatched agility earned him the title of the best fielder in the world from cricketing greats like John Arlott and Ted Dexter.
0: रंगमंच से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी सहज अदाकारी से अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री थी आशालता वाबगांवकर। गोवा में जन्मी आशालता ने मराठी और कोंकणी रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की और आगे चलकर 100 से अधिक मराठी फिल्मों के साथ हिंदी सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। नमक हलाल, शौकीन, अंकुश, सदमा, कूली और घायल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। वे केवल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि गायिका और नाटककार के रूप में भी सक्रिय रही। आशालता जी की अभिनय सफर को याद करते हुए अब सुनते हैं फिल्म अपने पराये का लोकप्रिय गीत आई निंदिया रानी।

0: हिंदी और मराठी सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनकी पहचान केवल उनके निभाए किरदारों से नहीं बल्कि उनके पूरे सफर से बनती है। दुर्गा खोटे ऐसी ही अभिनेत्री थी, आज उनकी पुण्यतिथि है। लगभग 5 दशक से अधिक लंबे करियर में दुर्गा खोटे ने करीब 200 फिल्मों और सैकड़ों नाटकों में अभिनय किया। भरत मिलाप, मुगले आजम, मिर्जा गालिब, बिदाई और बॉबी जैसे फिल्मों में उनके यादगार किरदारों ने उन्हें अलग स्थान दिलाया। नीना, मुगले आजम की फिल्म की बात हो और उनका वो संवाद ना सुने तो ऐसा कैसे हो सकता है, आइए श्रोताओं को सुनाते हैं।
1: सलीम, दुनिया खुशी में झूम रही है या मेरी नजर कांप रही है? बाहर बाहर मुझे सहारा दे। बरसों के बाद वो न जाने किस आवाज में माँ कहकर पुकारेगा। ये नई आवाज मैं किस तरह सुनूंगी? ये शब्द कान के पर्दों से टकरा कर।
0: दुर्गा खोटे को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए भी पुरस्कार मिला था बिदाई फिल्म के लिए, जबकि 1968 में पद्मश्री और 1983 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
2: Andrea Bocelli, born on 22nd September 1958, is one of the world's most beloved tenors, a voice that bridges classical tradition with popular appeal. His rise to fame began in 1994 when he won the newcomer section of the Sanremo Musical Festival with Il Mare Calmo della Sera. Since then, Bocelli has recorded 15 solo studio albums spanning pop and classical genres. Beyond music, Bocelli's artistry and charisma earned him recognition as one of People magazine's 50 most beautiful people in 1998. His collaboration with Celine Dion on The Prayer for Quest for Camelot won a Golden Globe and remains a cherished anthem of hope. Here's the song.

0: खूबसूरत गीत के साथ आज के आज सवेर में बस इतना ही। उम्मीद है आपकी ये मुलाकात, आज की हमारी मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
3: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
5: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु

0: से तुकाराम घोड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
2: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
3: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
4: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जाएगी।
3: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
5: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
3: सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
6: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने के जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में 20 अरब डॉलर निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature, and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The president will also honor the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. Our report.
9: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

0: tribal fashion show was the main attraction. Karam festival is considered a symbol of crop protection, respect for nature, and the endearing bond between brothers and sisters. On this occasion, sisters observe a nirjala fast, praying for the well-being and long life of their brothers. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
1: On to sports now. In women's cricket, India will face Sri Lanka in the gold medal clash at Asian Games Indus in Japan today. The match will begin at 10:30 a.m. IST. India sealed their spot in the final with a dominant 114-run victory over Bangladesh. Sri Lanka had secured their place in the title clash with a win over Pakistan. A deep depression over the west central Bay of Bengal is likely to intensify further into a very deep depression during the next 24 hours and move west-northwestwards. The Alipur Met Office said the system is likely to cross the coast between Visakhapatnam and Gopalpur later tonight or by Wednesday morning. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
2: Thank you, Saira. The Hindu headlines, India-New Zealand FTA to come into effect on October 20. Hindustan Times headlines, Delhi court revives complaint against Sonia in voter list case, while the Pioneer says Sonia voter roll row probe revived. The Indian Express informs IIT Mumbai removes professor named in student suicide from Dean post, while Hindustan Times says IIT Bombay suspends Dean as student stir rages. The Times of India notes grounds in writing a must during arrest even in UAPA, says Supreme Court. The newspaper also writes swept away elephant calf saved by fishermen, adding that the newborn elephant calf had nothing left above water but its trunk. And finally, the Pioneer says, keep faith, drop cruelty. Delhi urges temples to swap live jumbos for mechanical ones. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister Ajay Shankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जे शंकर ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की है। बरतानिया ने ईरान की पुश्त पनाही वाले हौसियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। और ख्वातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। ये अवार्ड देने का सिलसिला 1954 में शुरू हुआ था और ये अवार्ड्स सिनेमा में फीचर, गैर फीचर और कहानी समेत मुख्तलिफ जुमरों में फनकारी और तकनीकी महारत को तस्लीम करते हुए मुल्क के आला तरीन सिनेमा एजाज की नुमाइंदगी करते हैं। इत्तला नशरियात की वजारत की जानिब से एक बड़े पॉलिसी कदम के तौर पर अवार्ड दिए जाने की यह तकरीब कौमी राजधानी से बाहर किसी दीगर रियासत में हो रही है। सदर जमहूरिया मुमताज अदाकार अनंतनाग को 2024 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सरफराज करेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: तारीखी एकता नगर में रोशनियों के साथ शानदार स्टेज सज चुका है, क्योंकि केवड़िया पहली बार तारीखी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सिनेमा के इस अजीमुशान जश्न के लिए मुल्क भर से नामवर अदाकारों, मारूफ फिल्म साजों और तकनीकी माहिरीन ने तकरीब का पहुंचना शुरू कर दिया है। ये तकरीब साल 2024 की शानदार सिनेमाई कामयाबियों को सराहने के लिए मुनक़िद की जा रही है। फीचर फिल्मों के अहम ऐलानात में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि यामी गौतम ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा अवार्ड जीता है। बेहतरीन अदाकार का एजाज ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरक तौर पर दिया गया है। राजकुमार पिरास्वामी ने अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड हासिल किया है, जबकि कालकी 2898 एडी को बेहतरीन मकबूल फिल्म का अवार्ड मिला। रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्रिया वीर सावरकर के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीता। रवि राय मुर्मू ने संथाली फिल्म अंगेन के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर गैर फीचर फिल्म का एजाज हासिल किया। एकता नगर से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
3: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मुनशियात मुखालिफ टास्क फोर्स के सरबराहों की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजारत दाखिला ने बताया है कि इस मौके पर जनाब अमित शाह लखनऊ और देहरादून में मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो के जोन के नए कॉम्प्लेक्सेस का वर्चुअल वसीले से संगे बुनियाद भी रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
5: ये दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुत्तहदा अज़्म और मुश्तरका जिम्मेदारी के मौजू पर मबनी है और इसमें मुनशियात मुखालिफ टास्क फोर्सेस को सौंपे गए मकासिद की पेशरफ्त और मुल्क में मुनशियात की स्मगलिंग और इसके बेजा इस्तेमाल की लानत से निमटने के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जनाब अमित शाह इस मौके पर मुनशियात की लानत के खिलाफ बेदारी फैलाने के लिए टेलीविजन कमर्शल्स भी जारी करेंगे। दाखिला की वजारत के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मुनशियात मुखालिफ टास्क फोर्सेस के सरबरा शिरकत करेंगे। इस तबादले ख्याल से इसमें शिरकत करने वाली रियासतों, महकमों और एजेंसियों को अगले 3 साल में पूरे मुल्क में मुनशियात की स्मगलिंग से मौसर अंदाज से निमटने की समत नए अहद के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
3: इंतखाबी कमीशन मगरबी बंगाल में ट्राइब्यूनल की तादाद में इजाफा करने का इरादा रखता है ताकि उन अफराद की दरखास्तों पर तेजी के साथ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके जिनके नाम SIR अमल के दौरान वोटर फहरिस्तों में शामिल नहीं किए गए हैं। रियासत में फिलहाल 19 ट्राइब्यूनल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि उम्मीद है कि इंतखाबी कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में अपने इस मौकिफ को पेश करेगा कि रियासत में हर लोकसभा हलके के लिए एक ट्राइब्यूनल मुकर्रर करके इनकी तादाद बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज वोटर फहरिस्तों पर खसूसी तफसीली नजरसानी से मुतालिक 13 दरखास्तों की समाअत होनी है। उम्मीद है कि चुनाव कमीशन समाअत के दौरान अदालत आलिया को मजीद ट्राइब्यूनल की जरूरत से वाकिफ कराएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि कुदरती खेती के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: भारत और दुनिया भर में सिक्किम न सिर्फ अपनी खूबसूरत झीलों और बर्फीली पहाड़ों के लिए बल्कि अपने बड़े पैमाने पर ज़रई पैदावार के लिए भी मशहूर है। साल 2016 में सिक्किम को पहली नामियाती रियासत करार दिया गया था। सिक्किम बड़ी इलायची, अदरक, बकवीट वगैरह के लिए मशहूर है। यहाँ बड़ी इलायची की तकरीबन 90% पैदावार होती है जो ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे ममालिक में बरामद की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने सिक्किम में कुदरती काश्त के लिए के सिलसिले में अहम रोल अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में सिक्किम का दौरा किया था और कहा,
6: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और

0: दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
1: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा बकव्हीट की काश्त वसी पैमाने पर की जाती है। ये रियासत की तीसरी सबसे बड़ी फसल और दूसरी सबसे आम अनाज की फसल है जिसे GI सर्टिफिकेशन हासिल है। गैंगटॉक से मैनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा SJ शंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर कल रात फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के लिए भारतीय वफ्द की सरबराही करते हुए इतवार को न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के पोडियम से उमूमी बहस के दौरान आलमी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। फ्रांस के वजीर खारजा के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाकायदगी से मीटिंगों और टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों मुल्कों को खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी की रफ्तार बरकरार रखने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान इलाकाई और आलमी उमूर, खासतौर पर यूक्रेन और खलीज के बहरान पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात समेत कसीर रुखी मामलात पर भी बातचीत की। बरतानिया ने ईरान की पुष्तपनाही वाले हौसियों के हमले से निमटने की खातिर सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक किया है। हौसी यमन के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं। सऊदी अरब ने उनकी तरफ से हमलों में इजाफे के बाद बरतानिया से मदद तलब की थी। इस साल फरवरी में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज के बाद से जारी जंग के दौरान ये एक नई महाजराई है। आने वाले दिनों में बरतानिया फजा में ही लड़ाकर तैयारों को ईंधन फराहम करने की खातिर एक वॉयजर तैयारा तैनात करेगा। बरतानिया और सऊदी अरब दहाइयों से करीबी फौजी इत्तेहादी रहे हैं और बरतानिया सऊदी अरब को हथियार सप्लाई करने वाले बड़े मुल्कों में से एक है। बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने एक नाबालिग तालिबा के साथ मुबैना छेड़छाड़ और नाशाइस्ता बर्ताव के एक वाकये के सिलसिले में 3 मुलजिमों को हिरासत में लिया है। दीगर मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने की कार्रवाई जारी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जमुई के पुलिस सुपरिटेंडेंट विश्वजीत दयाल ने बताया है कि वायरल वीडियो की तफसीली छानबीन के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।
4: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
3: इधर बिहार के खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन अप्सरा ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि कमीशन की एक टीम बहुत जल्द मुतासरा लड़की से मुलाकात करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगी।
5: पुलिस प्रशासन सभी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने त्वरित गिरफ्तारी की है और भी गिरफ्तारी हो जाएगी और इस तरीके से जो भी समाज में गलत संदेश देने का काम करेंगे वो दंडित होंगे।
3: खेलों के महकमे की वजीर और जमुई की मेंबर असेंबली श्रेयासी सिंह ने भी इस वाकये की मजम्मत की है और कहा है कि इंतजामिया इस मामले में फौरी कार्रवाई कर रही है।
6: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करे। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट भी हो और ये चाहती भी हो कि आगे भी इस गति में कोई कमी ना आए और इसी तरह से कार्रवाई हो।
3: पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: झारखंड में करम त्यौहार आज रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर झारखंड की कबायली सकाफत और फितरत का जश्न मनाया जाता है और भाई बहन के रिश्ते को याद किया जाता है। इस मौके पर झारखंड में खसूसी सकाफती और रियासती सतह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: करम त्यौहार आज रियासत भर में पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार झारखंड की लोक सकाफत का जश्न होता है और इस त्यौहार पर फितरत की पूजा की जाती है। रियासत के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने करम त्यौहार के मौके

0: मौके पर रांची के बेरो में एक प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और रियासत के लोगों को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: जापान में जारी एशियाई खेलों में खवातीन क्रिकेट में भारत सोने के तमगे के लिए फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारतीय खवातीन की टीम बांग्लादेश को 114 रन से करारी शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी, जबकि श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था। भारत ने कल मुख्तलिफ जुमरों में चांदी के 4 और कांसे के 2 तमगों समेत 6 तमगे जीते। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इंफरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लो ने चांदी का तमगा जीता, जबकि रुद्रांश पाटिल को कांसे का तमगा मिला। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने तिजारत व सनअत के वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदा ATF 20 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है PM सूर्या घर स्कीम के लिए दिल्ली में रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू। रियासतों की इंसदाद मनशियात टास्क फोर्स के सरबराहान की कौमी कॉन्फ्रेंस का आज वजीर दाखिला अमित शाह इफ्तिताह करेंगे। अखबार इंकलाब ने केरलम में तोदे गिरने से 9 अफराद की हलाकत की खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्क की कई रियासतों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की खबर भी अखबार में नुमाया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की है। बरतानिया ने ईरान की पुष्पनाही वाले हौसियों के हमलों से निमटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तफाक कर लिया है। और खवातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

अंधेरे और उजाले की कहानी सिर्फ इतनी है, अंधेरे और उजाले की कहानी सिर्फ इतनी है, जहां महबूब रहता है वहीं महताब रहता है। जी हाँ, यह है म्यूजिकल दिल लगी मंगल की मुक्ता के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभ

0: विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
2: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
8: बजकर 55 मिनट और 38 सेकंड। जनाब, ये बात हकीकत है कि जब साथ अच्छा होता है तो दुनिया हसीन लगती है। कंपेनियनशिप के जादुई मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। आप जानते हैं, एक रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के जीवन में गहरे और अच्छे संबंध का साथ होता है, वो बाकी के मुकाबले ज्यादा लंबा और खुशहाल जीवन जी पाते हैं। ये साथ केवल रोमांटिक पार्टनर का नहीं, बल्कि किसी दोस्त का, परिवार के किसी सदस्य का, यहां तक कि पेट का भी हो सकता है। दिमाग में जब बीटा एंड्रोफिन रिलीज होते हैं ना, तब तनाव दूर होता है, BP कंट्रोल होता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। माने महंगी दवा से ज्यादा कारगर है वो साथी जिसके साथ हम बेझिझक अपने दिल की बात कर पाए। तो भाई, अगर आपके पास भी है ऐसा कोई पार्टनर, तो जल्दी से कर दीजिए उसे थैंक यू का एक मैसेज।

0: सफर की अनिश्चितता को बनाए रखना है लेकिन इसे मजेदार भी करना है, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। फिलहाल मंगल की मुक्ता लेगी आपसे इजाजत, हिंदी और अंग्रेजी में होंगे अब समाचार। नमस्कार। आज की ताजा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर दिए जा रहे हैं। समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों की तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में

0: तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 अधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इनमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए 1 अधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। इसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में 1 वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Marking a new chapter in Indian cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The president will also honor the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. A report from our correspondent.
2: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के पांचवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार। जनसेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत एक और अंक लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज के अंक में जन भागीदारी, माई गव, लोगों का पद्म, मन की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल और मिशन लाइफ, ये सब कुछ चुनिंदा विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में नागरिकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के सहभागी के रूप में जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। शासन में लोगों की भागीदारी, उनके सुझावों को जगह देना और सामाजिक बदलाव को जन आंदोलन का रूप देना इसी सोच का हिस्सा रहा है। इसी दिशा में माई गॉव ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराया। नीति और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव, चर्चाएं, सर्वे और विभिन्न गतिविधियों के जरिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। जुलाई 2026 तक माई गॉव पर 6,32,00,000 से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके थे। यानी तकनीक का इस्तेमाल केवल सूचना पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को नीति और शासन से जोड़ने के लिए भी किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। LPG सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक प्रमुख माध्यम मन की बात भी बना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सुझावों, अनुभवों और उपलब्धियों को इस संवाद में जगह मिलती रही। इसने स्थानीय स्तर पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को व्यापक मंच देने के साथ नागरिकों को अपने आसपास बदलाव लाने वाले प्रयासों से जुड़ने का अवसर भी दिया। जन भागीदारी का एक पहलू देश की विविधता को जोड़ना और स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। यानी स्थानीय स्तर पर मौजूद क्षमता को पहचान देकर उसे व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहा। इन सभी अलग अलग पहलों के बीच एक साझा सोच है, नागरिकों को बदलाव की प्रक्रिया का सहभागी बनाना। सुझाव से लेकर स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण तक जन भागीदारी को व्यापक जन कल्याण से जोड़ने का प्रयास। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
1: हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी को। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले बिंदु से ही। वर्तमान सरकार में विगत एक दशक से अधिक अवधि से हम जन भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित होता देख रहे हैं?
3: देखिए, पहले भी सरकारों की योजनाएं बनती रही लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उनको अमली जामा पहलाना है, क्रियान्वयन होना है, तो यह आवश्यक है कि जनता जनार्दन उससे जुड़ी रहे।
1: जी जी।
3: अगर कोई एक योजना है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो बहुत कम हो जाती है।
1: जी।
3: मैं उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत की।
1: जी।
3: अब स्वच्छ भारत अगर सिर्फ एक सरकारी योजना बन के रहेगी तो भारत कभी स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब जो आम जन है वो उसके हिस्सेदार बनेंगे, उस मुहिम के वो एक जन आंदोलन का रूप लेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे इसमें जो है प्रतिभागिता लेना है, मुझे सक्रिय रूप से अपने घर को अपने मोहल्ले को साफ रखना है, तब जाकर जो है स्वच्छ मोहल्ला बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा, स्वच्छ कस्बा बनेगा, स्वच्छ गांव बनेगा और स्वच्छ समाज बनेगा और स्वच्छ देश बनेगा। तो जन भागीदारी के बगैर जो है यह संभव नहीं है। कोरोना में ही अगर आप देखेंगे, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो पलायन करते मजदूरों को मदद करने की स्थिति में हो, या टीकाकरण को लेकर हो, जनता जब खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक वो योजना सफल नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
3: तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि गिव अप का भी आपने जिक्र किया, तो ये गिव अप जैसे कार्यक्रम है, तो ये वो तभी गिव अप हो पाएगा जब वो वॉलंटरी है। आप जबरदस्ती किससे छीन नहीं सकते हैं। भाई आपको जो है गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, पहले सबको मिलता था, पहले सबको राशन कार्ड मिलता था, अब उन लोगों को भी मिलता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक आह्वान दिया। अब ये आपको याद दिलाता है आपके आचार्य विनोबा भावे जी के समय में, जब उन्होंने भूदान का आंदोलन शुरू किया था, तो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने अपना भूमि दान दिया।
1: बिल्कुल।
3: ताकि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेतीहर जो है, उनको भी थोड़ा सा जमीन मिल जाए, ये उद्देश्य है। सो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी योजना जो है जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता। इस एक दशक से ऊपर जैसे आपने कहा
1: जी,
3: उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर कार्यक्रमों में एक योजनाओं में एक जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुरेश जी ने चर्चा की स्वच्छ भारत मिशन की। यदि ठीक तारीख मैं याद करूं सुरेश जी, तो 2 अक्टूबर 2014 यानी लगभग 12 वर्ष हो गए जब हम अपने देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे, यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। तो गांव से लेकर शहर तक छोटे बड़े कई आयोजन हुए, लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान किया। यहाँ पर सुरेश जी हम ये समझना चाहेंगे कि एक अभियान होता है सरकार के स्तर पर, फोटो खिंचाया, आयोजन हुआ और भूल गए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने विशेष रूप से भारत में स्वच्छता की संस्कृति को फिर से कैसे यानी कायम कर दिया।
3: बिल्कुल। देखिए, याद रखिए, आपने 2014 उस दिन की तारीख का भी महत्व देखिए, गांधी जयंती
1: जी,
3: 2 अक्टूबर
1: जी।
3: और गांधी जी अपने आश्रम में इस बात को जरूर जो है सुनिश्चित कर

0: थे कि वहां की पूरी सफाई की जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को नहीं देते थे, अपितु जो आश्रम के जो निवासी हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाता था, उनकी जाति देखकर जो है उनको काम नहीं दिया जाता था। तो उसी से प्रेरित होके, गांधी जी के उस दृष्टि से प्रेरित होकर हमने स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत किया। उसका नतीजा क्या हुआ, हमने जो है मात्र 5 साल में 2019 तक हम ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, पूरे देश भर में घरों में खासकर जो है कई करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जो पहले भारत की एक छवि होती थी कि लोग खुले में शौच करते हैं, ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: और स्वच्छता से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वच्छ हो, अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: ये सब परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जो है ये निर्भर भी रहती है, तो इसलिए स्वास्थ्य से भी संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप जो लिया, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्वच्छ भारत जो है उसमें आपने स्वच्छता रैंकिंग्स देखे, एक एक शहर का, अब देखिए इंदौर शहर का नाम आया और अन्य शहरों का नाम आया, और यहां सब किसी जमाने में जो है बहुत कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज जो है आप उसको एक जन आंदोलन के रूप में, लोग खुद जो है कूड़ा डालने से उनके अंदर नो प्लास्टिक यूसेज की बात की गई है।
1: जी,
0: तो मैं समझता हूं कि एक जागरूकता जनता के अंदर पैदा भी हुई है।
1: सुरेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ योजना ना हो बल्कि व्यवहार में परिवर्तन आए। घर के लोग जो कूड़ा गाड़ी आएगी उससे पहले अपने कूड़े को लेकर तैयार खड़े हैं कि गाड़ी आएगी हमें डाल देना, तो ये बड़ा बदलाव हमने देखा। और ये सफल नेतृत्व का एक स्पष्ट सोच का परिचायक हम मान सकते हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा वह गांधी जी की ही भूमिका एक नायक निकल कर आया और उसने उसे जमीन स्तर तक पहुंचा दिया। जहां पर हम आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, कार्यक्रम को ले जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, गिव इट अप अभियान, यह अपने आप में कैसा अभियान था, इसके परिणाम क्या निकले हैं? राकेश जी, त्याग की भावना यदि भारतवर्ष की मूल भावना रही है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्यागी कोई भी हो उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है भारतीय शास्त्रों में भी और भारतीय जनजीवन में भी। यहाँ पर ये जो गिव इट अप, त्याग अपना कर दीजिए यदि आप सक्षम हैं, तो इसका लाभ किस रूप में ग्रामीण भारत में और संपूर्ण भारत में उज्ज्वला योजना के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को मिला है, क्या आकलन कर पाए हैं आप?
2: देखिए, आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। जिन ही सरकार ने यानी प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि वीडियो कर दीजिए, तो लोगों ने स्वेच्छा से, अभी सुरेश जी ने ठीक बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनिशियल प्रारंभिक दिनों में ही गिव अप कर दिया और सब्सिडी छोड़ी। नतीजा हुआ कि आज 12 करोड़ से ज्यादा उन गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंच गया है, वहां धुआं घटा है, सेहत सुधरी है, कठिनाई घटी है, लोगों का समय बचा है। और आम तौर पर जो ये माना जाता था कि गैस सिलेंडर एक स्टेटस सिंबल कभी हुआ करता था, राशनिंग होती थी, काफी मुश्किलों से दिक्कतों से लोगों को गैस सिलेंडर मिल पाता था, और 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घरों में गैस सिलेंडर का पहुँच जाना, आज की तारीख में करीब 1.6 करोड़ लोगों ने अपना LPG गैस कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी। और अब तो PNG के इस दौर में, मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मोतिहारी जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटा सा शहर है, जहां भी घर घर PNG की पाइप बिछ गई है और लोग PNG का कनेक्शन ले रहे हैं और गैस सिलेंडर को यूं ही वापस कर रहे हैं। तो एक तो गाँव में गरीबों के चूल्हों तक, उनकी झोपड़ियों में, और सुखद आश्चर्य ये होता है कि झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के, गैस चूल्हा रख के खाना बनाती महिलाओं को देखिएगा तो पूरा एक दृश्य बदल गया है। सरकार की ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है, और जन भागीदारी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो इस सबका विश्वास का ही नतीजा है कि लोगों ने सीधे सीधे विश्वास किया, और इससे एक सामाजिक समरसता भी, सौहार्दता भी आई है, और लोगों को मन में ये बात गई है कि भाई केवल हम सुखी संपन्न नहीं हो, मेरे वो पिछड़े गरीब जो वंचित पीछे छूट गए हैं, अगर वे भी गैस पर खाना बनाए, उन्हें भी वहां से आजादी मिले, कि सेहत सुधार हो, तो ये सब बातें हुई है, और जिसका परिणाम ये है कि आज अब गांव में दृश्य बदल गया है।
0: सुरेश जी, देखिए जैसे मैंने कहा कि कई करोड़ लोगों ने जो है अपना जो, खासकर ये जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और ग्रामीण महिलाओं को गैस के चूल्हे का उन तक वो सुविधा पहुंचे, जो धुआं, जो कोयला, जो लकड़ी का इस्तेमाल करके TB जैसे खतरनाक बीमारियों उससे ग्रस्त होते थे उनके लिए एक साफ

0: की आवश्यकता ही खत्म हो गई।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके बाद उनसे यही अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया कि आप अपना ये जो राशन कार्ड या आपका जो हक है उसको आप छोड़ दीजिए।
1: जी।
0: अब हम लोगों के पास भी 2-3 सिलेंडर का हम लोगों का भी कोटा हुआ करता था।
1: जी, जी।
0: हम एडिशनल भी हमने एक ले लिया था क्योंकि कभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जब से पीएनजी आया घर के अंदर सीधे किचन में गैस आ रहा है, कोई शिकायत कोई फोन करने की जरूरत भी नहीं है, वो नियमित सप्लाई चल रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी, तो हमने वॉलंटियरली दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि उससे क्या हुआ कि जो दबाव, क्योंकि हम भी देखिए विदेश से बहुत फ्यूल को आयात करते हैं, तो इसलिए उसका एक संसाधन सीमित है और उसको ज्यादा संख्या में बांटना भी है, तो किसी को तो उसको जो है गिव अप करना ही पड़ेगा।
1: जी, जी,
0: तब जाके जो है ये होगा।
1: जी, जी।
0: इसी तरीके से राशन कार्ड है, आज लगभग 80 करोड़ आबादी को हम जो है सब्सिडाइज्ड या मुफ्त में ही हम लोग राशन देते हैं। तो अब ये तभी संभव हो पाएगा, एक बहुत बड़ा तबका जो है राशन कार्ड होल्डर्स थे, मध्यम वर्ग में भी थे, निम्न मध्यम वर्ग में भी थे, और कई बार वो लेते थे, कभी ऐसे टोकन के लिए लिया जाता था या किसी और को देने के लिए लिया जाता था।
1: जी।
0: तो ये तय किया गया कि भाई उनको उसकी क्या जरूरत है, तो वो भी अपना गिव अप कर दें आज, क्योंकि पीडीएस की उनको जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा यही होना चाहिए, जिसको हम एस्पिरेशनल लेवल्स भी कहते हैं।
1: जी, जी, जी,
0: कि भाई वो सरकारी सब्सिडीज पर से डिपेंडेंसी खत्म करके स्वायत्त बने, वो इतना स्वावलंबी बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जैसे जनभागीदारी की हमने बात कही थी शुरुआत। तो आपने अपना अधिकार को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, इससे जो है लाखों लोगों को जो है उसका लाभ मिला, और सरकार पर भी जो दबाव था कि इनको भी देना है उनको भी देना है, सब तक पहुंचाने का, और खासकर जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है सरकार इसमें भी ये गिव इट अप के तहत जो है सफल हुए हैं।
1: श्रोताओं, एक प्रेरक व्यक्तित्व किस तरह न केवल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक अनूठा व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक उदाहरण है वह कार्यक्रम जिसे आप बड़े ध्यान से, प्यार से और स्नेह से सुना करते हैं। सुरेश जी, मैं चर्चा कर रहा हूँ मन की बात कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री का यह संबोधन किस रूप में क्रांतिकारी साबित हुआ है और इसके लगातार एपिसोड आ रहे हैं, आम जनमानस पर इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, मैं तो कहूंगा कि रेडियो के पुनरुत्थान में भी मन की बात की एक बड़ी भूमिका रही है। लोग जिस समय में विजुअल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल की तरफ चले गए थे, रेडियो की सार्थकता एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं सिर्फ एफएम के गाने सुनने तक सीमित है गाड़ी में, तो वहां एक कार्यक्रम, और देश का नहीं विश्व का पहला कार्यक्रम जहां कोई भी लोकतांत्रिक देश का नेता, राष्ट्र एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं राजनीति से हटकर,
1: बिल्कुल
0: जितने भी राजनेता बात करते हैं अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, दुनिया में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां आप राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, आप दैनिक दिनचर्या के विषय, लोगों की आदतों की बात, हमारे नागरिकों के उपलब्धियों की बात, आम जनता में से निकले हुए लोग जो कुछ हटके काम कर रहे हैं उनके बारे में, हमारे कुछ ऐसे खेल, ऐसे हमारे जो हथकरघा और इस तरीके से जो हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, इनके बारे में लोगों को बताना, मैं समझता हूं कि इतना ज्ञानवर्धक है कि आप एक घंटे सुनेंगे। अब तो लोगों से सीधे वार्तालाप भी, संवाद भी प्रधानमंत्री करते हैं जिसमें बातचीत भी करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जब मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का कुलपति था तो हमने जामिया मिलिया के साथ मिलकर हमने इसका पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस किया और पूरा पत्रिका हमने प्रकाशित किया, जिसमें ये देखा गया कि मन की बात का जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ रहा है, और वाकई लोगों के लिए एक प्रेरणादायी, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसके तहत क्या क्या बड़ी बातें कही है, बनारस की साड़ियां लेने से लेकर उत्तर पूर्व में जो है पर्यटन करने जाने से लेकर, ऐसे ऐसे बातों को लेकर प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को, जिस पर आम तौर पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति क्या इतने रोजमर्रा जिंदगी की बातें करेंगे क्या,
1: जी
0: मैं समझता हूँ वो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, पूरा परिवर्तन, वो उन भावनाओं के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऐसे पहलू लेकर जनता के समक्ष आए जो मैं समझता हूँ न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं समझता हूँ कि उससे एक राष्ट्र का एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ी है, और रेडियो के प्रति जो रुझान बढ़ा है और उसके चलते प्रधानमंत्री क्योंकि रेडियो में बोल रहे हैं तो वो लाइव टीवी

0: ई में भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है। शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा होगा विश्व भर में जिसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है करोड़ों लोग उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
1: राकेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बातों का जो विषय वैविध्य है, भिन्न भिन्न विषयों को प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर उठाया, आम लोगों को लुभाने में और आम लोगों के जीवन में बदलाव में ये बिंदु उनका दिया हुआ एक उदाहरण दूसरों के लिए कैसे अनुकरणीय बना है।
2: नहीं, बिल्कुल अनुकरणीय बना है। आप ये जान जाइए कि प्रधानमंत्री जी जब मन की बात वाला कार्यक्रम जब उनका होता है, आप किसी भी शहर में, कस्बे में, गांव में देखेंगे, लोग एकजुट होके, सड़कें सुनी हो जाती है, लोग बैठ के उसको सुनते हैं। तो सुनते इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा है। ठीक अभी सुरेश जी ने कहा कि वो छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का चयन करते हैं, ऐसे लोगों का, कोई दिव्यांग है उसकी कोई उपलब्धि है, कोई गांव गली के कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आर्ट है किसी लोकल स्तर पर, जैसे बिहार की सुजनी कला, बिहार का मधुबनी पेंटिंग कला, बिहार के भागलपुर का सिल्क, या किसी खास स्तर पर कोई मिठाई बन रही है, कोई छोटे उत्पाद है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो एक तो जिसकी चर्चा वो करते हैं वो पूरा समाज, वो पूरा जिला, पूरा राज्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और दूसरा इसे लगता है कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई नोटिस ले रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि मेरे किसी काम का, मेरे किसी योगदान का, स्वच्छता का ही क्षेत्र है या फिर शिक्षा का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कहीं मुसहर टोली में, किसी दलित बस्ती में कोई ऐसा काम कर रहा है, बरसों से कर रहा है और आज तक किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली, उसे यह लगता है कि नहीं, यह नोटिसेबल है कि मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी चर्चा होती है तो वो व्यक्ति फूले नहीं समाता है और दूसरों को भी उससे ये प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा कि ये कितना अनुकरणीय, कितना प्रेरक है, ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने रोज बरोज आते हैं कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कुछ किए जा रहा है और जब उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने काम में और ज्यादा उत्साह से, लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर अभी 137 एपिसोड उनका हो गया है और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
1: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन के बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा?
0: देखिए, इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है
1: जी।
0: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है, जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था, आज जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू करेंगे, दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स जीआई टैग हो गए हैं, बासमती राइस से लेकर हुआ हो, सेहोर का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है, उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है तो, और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके, तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है। आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वापस आके हमारे यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता का मिलता है। तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें, जिस उद्देश्य से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रही है।
1: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए लोगों का पद्म, सुरेश जी पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था। यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है, निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे यह परिवर्तन आया?
0: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
1: जी,
0: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
1: जी,
0: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति है उनको जो है दवा और मरहम करती थी, उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई आम जनता, उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनको
1: बिल्कुल।
0: मान्यता देना,
1: हुँ।
0: उनका जाति, उनका मजहब, उनका भाषा देखकर नहीं, उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी, आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
1: जी।
0: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये एक कलाकार से लेकर एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा पीठ थपथपाया जाएगा, उच्चतम स्तर माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किया जाने की संभावना है। ये जो एक सपना है साकार होने का
1: जी,
0: मैं
1: जी,
0: समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए पद्मा को अब पीपुल्स पद्मा कहा जाता है।
1: चर्चा को हम एक आयाम और देते हुए राकेश जी सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान दिया गया, इस आह्वान के कहले के विविध रूप हमने देखे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यह कितना समर्थ होता दिख रहा आपको?
2: नहीं, बिल्कुल ये समर्थ है और यह कार्यक्रम शुरू किया गया 31 अक्टूबर 2015 से, जो सरदार पटेल की 140वीं जयंती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। 40 वर्ष पहले दौरान एक कार्यक्रम चलता था अंतर्राज्यीय आदान प्रदान का कार्यक्रम, कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र बिहार यूपी के जैसे राज्यों में आते थे, यहाँ के छात्र वहाँ जाते थे और एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे और उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके आचार व्यवहार के बारे में जानकारी लेते थे। तो इसी ढंग से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम एक सांस्कृतिक दूरी भी घटा रहे हैं, भौगोलिक दूरी भी घटा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में एक मानवीय भावना भी विकसित कर रहे हैं और वो भी एक भारतीय हैं। इस भारतीयता के भावना से देश की एकता के लिए यह अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों में एक एहसास आया है कि हम सब भारतीय, चाहे उत्तर के हों, पूरब के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों, हम सब आपस में एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं और हमारी संस्कृति अलग अलग है, पहनावा पोशाक भी थोड़ा अलग है, कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर खान पान में फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि अगर इस देश की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ती है तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है, यह भावना लोगों में है और इसलिए ये एक सफलतम कार्यक्रम है।
1: सुरेश जी, इसी बिंदु पर हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय वांग्मय को हम देखें, पुरातन भारतीय शास्त्र को देखें, तो निसंदेह राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हुई, सांस्कृतिक इकाइयां भी अलग अलग हुई, लेकिन एक भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा हिमालय से लेकर सागर तक, वो एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कह लें कि आह्वान दिया, तो इसकी मूल अवधारणा क्या रही और हम उसमें कितने सफल होते दिख रहे?
0: निश्चित ही जैसे कि बताया गया, ये सरदार पटेल की जयंती के दिन ये श्री गणेश हुआ था, उसके पीछे क्या सोच रही सरदार पटेल ने जो है,
1: एक किया पूरे भारत
0: एक किया पूरे देश को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि पहले से ही जो है आदि शंकराचार्य को देखिए,
1: बिल्कुल
0: भारत के उस चार कोनों में वो जो मठ की स्थापना करते हैं, तो वो अवधारणा पहले से ही थी, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से सरदार पटेल ने, तो राजनीतिक और
1: सांस्कृतिक
0: एकता को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसी दृष्टि से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा कल्पना की गई। राकेश जी ने तो कई बातें कही, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका काशी तमिल संगम अब आयोजित हो रहा है। काशी क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है। याद रखिए, यही जो है आपके आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य केरल के कालडी से आए थे, है ना, और वही संस्कृत के उस जगह में देश का ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल, और वहां तमिलनाडु के जो है न सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी अपितु वहां के तमिल भाषा के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो है तमिल विषय जो है आज एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बार भी जब ये ब्रिक्स के नेता आते हैं तो रूस के राष्ट्रपति को भी जो है तिरुकुरल की प्रति जो है देते हैं। पहले वो भगवद गीता दिया करते थे। तमिलनाडु का सबसे न सिर्फ प्राचीन बल्कि सबसे, अगर आप कहेंगे कि लोग जिससे जुड़े हुए हैं,
1: लोग जीवन में
0: बसे हुए हैं, ऐसा एक ग्रंथ है वो, तो उसके साथ जो है, तो कहने का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम अलग अलग देश के अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग जाति धर्म से जुड़े हुए लोग, लेकिन मूलतः उन सबका जो है वो भारतीयता उनमें है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, सांस्कृतिक एकता की जो बात है, वो मैं समझता हूँ कि उसको स्थापित करने में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है बहुत बड़ा, अलग अलग पार्टनर स्टेट्स बनाए गए हैं के तहत जो है अलग अलग राज्यों में आपस में समन्वय बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्वीकार्यता, ये राष्ट्रीय एकता का और मजबूत होने का एक प्रतीक है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक दूसरे के बारे में ये दूरियां कम होगी, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाहर मत घूमने जाओ, देश के अंदर घूमो, LTC लो, देश के अंदर घूमो, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अपने देश को जानो, ये बहुत जरूरी है, और उसी के तहत मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सफल प्रयोग रहा है।
1: अंतिम बिंदु पर हम आते हैं, भारत विकसित हो ये हम सब की कामना, इस विकसित भारत में लोग स्वस्थ हों, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उस पर भी हम संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किस रूप में ये विभिन्न योजनाएं आम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रही हैं?
0: बिल्कुल, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी बहुत ही आवश्यक है, और पर्यावरण के साथ भी हमारा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत हो, जिसके तहत जो है आम व्यक्ति भी आज निजी अस्पतालों में कर भी, कितना भी कठिन जो है प्रक्रिया क्यों ना हो, कितना भी कीमती महंगी प्रक्रिया क्यों ना हो, उसको वो सरकारी खर्चे पर जो है उसका इलाज करा सकता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में हम टीकाकरण को लेकर, हमने उसका यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर हमने कितना प्रयास किया, कोरोना के दौरान देखा कि हमने मात्र 6 महीने के अंदर हमने एक टीका तैयार किया, और न सिर्फ भारत के लोगों को अपितु पूरे विश्व के विकासशील मुल्कों में भी हमने उसको दिया। और इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इस दिशा में हमने काम किया। आयुष्मान भारत के साथ साथ जो आयुष मंत्रालय है, जिसके तहत जो है न सिर्फ हमने क्यूरेटिव हेल्थ बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ उस पर भी जोर दिया, ताकि जो है हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिससे कि आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद, होमियो, यूनानी, सिद्ध, ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, इसको हमने जो है लोगों को विकल्प के रूप में दिया। हमने बाकी जितने विधाओं के लोग हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि वो इन विषयों को भी समझे। तो एक दूसरे का जो एक अछूता, अंग्रेजी दवाई वाले जो है आयुर्वेद वालों को पूछेंगे नहीं, ये अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और उसके तहत जो है हम किस तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अस्पतालों की जिस तरीके से संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, आप देखेंगे कि इतने अस्पताल खुल गए, इतने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए।

0: उद्देश्य ये है कि हमारी जनता जो है वो स्वस्थ बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो मान्यता दी गई है उसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है योग के साथ भी अपने मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो है संतुलन बनाए रखें। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था ताकि जो है देश में सब लोग फिट रहें, बीमारियों से बचते रहें। मैं समझता हूं कि एक समग्र चिंतन गया है और अगर इसको सही मायने में अगर अमली जामा पहनाया जाए और इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, साधारण भारतीय का जीवन जो है वो काफी और उम्र उसके बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी भूमिका जो है ये स्वास्थ्य के जो विकास हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ है उसका निश्चित ही कारण।
1: सुरेश जी, आपने बहुत जानकारियां दी, बहुत सार्थक और उपयोगी जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद।
1: राकेश जी, आपने भी बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, श्रोताओं को गुणवत्तापूर्ण उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 5वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

नमस्कार, सुप्रभात और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज कहीं किसी नदी के किनारे उत्सव की तैयारी है, कहीं नावों की गति में सामूहिक उल्लास की लय है, कहीं मंदिरों में आज की तिथि का अपना विधान है। इसी देश में कोई नाम अपने कार्यों के कारण फिर स्मरण किया जा रहा है और इसी दिन भारतीय चलचित्र जगत की अनेक रचनाओं को राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। एक ही तारीख है और उसके भीतर जीवन, लोक परंपरा, कला और सिनेमा के इतने भिन्न रंग। तो इन रंगों को गीतों की अपनी भाषा में संजोते हुए मैं प्रियांशी भटनागर प्रभात के संगीतमय कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्लगी में आपके साथ हूँ। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आज है V.S. श्रीनिवास शास्त्री का जन्म जयंती। शास्त्री जी एक ऐसे प्रखर वक्ता, राजनेता और विद्वान रहे जिनकी वाणी में तर्क की स्पष्टता, दूरदर्शिता और निर्भीकता का अद्भुत संगम था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लिबरल इंटरनेशनलिज्म के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने अपने समय के प्रभावशाली भारतीय विचारकों और राजनयिकों में उन्हें विशिष्ट स्थान दिलाया। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए अब सुनते हैं एक मधुर गीत और कार्यक्रम का आगाज करें।

श्रोताओं, जीवन में हर तैयारी हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी भविष्य की किसी अनिश्चित घड़ी के लिए एक छोटा सा प्रबंध भी पर्याप्त होता है। इसी विचार से जुड़ी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या PMSBY। ये एक वर्ष की पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जिसे हर वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स जो योजना में शामिल होने की सहमति देते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में इसका वार्षिक प्रीमियम ₹20 है जो ऑटो डेबिट के माध्यम से खाते से लिया जाता है। दुर्घटना के कारण मृत्यु या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की स्थिति में ₹2,00,000 और निर्धारित पार्शियल डिसेबिलिटी की स्थिति में ₹1,00,000 का बीमा लाभ मिलता है। योजना का कवर पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है। भविष्य की चिंता को पूरी तरह टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तैयारी जरूर की जा सकती है। तो चलिए अब इस बात को यहाँ रख कर कुछ देर अपनी गणनाएं और चिंताएं रोक कर जरा चलें पानी की ओर, जहाँ किनारे पर खड़े रहने के बजाय पूरी परंपरा नाव में सवार होकर बढ़ेगी आगे। मणिपुर में आज हाइक्रो हिदोंगबा है, माइताई समुदाय का पारंपरिक धार्मिक बोट रेस फेस्टिवल, जो सितंबर में माइताई चंद्र पंचांग के लांगबान महीने के 11वीं तिथि को मनाया जाता है। हाइक्रो यानी आंवला इस समय पक कर तैयार होता है और इसी से इस उत्सव का नाम भी जुड़ा है। श्री विजय गोविंद जी मंदिर के जलाशय में लंबी संकरी नौकाएं सजती हैं। पूजा और पारंपरिक अनुष्ठानों के बाद नाविक चप्पों की एक लय में जल को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। इस उत्सव में एक सुंदर दृश्य ये भी है कि हाइक्रो की मालाएं भगवान विजय गोविंद और आशेश्वरी को अर्पित की जाती हैं, और फिर वही जल जो पूजा का साक्षी रहा है प्रतियोगिता की गति से भर उठता है। भक्ति, परंपरा और स्पर्धा तीनों एक ही उत्सव में एक ही जलाशय पर। और कुछ उत्सवों की यात्रा में पूजा, संगीत और लोक जीवन तीनों ही एक साथ चलते हैं। मध्य प्रदेश में आज डोल 11 यानी जल झूलनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के बाद आने वाली इस एकादशी को भगवान कृष्ण से जुड़ी जल पूजा की परंपरा से जोड़ा जाता है। तो आज अनेक स्थानों पर भगवान कृष्ण की सजी हुई प्रतिमाओं को डोल या पालकी में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली जाती है। भजन, पुष्प सज्जा, मंदिर की घंटियां और सामूहिक उत्सव सब मिलकर इस दिन की शोभा बढ़ाते हैं। और जब भक्ति स्वयं डोल पर सवार होकर निकले तो उसके साथ चलने वाली धुन भी कुछ विशेष ही होगी। आइए सुने एक और मधुर गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे प्रियांशी के साथ, और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिकल दिल्लगी। श्रोताओं, ऐसा हम सबके साथ कभी ना कभी होता है कि मन में बहुत सी बातें हों पर उन्हें कहने के लिए कोई विशेष अवसर ना हो, और ऐसे में कितना अच्छा लगता है ना जब कोई ठहर कर हमारी बात सुन ले, बीच में अपनी बात ना रखे, कोई उत्तर खोजने की जल्दी ना करे, बस हमारी बात को उसके पूरे विराम तक पहुंचने दे। किसी का इस तरह चुपचाप हमारे पास बने रहना भी तो अपनेपन की कितनी सुंदर सी भाषा है। तो शायद इसीलिए कुछ बातें कह देने के बाद मन हल्का हो जाता है, क्योंकि सामने वाला

केवल सुनता नहीं, अपने पास थोड़ी जगह भी देता है। तो यदि आज आपके पास किसी की कोई अधूरी सी बात आ जाए तो उसे थोड़ी देर ठहरने दीजिएगा। हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता, कुछ बातें केवल सुने जाने से ही हल्की हो जाती हैं। बस आज की छोटी सी बात में आपसे इतना ही कहना था। तो सुबह की इस संगीत यात्रा में आज कई रंग हमारे साथ चले, उत्सवों की उमंग, परंपरा की लय और जीवन को थोड़ा अधिक सहज बनाने वाली एक छोटी सी बात। इन्हीं सुरों और बातों की मिठास के साथ अब म्यूजिकल दिल लगी से मुझे दीजिए अनुमति। कामना है आज का दिन आपके लिए सहज, सुखद और मुस्कुराहटों से भरा रहे। जो काम हाथ में ले उसमें मन लगे और दिन के बीच कहीं कोई छोटी सी खुशी चुपचाप आपके हिस्से भी आ जाए। सुबह 10:30 पर फिर मिलूंगी आपसे कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में, जहां आपके संदेश और मनपसंद धुनें हमारी संगीत यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। और 11:10 पर तस्वीर में मेरे साथ चलिएगा तानसेन की नगरी की यात्रा पर, गलियां जहां संगीत, कला, प्रेम और संघर्ष से इतिहास भी सुशोभित है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली FM गोल 100.1 MHz पर। संगीत आपके दिन में यूं ही अपनी थोड़ी सी जगह बनाए रखे। प्रियांशी भटनागर का आप सभी को नमस्कार।

0: सर पर्सनल लोन ऑफर है।
1: पुनः ब्लॉक करून टाकतो।
0: सर फ्री ट्रिप टू दुबई।
1: यार हे सुद्धा ब्लॉक। यार कितीदा ब्लॉक करू?
2: फक्त फोन वरती ब्लॉक करून स्पॅम थांबणार नाही, प्रत्येक वेळी नवा नंबर येतो।
1: मग काय करू?
2: कॉल उचल आणि मग ट्राय डीएनडी ऍप वर रिपोर्ट कर, कॅटेगरी सिलेक्ट कर, बँकिंग ट्रॅव्हल इन्शुरन्स आणि सबमिट। बस फक्त काही सेकंदांचं काम।
1: म्हणजे सगळे स्पॅम कमी होतील?
2: हो, रिपोर्ट झाल्यावर लगेच ऍक्शन सुरू होते। फक्त ब्लॉक नाही, रिपोर्ट करणं आवश्यक आहे। TRAIDND ऍप प्ले स्टोअर किंवा ऍप स्टोअर वरून आताच डाऊनलोड करा आणि रिपोर्ट करणं चालू करा।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: FM गोल्ड खरा सोना।

गाऊ मोठं वरचं गाणं गाऊ मोठं

मोट चालली मया तुम जाता को आज ते कोई कोई पता तो पानी झुल झुलवानी फुल विच जाते जाई दुई अरे मोट चालली मया तुम जाता को आज ते कोई कोई अन पता तो पानी झुल झुलवानी फुल विच जाते जाई दुई धरती मा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन के वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah inaugurated the third National Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, of states and union territories in New Delhi today. The two-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and UTs are attending the conference, which is being organized by the Narcotics Control Bureau. Based on the theme of United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on the progress of targets assigned to task forces of states and UTs in the recently released Vision Document on Narcotics Control 2026-29. The Union Home Ministry said the central government is working in mission mode to protect the nation's youth from the adverse effects of drug abuse. Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi today. Speaking on the occasion, he stressed the judicious use of water and highlighted the need for its conservation.
4: This shows the importance of water because the population is increasing, the urbanization is increasing. We have to produce more food grains. When the urbanization increases, we need more water for cleaning, for drinking. The usage of water is increasing every day. So we all must make a clear awareness in ourselves as well as the wherever we go. The water should be used preciously.
3: The theme of this year's Water Week is Climate Resilient Water Management. The 5-day international event will provide a multidisciplinary platform, bringing together all stakeholders to deliberate upon the pressing challenges of water management. The Election Commission has announced the biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and one seat in Uttarakhand. The Commission also announced bipoll for one seat of Rajya Sabha in West Bengal. The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 16th of next month. The Commission also announced the MLC election for 11 seats in Uttar Pradesh, 8 seats in Bihar, 5 seats in Maharashtra and 4 seats in Karnataka. Nomination for the polls will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 23rd of next month. The government has urged bank employees to refrain from resorting to strikes, work towards resolving issues through dialogue and ensure that banking services remain uninterrupted. The appeal comes ahead of a 3-day nationwide strike called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in public sector banks from the 28th to the 30th of this month. They have called a strike in support of two principal demands, implementation of 5-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive PLI scheme. The Union Finance Ministry said, following detailed discussions, the government has fulfilled one of the demands and decided to keep the PLI scheme in abeyance. The ministry said, the government has taken several measures aimed at improving the working environment, transparency and welfare of bank employees. Britain has agreed to provide limited support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. Riyadh requested the support after the Houthis, who control the most populous parts of Yemen, intensified their attacks on Saudi Arabia, marking a new front in the wider war that began with the US and Israeli strikes on Iran in late February. For the new air-to-air refueling support, Britain will deploy one Voyager plane in the coming days. Indian Eves opener Smriti Mandhana has created history by becoming the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti achieved this milestone during the Asian Games final against Sri Lanka at the Korogi Sports Park in Nishin, Japan. In women's cricket, chasing a target of 217 runs, Sri Lanka were at 54 for 7 wickets in 11 overs against India in the final in the Asian Games at the Aichi Prefectural Korogi Sports Park, Japan, when reports last came in. Early opting to bat first after winning the toss, India scored 216 runs for 3 wickets in 20 overs. And with that, we end this news bulletin.

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 1:11 हुए हैं और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे, इनका आज जिक्र होगा कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए। एक प्रतिभाशाली शानदार अभिनेत्री जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का मन जीता। अपने किरदारों में वो जान डाल दिया करती थीं, इतनी सक्षम अदाकारा रहीं दुर्गा खोटे। अपनी शुरुआती फिल्मों में वो नायिका के रूप में पर्दे पर दिखीं, लेकिन जल्दी ही वो चरित्र अभिनेत्री की भूमिकाओं में दर्शकों के सामने आई। उनके बेमिसाल अभिनय को आज भी दर्शक सराहते हैं। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया और सैकड़ों नाटकों में भी उन्होंने अभिनय किया। फिल्मों को लेकर जो सामाजिक वर्जनाएं थीं, उन्हें दूर करने में दुर्गा खोटे ने अहम भूमिका निभाई। इन्हीं की फिल्मों से गीत, इन्हीं के फिल्मी करियर की बातें जारी रहेंगी। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर यहाँ पर हम तय कर रहे हैं और बातें हो रही हैं जानी मानी अभिनेत्री दुर्गा खोटे की। एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ 14 जनवरी 1905 को। शिक्षित मराठी परिवार से इनका संबंध रहा। फिल्मी दुनिया से पहले इनका नाम रहा वीटा लाड। परिवार अच्छे खुले विचारों वाला रहा। सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और ये वो दौर रहा जब लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। महज 18 साल की उम्र में ही इनकी भी शादी हो गई विश्वनाथ खोटे के साथ और दो बेटे हुए इनके, बकुल और हरिन। दुर्गा खोटे सिर्फ 26 साल की ही थी कि इनके पति का निधन हो गया और बच्चों की परवरिश और तालीम के लिए इन्होंने खुद अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया और इस तरह फिल्मी दुनिया की तरफ इनके कदम बढ़े।

हिंदी सिनेमा में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया। जैसे हमने बात की कि 1983 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1958 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया, 1968 में पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया और फिल्म विदाई के लिए, ये फिल्म आपने अगर देखी होगी तो सचमुच जैसे बोलते हैं ना उनके करियर की, उनके सिने करियर की बहुत ही मर्मस्पर्शी फिल्म रही। फिल्म विदाई फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए वर्ष 1974 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार उनके नाम रहा।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दुर्गा खोटे, जिन्होंने अपने जीवन में कम दुख नहीं देखे, पति नहीं रहे, 40 साल की उम्र में बेटे का भी निधन हो गया, समाज के तानों का जिन्होंने सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के दम पर फिल्मों में काम किया और आने वाली पीढ़ियों में महिलाओं के लिए फिल्मी दुनिया का रास्ता खोल दिया। दुर्गा खोटे के भतीजे विजू खोटे और भतीजी शोभा खोटे हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार रहे हैं। उनकी तीन पीढ़ियां

0: क्षमा करती जा। माँ की महानता मैंने बहुत देर में जानी माँ। आखिरी वक्त में बेटे को माँ से अलग करने का मुझसे माँ बाप हुआ माँ। मुझे माफ कर दो।
1: मैं इस बर्बादी की वजह हूँ। मेरी वजह से तुमने खुल खुल के जान दे दी। ऐशो आराम के लालच में मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया। मैं बड़ा नालायक हूँ। मुझे तुम्हारे पांव छूने का भी अधिकार नहीं।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहान की दो रोज़ा तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हो गई है। नायब सदर सी पी राधा कृष्णन ने कहा है कि पानी से मुतालिक हफ्ता एक ऐसा अहम प्लेटफॉर्म है जहां सभी मुतालिक फरीकैन पानी के बंदोबस्त में दरपेश चैलेंजों से निमटने पर बातचीत

0: नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
4: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
5: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
4: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल 2898 AD को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
6: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दें। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करें तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
7: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब

0: फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
3: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी, तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3rd राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना अने न्यूज ऑन AIR आ मोबाइल एप्लिकेशन पर एकदम खरा सोना जेवो कार्यक्रम गीत गुर्जरी अने गीत गुर्जरी कार्यक्रम में आज आपनी साथे छे तरुलता करोड़िया। तमाम मित्रों ने तरुलता करोड़िया ना जय गणेश। मित्रों आज फरी एक वार आपनी कसोटी थशे अने आपने आज हूँ गणेश विषे अनेक प्रश्नों पूछेश। आपे मने साचा जवाब आपवाना छे। अमारो नंबर छे 0224515434 0224515435। तो मित्रों गणेशजीना कुल केटला नामों छे? मारो पहलो प्रश्न छे गणेशजीना केटला नामों छे। मारो बीजो प्रश्न छे गणेशजीए कयो ग्रंथ लखवा माटे लहियानुं कार्य कर्युं हतुं अने आ कार्य केटला दिवस सुधी चाल्युं हतुं? हा मित्रों गणेशजीए कयो ग्रंथ लखवा माटे लहियानुं कार्य कर्युं हतुं अने आ ग्रंथ लखवा माटे केटलो समय लाग्यो हतो? अने मारो त्रीजो प्रश्न छे के छत्रपति शिवाजी महाराजनी माता जीजाबाईए पूनामां एक प्रसिद्ध गणेश मंदिरनी स्थापना करी हती अने ए गणपतिने आजे पण मानाचा गणपति तरीके पूजवामां आवे छे। तो ए गणपति कयो छे? त्रण प्रश्नों गणेशजीना केटला नामों छे, गणेशजीए कयो ग्रंथ लखवा माटे लहियानुं कार्य कर्युं, आ कार्य केटला दिवस सुधी चाल्युं अने छत्रपति शिवाजी महाराजना माता जीजाबाईए पूनामां एक प्रसिद्ध गणपतिनुं मंदिरनी स्थापना करी जे आजे पण मानाचा गणपति तरीके जेने पूजवामां आवे छे। तो ए गणेशजी कया? जो आपने प्रश्नों ना उत्तर खबर हो तो तरत ज फोन उपाड़जो।

ठाकर, गुलाब शाह, भरत खोना अने विभाबेन महेश्वरी। अने मित्रों साचा जवाबो छे के गणपतिना आम तो कुल 12 नामो छे अने कुल नामों 108 छे, परंतु 12 ए महत्वना नामों छे। अने मारो बीजो प्रश्न हतो, छत्रपति शिवाजी महाराजनी माता जीजाबाईए पूनामां एक गणेशजीनी स्थापना करी हती अने जेने मानाचा गणपति तरीके हजू पण पूजवामां आवे छे, तो ए छे कसबाचा गणपति। अने गणेशजीए जे ग्रंथ लखवा माटे लहियानुं कार्य कर्युं हतुं ए ग्रंथ छे महाभारत। आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना अने न्यूज़ ऑन AIR आ मोबाइल एप्लिकेशन पर एकदम खरा सोना जेवो कार्यक्रम गीत गुर्जरी। अने हवे आवी रह्या छे मारा बीजा प्रश्नो। तो मित्रों, कया देशनी चलनी नोट पर गणेशजीनो फोटो छे अने आ देशना लोको गणेशजीनी पूजा करे छे कारण के तेओ शिक्षा अने कलाना देवता छे, तो आपे मने ए देशनो नाम जणावानुं छे। अने मारो बीजो प्रश्न छे कि गणेशजीने लाडू, मोदक, दुर्वा, जासूदना फूलो आ बधो खूब ज प्रिय छे, परंतु एक एवी पवित्र वस्तु छे जे पूजाना सामग्रीमां वापरवामां आवे छे परंतु गणेशजीनी पूजा करवामां ते वर्ज्य छे, एटले के गणेशजीनी पूजामां तेनो वपराश जराय थतो नथी, तो ए वस्तु कई? बे प्रश्नों मैं आपने पूछ्या छे, गणेशजीनी पूजामां कई वस्तुनो उपयोग थतो नथी अने कया देशनी चलनी नोट पर गणेशजीनो फोटो छे। आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना अने न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लिकेशन पर कार्यक्रम गीत गुर्जरी। अमारो नंबर छे 0224515413, 0224515413.

मित्रों गीतना पहला मैं प्रश्न कर्यो हतो के अष्टविनायक में केटला गणपति मात्र पूना में आवेला छे, तो घणा बधा श्रोता मित्रों फोन कर्या परंतु साचो जवाब अपनार एक ज मित्र छे विभाबेन महेश्वरी टोबेवली थी। 5 गणपति पूना में आवेला छे, 2 गणपति रायगढ़ में आवेला छे अने 1 गणपति अहमदनगर में आवेला छे। मारो बीजो प्रश्न हतो के ज्यारे अष्टविनायकनी यात्रा करिए त्यारे प्रारंभ अने अंत आपणे एक गणपतिना दर्शन करवा ज पड़े, तो ए छे मोरगावना मयूरेश्वर। एटले तमारे शुरुआत पण मयूरेश्वर थी करवानी, मोरगाव थी, अने अंत पण मोरगाव मयूरेश्वर थी करवानी, तो ज तमारा अष्टविनायकना दर्शन पूरा थया एवुं कहेवाय छे। अने जमणी सूंडवाळा गणपति अष्टविनायकमां जो कोई होय तो ए छे अहमदनगर सिद्ध टेकना सिद्धि विनायक। अने मित्रों हवे पछीना प्रश्न माटे आप तैयार थई जाओ। मित्रों आप सौ जाणो छो के सार्वजनिक गणेशोत्सवनी शुरुआत लोकमान्य टिळके करी हती, अने लोकमान्य टिळके ज्यारथी शुरू कर्या त्यारथी अत्यार सुधी मुंबईमां एक मंडळ गणेशजीनी स्थापना करे छे। एटले लोकमान्य टिळके सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरुआत करी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की आधारशिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामला सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार

0: की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में सप्ताह में कामकाज के 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी 1 मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगले चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कारखानों, बोर्डरूम, सेवा केंद्रों और अनुसंधान तथा विकास टीमों को बेहतर मानकों और अधिक विश्वसनीयता के लिए काम करना चाहिए। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और वैश्विक व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखला की व्यवस्था में भी बदलाव हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि उड़ान योजना ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: गुजरात के एकता नगर के केवड़िया में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करेंगी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हरा दिया है। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। स्मृति मानधना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Marking a new chapter in Indian cinema, the historic 72nd National Film Awards ceremony is being held at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. President Draupadi Murmu is presiding over the ceremony. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours as part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting. The awards are being held outside the national capital. The President will also honour the veteran actor Anant Nag with a Dada Saheb Phalke Award for 2024. Earlier, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that inspired by Prime Minister Narendra Modi, the National Film Awards will be hosted at top tourist destinations across the country. Speaking to media at Ahmedabad Airport, Mr. Vaishnaw urged all state governments to submit proposals featuring their finest tourism locations. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed that water is the foundation of life and civilizations and stressed the need for its judicious use, conservation and effective management. Mr. Radhakrishnan made the remarks while inaugurating 9th India International Water Week 2026 in New Delhi today.
3: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
2: urging all participants to share knowledge, build partnerships, and commit themselves to

स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां मैं हूं आपके साथ अपराजिता और हमारे साथ हैं ये प्यारे सुरीले गोल्ड गीत।

0: www.drrmlims.ac.in पर अक्टूबर 2026 के पहले और दूसरे हफ्ते के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को नियमित रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। वेबसाइट का पता है www.drrmlims.ac.in। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अधीक्षण अभियंता के दो पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nwda.gov.in। रेलवे भर्ती बोर्ड पैरामेडिकल श्रेणी के विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए। वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in www.rrbapply.gov.in। पैरामेडिकल श्रेणी के विभिन्न पदों की संख्या है 560। ये पद कौन से हैं, नियम शर्तें आदि क्या हैं, ये जानने के लिए आप इस वेबसाइट से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं rrb.indianrailways.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी समय आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे फिर अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या लेकर आए हैं आज वो कुछ खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
3: नमस्कार मुनीश, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू टुडेज परिक्रमा। So Manish, the good news is Indian women's cricket team captured India's first gold medal at the 2026 Asian Games, which is going on in Aichi, Nagoya in Japan, by defeating Sri Lanka in the final.
0: Yes, a great achievement indeed.
3: And the ladies have done it again, of course. And of course, they have shown some dedication.
0: Yes, and it's a pioneering effort and a befitting kind of say you can say return. Yes, जबरदस्त संयम, खेल कौशल और बेहतरीन जो टीम वर्क है उसका प्रदर्शन करते हुए भारत ने श्रीलंका को 147 रनों से हराकर रोमांचक फाइनल में ये जीत हासिल की है और 2026 गेम्स में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल भी हासिल किया है।
3: जी हाँ, सो एंड द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज कंग्रेचुलेटेड द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑन देयर रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स इन जापान एंड एक्सप्रेसिंग हिज जॉय ओवर द ट्रायंफ। द प्राइम मिनिस्टर लॉडेड द टीम्स एक्सेप्शनल डेडिकेशन, स्टेलर टीम वर्क एंड अनवेवरिंग ग्रिट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। सो शैल वी बिगिन विद द हेडलाइंस नाउ।
0: जी हाँ बिल्कुल।
3: Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया।
3: गवर्नमेंट अर्जेस बैंक एम्प्लॉइज टू रिफ्रेन फ्रॉम रिसोर्टिंग टू स्ट्राइक्स, अग्रीज टू कीप द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन अबेयंस।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात

0: एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: आईएमडी फोरकास्ट वेरी हैवी रेनफॉल ओवर कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा टुडे।
0: और एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी।
1: And Munish, as always, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about the land beneath the waste. And we have another topic also to discuss on, that is the National Film Awards.
0: जी हाँ, भारत केवल नक्शे पर खींची हुई सीमाओं का नाम नहीं है। भारत हमारी गलियां हैं, हमारे गांव हैं, हमारे शहर हैं, नदियां हैं, हमारे पार्क हैं, और इन सब में बसता है हमारा जीवन। फिर इन्हें गंदा देखकर हम भला कैसे आगे बढ़ सकते हैं? स्वच्छता सिर्फ सड़कों, गलियों और घरों को साफ रखने का नाम नहीं है, ये तो संवेदनशीलता का नाम है जो हमें अपने आसपास की हर जगह को अपना समझना सिखाती है। जिस धरती ने हमें जन्म दिया, जिस हवा ने हमें जीवन दिया, जिस पानी ने हमारी प्यास बुझाई, उसे गंदा छोड़ देना क्या सचमुच हमारे संस्कारों के अनुरूप है? कूड़ा उठाना एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यही एक छोटी सी जिम्मेदारी कल के भारत की तकदीर को बदल सकता है। जिस दिन हर नागरिक अपने शहर को उतना ही अपना समझने लगेगा जितना अपना घर, उस दिन स्वच्छता किसी अभियान की मोहताज नहीं रहेगी, वो हमारी जीवन शैली बन जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अकेले के कदम से क्या बदलेगा, लेकिन बदलाव हमेशा किसी एक कदम से ही शुरू होता है। एक व्यक्ति कूड़ा सही जगह डालता है, दूसरा उसे उठाता है, तीसरा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करता है, और देखते ही देखते एक आदत एक मोहल्ले की पहचान बन जाती है। हर दिन हमारे घरों, बाजारों, दफ्तरों, संस्थानों और सार्वजनिक जगहों से ढेर सा कचरा निकलता है, लेकिन क्या आप कभी भी आपने सोचा है दोस्तों कि असल में ये सारा कचरा आखिर जाता कहाँ है?
1: Yes, for years, much of it ended up at dump sites, growing into enormous mounds of legacy waste. As John Wesley famously said, cleanliness is next to godliness. That thought has taken a new shape through the Swachh Bharat Mission Urban, which was launched in 2014.
0: And today, when the country is running the Swachhta Hi Seva Abhiyan, this mission is moving forward. ये कचरे के नीचे दबी जमीन को वापस हासिल कर रहा है।
1: एंड इन 2025 अलोन 3.66 करोड़ मेट्रिक टन्स ऑफ लेगेसी वेस्ट वाज रिमीडिएटेड, व्हाइल 459 अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस 29 स्टेट्स अचीव्ड कंप्लीट डंप साइट रिमीडिएशन।
0: लेकिन असल में ये बदलाव दिखता कैसा है? उदाहरण के लिए गोरखपुर को ही लें। 7 साल तक 40 एकड़ की जगह पर नगरपालिका के कचरे का एक बड़ा ही विशाल ढेर वहां जमा था। बायोमाइनिंग के जरिए हर दिन लगभग 400 टन कचरे को प्रोसेस किया जाता था।
1: Right, so at the same site, recyclables were recovered, black soil was reused, and refuse-derived fuel was sent for co-processing in cement industries. And then came the remarkable transformation. The tarring waste mound disappeared, and the reclaimed land was transformed into the Kachre Se Kanchan Rapti Eco Park.
0: और आज इस पार्क में वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक, हरे भरे लॉन, बच्चों के खेलने की जगह, योग और ओपन जिम जोन, सोलर लाइटिंग, फूड कोर्ट और महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली शक्ति की रसोई का एक रेस्टोरेंट भी है।
1: हाउ ब्यूटिफुल इज दैट? व्हाट वाज वंस अ डंपिंग ग्राउंड इज नाउ अ वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस, वेलकमिंग अराउंड 500 विजिटर्स एवरी डे। बट गोरखपुर इज नॉट अलोन। इन दिल्ली, द भालसवा डंप साइट स्प्रेड अक्रॉस अबाउट 70 एकर्स इज अंडरगोइंग लार्ज स्केल बायो माइनिंग। बाय जुलाई दिस ईयर 99.07 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ लेगेसी वेस्ट हैड बीन रिमीडिएटेड।
0: अगर नागपुर की हम बात करें तो वहां की भांडेवाड़ी साइट को एक इंटीग्रेटेड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी में बदला जा रहा है, जहां कचरे को अलग अलग किया जाता है और फिर उससे खाद बनाई जाती है और उसे ईंधन में तब्दील किया जाता है।
1: इन द सीरीज ऑफ दिस रिमार्केबल जर्नी, लेट्स टेक आवर लिसनर्स टू रायचूर, वेयर रिक्लेम्ड लैंड एट द यकलासपुरा डंप साइट इज टेकिंग एन एंटायरली डिफरेंट फॉर्म। मियावाकी forest with around 60,000 bamboo and native saplings are being planted.
0: इसलिए दोस्तों जब कूड़े का ढेर कहानी का अंत नहीं रह जाता, ये वास्तव में किसी नई चीज की शुरुआत बन जाता है। शायद कोई पार्क, एक जंगल, पुनः प्राप्त शहरी भूमि या आजीविका का एक स्रोत और निसंदेह स्वस्थ वातावरण, जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें याद दिलाया, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं। और यहां सपना सरल है, कचरा हमारे शहरों को परिभाषित नहीं करना चाहिए, और इसीलिए स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता अभियान से भी बढ़कर है।
1: And here I would say, Manish, swachhata is not just about making waste disappear. It is also about reclaiming that what was lost beneath that, our land resource, our green space, and above all, our health. The most beautiful transformation is not when a garbage mountain disappears. It is when life returns to the land beneath it. So shall we come to the next topic now, Manish, which is the National Film Awards, which is ongoing in Kevadia. Today, instead of saying lights, camera, action, let's say lights, camera, India, because India is in action today, celebrating the finest of its cinematic talent.
0: जी हाँ अनुजा, देखिए कि बड़े बजट वाली फिल्मों से लेकर कम बजट में बनने वाली फिल्मों तक, और मराठी और मलयालम से लेकर के संथाली, तुलु और गढ़वाली भाषाओं तक, भारतीय सिनेमा हमेशा से कई तरह की आवाजों का संगम रहा है। और आज ये सभी आवाजें एक शानदार मंच पर एक साथ आती हैं, और वो मंच है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह।
1: And this was instituted in 1954. These are India's most prestigious honors for cinematic excellence. And today, the spotlight moves to Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat, where the President of India is honoring the finest achievements in Indian cinema for the year 2024 right now.
0: Aur Anuja, ye kahani darasal bahut pehle shuru hui thi. 1913 mein Dada Saab Phalke ne Bharat ko pehli पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र दी। चार दशक से भी अधिक समय के बाद पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में श्यामची आई, महाबलीपुरम और दो बीघा जमीन को मान्यता दी गई। जो कुछ मुट्ठी भर सम्मानों के साथ शुरू हुआ था, वो अब सैकड़ों रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों वाले एक बड़े उत्सव में बदल गया है।
1: एंड सिनेमाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एबिलिटी टू कैप्चर द इंटीमेट कॉर्नर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड टर्न देम इनटू स्टोरीज दैट रेजोनेट विद अस। एंड इंडियन सिनेमा विद इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस एंड इमोशंस हैज काउंटलेस सच स्टोरीज टू टेल अस।
0: 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में देशभर की कहानियां एक साथ आती हैं। आर्टिकल 370 ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता और यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला।
1: ममूती एंड कार्तिक आर्यन शेयर्ड बेस्ट एक्टर फॉर ब्रह्म युगम एंड चंदू चैंपियन। राजकुमार पेरियासामी वन द बेस्ट डायरेक्शन फॉर अमरन, वाइल कल्की 2898 AD वॉज ऑनर्ड फॉर होलसम एंटरटेनमेंट।
0: और इस साल कुछ खास बात भी है, पहली बार नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में एक संथाली फिल्म को सम्मानित किया गया है।
1: एंजन डायरेक्टेड बाय रवि राज मुर्मू वन द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर। लेट्स लिसन व्हाट रवि राज मुर्मू हैज टू से ऑन दिस।
2: I am Raviraj Murmu, director producer of a film called Angin. I am deeply honored and delighted to receive the National Award for Best Debut Film of a Director on non-feature category. This recognition is incredibly special to me and to everyone who has been the part of this journey. It is a moment of great pride and encouragement, and I truly grateful to the jury and the National Film Award for this honor.
1: And films in Tulu, Gadhwali too found their place in the national roll of honor, because India cinema is not one language and it is absolutely not one way of telling a story.
0: और मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय सिनेमा हजारों आवाजों से मिलकर बना एक शानदार मोज़ेक, यानी विभिन्नताओं का संगम है। और अब ये अवार्ड्स भी यात्रा कर रहे हैं।
1: And after decades in the national capital, future ceremonies of National Film Awards will move to different states and cities. This year, Ekta Nagar becomes the meeting ground for India's cinematic talent. Well, this is a beautiful reflection of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
0: और फिर आता है जीवन भर का सम्मान। 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार कन्नड़ के अनुभवी अभिनेता अनंत नाग को दिया जा रहा है, जिनका करियर

0: 5 दशकों से भी ज्यादा लंबा है और उन्होंने 6 भारतीय भाषाओं में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है.
1: Perhaps that is the magic of Indian cinema. As Rabindranath Tagore wrote, the butterfly counts not in months but moments and has time enough. Indian cinema too has collected moments frame by frame, language by language, generation by generation. And today, those moments become our shared national story.
0: और दोस्तों अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास. रुक करते हैं पूर्वी भारत के खूबसूरत राज्य झारखंड का. झारखंड आज प्रकृति और भाई बहन के पवित्र प्रेम के महापर्व करम पूजा के रंग में सराबोर है. भादो मास की एकादशी पर मनाया जाने वाला ये लोक उत्सव पर्यावरण संरक्षण और कृषि संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है. इस पावन अवसर पर राज्य में किस तरह का उत्साह है और इसकी सांस्कृतिक महत्ता क्या है, आइए सुनते हैं रांची से अपने संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में.
2: जल, जंगल और जमीन के इस पावन धरा पर आज चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मांदर की गूंज है. गांवों के अखड़े सज चुके हैं और बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए 3 से 7 दिन पहले उठाए गए जावा की टोकरी लेकर अखड़ों की ओर बढ़ रही हैं. राजधानी रांची आज एक अनूठे उत्सव का गवाह बन रही है, जहां पारंपरिक वेशभूषा में सजे हजारों श्रद्धालुओं का भव्य सांस्कृतिक जुलूस ढोल नगाड़ों की थाप पर मुख्य मार्गों से गुजर रहा है. इस पावन अवसर पर झारखंड कला संस्कृति और खेल निदेशक आसिफ इकराम ने आदिवासियों की समृद्ध परंपरा और आधुनिक समय में इसके महत्व को रेखांकित किया है.
3: समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए काफी प्रसिद्ध है. जल, जंगल, जमीन की रक्षा की हम लोग बात करते हैं, तो उस उद्देश्य से करम पर्व जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. जैसे कि करम का जो मेन अगर थीम को अगर देखा जाए तो 3 थीम में विभक्त किया जा सकता है. एक तो कि हमारा प्रकृति के प्रति प्रेम, संरक्षण, वातावरण को संरक्षित करना. आज जब जलवायु परिवर्तन का अभी परिवेश है वैश्विक स्तर पर, या फिर मेटिकल चेंजेस जो आ रही है, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए कर्म की अपनी महत्व है.
2: कर्म पर्व का मुख्य केंद्र बिंदु अखड़े में कर्म वृक्ष की डालियों की स्थापना और पाहन यानी पारंपरिक पुजारी द्वारा की जाने वाली विशेष पूजा है. 7 प्रकार के अनाजों से तैयार जावा की टोकरी के इर्द गिर्द जब पाहन कर्म और धर्म की लोक कथा सुनाते हैं तो पूरी घाटी आस्था से सराबोर हो उठती है. आज रात भर झारखंड के गांवों और शहरों में मांदर की थाप पर सामूहिक झूमर नृत्य का दौर चलेगा. ये त्योहार याद दिलाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हमें अपनी जड़ों और पर्यावरण को कभी नहीं भूलना चाहिए. परिक्रमा के लिए रांची से मैं महविश रहमान.
1: टेकिंग यू ऑल टू गोवा नाउ, वेयर गोवा is seeing a good response to the Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana, with people opting for rooftop solar panels to reduce power costs and use clean energy. We have a report on this.
4: The PM Surya Ghar Yojana is encouraging more people in Goa to turn to solar power for their homes and establishments. The scheme is giving Goans an opportunity to use clean and renewable energy while also helping them bring down their electricity bills. Beneficiaries who have installed solar panels say they have seen a clear reduction in their power bills.
5: We installed 10 kilowatt rooftop solar in April 2025, and prior to that we used to receive around minimum 9,000 to 10,000 with this bill a month. Upon installation, it has drastically dropped to 1,000-2,000 rupees, and during high power generation season, it even comes down to 300-500 rupees. We avail even the central and state subsidy, and we receive the funds. It has largely benefited us from the economic point of view.
4: The Goa government aims to generate 300 megawatts of solar power by 2030. Farmers can also use solar pumps for irrigation under the PM Kusum scheme. With solar, wind and hydropower, Goa is moving towards a cleaner energy future. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
0: दोस्तों पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत द्वीपों के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता ही सेवा के साथ विभिन्न गतिविधियों के आयोजन किए जा रहे हैं. आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट.
6: सेवा सप्ताह के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान भी प्रमुख गतिविधियों में शामिल है. इसी क्रम में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया. इस वर्ष अभियान की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत. इस अवसर पर उपराज्यपाल ने द्वीप समूह को श्रेष्ठ अंडमान बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया. उन्होंने पेयजल, बिजली, परिवहन, सस्ती हवाई सेवाओं, स्थानीय मछुआरों की आजीविका और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास

फिल्म लैला मजनू से अपने फिल्मी सफर की उन्होंने शुरुआत की। आज उनका जन्मदिन है तो उन्हें और उनके चाहने वालों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। और आइए उस प्यारे से दौर को याद करते हुए सुनते हैं उन पर फिल्माए गीतों की ये झलक।

0: और दोस्तों आज पुण्यतिथि है मंसूर अली खां पटौदी की, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी थे। अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से अधिक कप्तानी के कारण क्रिकेट जगत में अमिट छाप छोड़ी थी मंसूर अली खां पटौदी ने, और उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में रेफरी की भी भूमिका निभाई थी। और दोस्तों अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का, अनुमति दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और अनुजा कुमार को परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, और फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। 1954 में शुरू किए गए ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान हैं, जो विभिन्न श्रेणियों, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा लेखन में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकरों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। उन्होंने 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। इस दौरान देश भर के 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई थी। श्री वैष्णव ने सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों को अपने अपने क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की पहचान करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के भावी संस्करण की मेजबानी कर सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगले चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व LDP के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो कर रहे हैं। श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिजिटल मंत्री रह चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत जापान विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतीय किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना आवश्यक है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना दक्षता पुरस्कार NFCSF समारोह में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति किसानों की समृद्धि पर निर्भर करती है। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित कर लिया है, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu is presenting the 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Gujarat. Instituted in 1954, these award represents India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature, and writing on cinema. In his address, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav congratulated all the award winners and acknowledged the contribution of technicians, cinematographers and other members working behind the scenes. He also congratulated the winner of the Dada Saab Phalke Award for 2024, Anand Nag, and appreciated his contribution to the film world spanning more than 5 decades. The minister said that the idea of taking the National Film Awards to different tourist destinations draws inspiration from India's G20 presidency, when more than 200 meetings were held in over 60 cities across the country.
4: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. Aaj hum Ekta Nagar, jahan Sardar Sahab ki world's tallest statue hai, us jagah aaj hum ikatte hue hain. Ab agli baar we'll go to one more important destination. How will we select the destination? I am giving a call to all the states and union territories. Select one of the most important tourist destinations in your state. Tell us what improvements you'll make in it. Your destination will be selected and we'll have the next round of NFA in the selected tourist destination.
3: Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the 3rd National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and Union Territories in New Delhi. The 2-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. During the conference, deliberations will also focus on identifying and adopting appropriate strategies to further strengthen the central government's measures for supply reduction, demand reduction, and harm reduction. The government has urged bank employees to refrain from resorting to strikes and work towards resolving issues through dialogue and ensure that banking services remain uninterrupted. The appeal comes ahead of a 3-day nationwide strike called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in the public sector banks from the 28th to 30th September. They have called a strike in support of 2 principal demands: implementation of 5-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive PLI scheme. The Union Finance Ministry said that following detailed discussions, the government has fulfilled one of the demands and decided to keep the PLI scheme in abeyance. The ministry said strikes cause disruption in banking services that inconvenience the public, impact the business of the bank, and ultimately harm the interest of bank employees. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India's next phase of growth must be built on quality. Addressing the 53rd National Management Convention of the All India Management Association in New Delhi today, Mrs. Sitharaman said that every factory floor, boardroom, service center, research and development team must aim for higher standards, fewer defects and greater reliability. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed that water is the foundation of life and civilizations, and stressed the need for its judicious use, conservation and effective management. Mr. Radhakrishnan made the remarks while inaugurating 9th India International Water Week 2026 in New Delhi today. Urging all participants to share knowledge, build partnerships and commit themselves to saving and conserving water, the Vice President said water security will lead to people's security and national security. India women's cricket team defended the gold medal at the Asian Games after thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nishin in Japan today. Opting to bat, India posted 216 for the loss of 3 wickets in the stipulated 20 overs, riding on Smriti Mandhana's 79 runs. In reply, Sri Lanka were bowled out for just 69 in 15.4 overs. This is India's first gold medal at the ongoing Asiad and overall 7th medal. The women in blue had won the gold in the previous edition of the Games too and have now defended the title against the same team. India's Roshi Beena Devi confirmed a 3rd medal at the Asian Games after securing a 5-0 win over Chu Man Sin of Macau, China, in the women's 60kg quarterfinals at the Aichi Prefectural Martial Arts Hall in Nagoya, Japan today. And that is the end of this news bulletin.

स्वागत करती हूँ मैं प्राचिता एक बार फिर आप सभी का आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ ये समय है गाते गुनगुनाते का। और गाते गुनगुनाते में मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कुछ दिलचस्प बातें, हमारी फिल्मों से जुड़ी, उनके एक्टर एक्ट्रेसेस से जुड़ी, उनकी कहानी से जुड़ी, और उन्हीं से जुड़े कुछ सवाल पूछती हूँ जिनके जवाब आप हमें लिख भेजते हैं ईमेल आईडी पर। तो इससे पहले कि हम अपना ये सिलसिला यानी कि सवाल जवाब का सिलसिला करें शुरू, कुछ क्विज, एक कॉन्टेस्ट टाइप आपके साथ खेलें। सुन लेते हैं परदेश फिल्म से ये साउंड ट्रैक सोनू निगम की आवाज में।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

90 के दशक की शुरुआत में एक मल्टी स्टारर फिल्म में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के इर्द गिर्द घूमती है ये फिल्म, जिसका जिक्र मैं आपसे अब कर रही हूँ। और दर्शकों ने इस फिल्म को खूब सराहा, खूब पसंद किया, जिसकी शूटिंग जो है वो देहरादून की वादियों में की गई। मंसूर खान की इस फिल्म में पहले अक्षय कुमार, मिलिंद सुमन और आदित्य पंचोली को अलग अलग रोल्स के लिए चुना गया, लेकिन बाद में इनकी जगह ये रोल्स किए किसी और ने। अब ये आपको पहचानना है कि ये रोल्स किसने किए। फिल्म के सॉन्ग्स के बारे में अगर कुछ आपको बताऊं तो मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स और जतिन ललित के म्यूजिक ने ऐसे गाने बनाए कि सभी के लबों पर बस यही ट्रैक्स थे, यानी कि इसी फिल्म के ट्रैक्स थे। फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में 6 कैटेगरीज में इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया और बेस्ट फिल्म और बेस्ट एडिटिंग के लिए 2 फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म ने जीते भी। तो अगर आप पहचान चुके हैं 90s की ये कौन सी फिल्म है जो 90s की बिल्कुल स्टार्टिंग में आई, तो आपको फिल्म का नाम जल्दी से हमें टाइप करके भेज देना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके नाम यहां शामिल हो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में, तो आपको करना है क्या, एक ट्रिक बता देती हूं कि आपके मैसेजेस जो हैं वो हमारे पास जल्दी पहुंच जाएं। आप ईमेल के सब्जेक्ट कॉलम में फिल्म का नाम लिखकर इसे भेज दें। सेंडर का नाम तो हमें दिख ही जाता है। तो fmgoldairdelhi@gmail.com है आपका ईमेल आईडी, या फिर वो रास्ता जो आपके जवाब हम तक पहुंचाएगा। तो बहुत सारे हिंट्स मैं अब आपको दे चुकी हूं, आप सिर्फ फिल्म का नाम टाइप कीजिए। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं रंगीला फिल्म से ये बहुत ही अच्छा गाना।

रंगीला के इस गाने के बाद चलिए जान लेते हैं कि पहला सही जवाब यानी कि पहला सही आंसर किसने लिखकर भेजा है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे इस गाने से पहले पूछा था। तो पहला सही जवाब हमें लिख भेजा है नवीन भाटिया साहब ने, दूसरे नंबर पर आते हैं संकेश पटेल और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं अमित नरूला। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर, और अनाउंस करने के बाद अगर आप यहाँ ईमेल करते हैं तो आपका नाम शामिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने 17:25 पर ये नाम अनाउंस किया, 17:25 और कुछ सेकंड हुए थे, तो इसके बाद जो ईमेल आएगी सही जवाब वाली वो शामिल नहीं होगी। तो खैर, वैसे बहुत टाइम दिया गया आपको, है ना, इतना लंबा और इतना अच्छा गाना मैंने आपको सुनवाया। और किसने सही जवाब लिखा है, शशि भूषण है हमारे साथ, सोनम, माइकल, दया शंकर हैं, धीरज अरोड़ा हैं, सरोज यादव हैं, और आपके साथ है रोहित ठाकुर गुरुग्राम से, निरंजन भाले राव ने, शशि भूषण ने, प्रफुल मोहत प्रफुल ने, सभी ने सही जवाब लिखा, पंकज कुमार ईमानदे, नवीन किशोर साहब, महेश अग्रवाल का जवाब सही नहीं है, अक्षत कुमार ने बिल्कुल सही बताया, इदरीस सैफी, मुक्ता बरगोटा और मोहित यादव, पुष्पेंद्र सिंह, डीबी राणा साहब नेहरू विहार से बताते हैं सही सही, गिरीश बम, अंजलि, अथर्व निमकर वडोदरा से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं, साथ ही दीपू सैनी, जगदीश बजाज, अजीत भावसार जो हैं वो विरमगाम गुजरात से बताते हैं सही जवाब। इसी के साथ सही जवाब देने वालों में जयन टी नाशिकार का नाम भी आ जाता है, और इसके बाद उग्रसेन यादव, बबलेश पवार, राजा आर और राजकोट से जैमिन जैन ने बिल्कुल सही सही बता दिया है फिल्म का नाम। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आमिर खान ने इसमें एक्टिंग की, इनके साथ आयशा जुल्का रही, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, इन सब ने बहुत ही बढ़िया इस फिल्म में एक्टिंग की। आमिर ने संजू का रोल निभाया, जिसे संजय लाल शर्मा, यानी कि पूरा नाम उनका संजय लाल शर्मा था, निक नेम उनका संजू था। इमरान खान इसमें यंग संजय लाल के रोल में नजर आए, और आयशा जुल्का ने अंजलि का रोल प्ले किया। दीपक तिजोरी शेखर बने और मामिक सिंह बने रतन लाल शर्मा, यानी कि रतन। तो ये एक मजेदार फिल्म है, और वैसे मैं ये मानती हूं कि आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, इस फिल्म से गाना आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले एक और सवाल आप सबके लिए, 90s में ही एक और फिल्म आई, और ये जो फिल्म है ना, इसमें रीमा लागू, टॉम ऑल्टर, अवतार गिल, मुश्ताक खान, दीपक तिजोरी, ऐसे कलाकारों ने मेन लीड्स के साथ काम किया। इस फिल्म ने फिल्मफेयर अवार्ड जो सेरेमनी होती है उसमें 7 नॉमिनेशंस अपने नाम किए और 4 अवार्ड जीते भी। हीरो और हीरोइन के जो नाम हैं उनके, यानी कि फिल्म में जो उनके नाम रहे वो कैरेक्टर नेम भी हैं, यानी कि हीरो हीरोइन के नाम ओरिजिनल नेम फिल्म में उनके नाम रहे। इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म के गाने

0: ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जानेंगे कि किसने सही जवाब लिखकर भेजा है और अगला क्वेश्चन भी तो पूछना है आपसे।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो।

0: कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आपके बहुत सारे जवाब हम तक पहुंच गए हैं, तो मैं बता देती हूं कि सबसे पहले, और इस बात की मुझे खुशी है कि इस जो क्वेश्चन है इसका सबसे ज्यादा सही जवाब आप लोगों ने लिखा है, बस कुछ परसेंटेज ही हैं जिन्होंने गलत जवाब लिखे हैं, यानी कि सिर्फ दो तीन आंसर ऐसे आए हैं जो सही नहीं है। तो पहला सही जवाब हमें लिख भेजा है संकेश पाटिल ने, और दूसरे नंबर पर आते हैं शशि भूषण साहब, और तीसरे नंबर पर पंकज कुमार। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद भी सही जवाब मिले हैं अमित नरूला, नवीन भाटिया, धीरज अरोड़ा, प्रणव शिंदे, नवीन किशोर, निरंजन भाले राव, ईमान दे, दीपू सैनी, रितेश ईमान, रोहित ठाकुर गुरुग्राम से देते हैं सही जवाब, अनिल सरोड़े, इद्रिस सैफी, मुक्ता बरगोटा, गौरव गुरनानी, और आपके साथ है अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, पुष्पेंद्र सिंह, और आपके साथ योगेश नागर ने भी सही जवाब लिखकर भेजा ग्रेटर नोएडा से, जगदीश बजाज विकासपुरी से देते हैं सही जवाब, बबलेश पवार बाड़मेर राजस्थान से, सुदर्शन अनिता सिमरन मुखी सोनीपत से, डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से, प्रफुल का भी सही जवाब आया, और सही जवाब दिया है हमें प्रकाश गोगिया ने दिल्ली से, सौरभ मेहमा ने हमें सही जवाब दिया, संध्या द्विवेदी हैं आपके साथ, और संध्या के साथ अजय भी सही जवाब लिखकर भेजते हैं, और आप ही के साथ सही जवाब देने वालों में लिस्ट और लंबी होती चली जा रही है। जयन टी नाशिकार हैं, आपने भी बिल्कुल सही सही बताया है, और राजकोट से जैमिन जैन, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, उमेश कुमार साहब खयाला से बताते हैं सही सही कि फिल्म का नाम है आशिकी। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आप सबने, और अब आप पहचान चुके हैं तो आप जानते भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते या जो जवाब नहीं दे रहे सिर्फ सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि राहुल रॉय राहुल के किरदार में इसमें नजर आए, और अनु अग्रवाल ने अनु का किरदार निभाया। इसमें दीपक तिजोरी भी रहे, इन्होंने बल्लू का किरदार निभाया। अवतार गिल जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर देश पांडे बने। फिलहाल गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अगला सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। 1992 में एक फिल्म आई जो रोम कॉम थी और जिसका टाइटल एक ही शब्द का है। हिंदी की मेन लीड में ये पहली हीरो की ना हिंदी की नहीं हीरो की मेन लीड में ये पहली फिल्म थी, और दिलचस्प बात ये भी है कि हीरो हीरोइन की इस जोड़ी ने

ध्यान से सुनिएगा, हीरो हीरोइन की ये जो जोड़ी इस फिल्म में दिखी, इस जोड़ी ने एक साथ एक दूसरे के साथ किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया, सिर्फ इसी फिल्म में काम किया। और फिल्म का म्यूजिक अन्नू मलिक साहब का रहा, लिरिक्स आनंद बख्शी के रहे। ऐसी बातें मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप लोग सोचते होंगे गानों के बारे में, ये इसलिए बताते हैं क्योंकि कई बार उस फिल्म का जिसका जिक्र हो रहा होता है उसके गाने इतने पॉपुलर हुए होते हैं, कई बार फिल्म अपने गानों से चलती है, कई बार स्टोरी से चलती है, कई बार जो कैरेक्टर्स हीरो हीरोइन ने प्ले किए उनसे, यानी कि चलता तो पूरा पैकेज ही है। लेकिन याद आपको क्या रहा जब आप सिनेमा घर में गए या फिर आपने घर में भी देखी टीवी पर? तो इसीलिए कुछ बातें हैं जो कोई श्रोता किसी क्लू से पकड़ेगा फिल्म का नाम, किसी का ध्यान कहीं और रहेगा। तो ये सब बातें आपके लिए हैं। फिल्म का नाम पहचान कर जल्दी से लिख दे fmgold@gmail.com पर। आशिकी फिल्म से ये गाना मिस नहीं करना चाहती मैं भी और आप भी।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

जी बिल्कुल, आपके बहुत सारे जवाब आ गए हैं, लेकिन इस बार जो है वो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आए हैं, कुछ सही कुछ गलत, मतलब आधे आधे कह सकते हैं अगर परसेंटेज की बात करें तो। पहला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है दीपू सैनी ने, उसके बाद दूसरा सही जवाब हमें धीरज अरोड़ा, भारती सोनिक, तनु झा ने लिखा है, और तीसरे नंबर पर आते हैं रोहित ठाकुर। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसके बाद भी सही जवाब आए हैं बबलेश पवार, प्रणव शिंदे, चंदू कुलकर्णी, अभिनय गुप्ता और प्रफुल मोहत प्रफुल, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार खयाला से सही जवाब लिखकर भेजते हैं, और शशि भूषण भी हैं हमारे साथ, आपने भी बिल्कुल सही जवाब लिखा। फिल्म का नाम है चमत्कार, और

चमत्कार फिल्म में एक्टिंग की शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह, उर्मिला मातोंडकर और शम्मी कपूर भी इस फिल्म में रहे और शाहरुख ने सुंदर श्रीवास्तव का रोल इसमें प्ले किया। उर्मिला माला के किरदार में नजर आई और नसीरुद्दीन शाह अमर कुमार यानी कि मार्को के रोल में नजर आए। तो इस फिल्म से एक गाना तो बनता है, तो सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गाना चमत्कार फिल्म से।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: जाने से पहले छोड़े जा रही हूँ आपको इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से। आप सबके साथ हर बार बहुत आनंद आता है ये क्विज, ये जो हम एक छोटा सा कॉन्टेस्ट यहाँ गाते गुनगुनाते में खेलते हैं। फिर किसी रोज आपसे जरूर मुलाकात होगी। मैं चलती हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और स्वजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। सरकार ने कहा है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR पर GST से छोटे व्यापारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही

0: डिजिटल भुगतान महंगे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया है। एनपीसीआई ने कहा कि एमडीआर केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर लागू होता है। एनपीसीआई ने कहा कि 2000 रुपए तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर एमडीआर शून्य है और इसलिए जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एलडीपी के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिजिटल मंत्री रह चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत जापान विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिन के भारत दौरे पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने क्रिकेट टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu presented the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Gujarat today. The ceremony honored outstanding cinematic achievements for the year 2024. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories. Veteran Kannada actor Anand Nag received the prestigious Dada Saab Phalke Award for the year 2024. Article 370 received the Best Feature Film Award, while Yami Gautam was honored with the Best Actress Award for a role in the film. Mammootty and Kartik Aaryan jointly received the Best Actor Award for Brahma Yogam and Chandu Champion. Rajkumar Periyasamy received the Best Direction Award for Amaran, while Kalki 2898 AD was honored as the Best Popular Film, providing wholesome entertainment. Randeep Hooda received the Best Debut Director Award for Swatantrata Veer Savarkar. We now take you live to the National Award Ceremony, where President Murmu is addressing the gathering.

0: Speaking on the occasion, Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu highlighted the vision for the next phase. The minister noted that following the extension of the scheme for another 10 years, the government aims to construct 100 new airports and 200 modern airports or helipads across the country. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India will remain an important driver of global energy demand in the decades ahead. The minister co-chaired the 7th high-level meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, India Energy Dialogue with OPEC Secretary-General Haitham Al-Gas in New Delhi. Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force today concluded the bilateral air exercise Veer Guardian 2026 at Air Force Station Jodhpur. The Indian women's cricket team reasserted its continental dominance by clinching a second successive gold medal at the Asian Games, thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nishin in Japan today. This is India's first gold medal at the ongoing Asiad and overall seventh medal. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. Indian men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals and assured itself of a medal at the Asian Games. Indian boxer Jadumani Singh marched into the pre-quarters in the men's 55-kilogram preliminary round. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, स्वच्छता केवल हमारे आसपास की सफाई तक सीमित नहीं है, ये इस बात से भी जुड़ी है कि हमारे घरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों से निकलने वाले कचरे का क्या होता है और उसका प्रबंधन किस तरह किया जाता है। इसी सोच को लोगों की भागीदारी से आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसका विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर ये सोच किस तरह आगे बढ़ रही है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत कचरा प्रबंधन को कैसे मजबूत किया जा रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसके दो हिस्से हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के अंतर्गत शौचालय की सुविधा और उसके इस्तेमाल के साथ साथ ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया है। ग्रामीण भारत को वर्ष 2019 में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था। अब बड़ी संख्या में गांव ODF प्लस मॉडल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता की सोच और व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन स्वच्छता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और शहरों में बढ़ते कचरे का प्रबंधन, पुराने डंप साइट का उपचार और उपयोगी सामग्री को अलग कर उसे दोबारा इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी बेहद जरूरी है। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत शहरी स्वच्छता को एक व्यापक व्यवस्था के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के जरिए इस दिशा में क्या बदलाव लाए गए हैं।
2: स्वच्छ भारत मिशन शहरी का पहला चरण वर्ष 2014 में शुरू हुआ। इसका मुख्य जोर शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने और ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में बुनियादी व्यवस्था तैयार करने पर था। इस दौरान घरों में शौचालय, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय तथा घर घर से कचरा उठाने जैसी व्यवस्थाओं पर काम किया गया। साथ ही स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम के बजाय जन भागीदारी का अभियान बनाने पर भी जोर दिया गया। वर्ष 2021 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 इसी काम को आगे बढ़ाता है। अब जोर केवल कचरा उठाने पर नहीं बल्कि कचरे के पूरे चक्र को व्यवस्थित करने पर है। इसी सोच को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 और मजबूत करते हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए हैं और वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं। इनका उद्देश्य कचरे के संग्रह से लेकर उसके प्रसंस्करण और निपटान तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। नए नियमों में कचरे को चार अलग अलग हिस्सों में रखने पर जोर दिया गया।

0: है। पहला है गीला कचरा। इसमें रसोई और खाने से जुड़ा जैविक कचरा आता है जिसका इस्तेमाल खाद या बायोगैस बनाने में किया जा सकता है। दूसरा है सूखा कचरा। इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और लकड़ी जैसी चीजें आती हैं जिन्हें अलग करके दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए गए डायपर और सैनिटरी पैड। इसे सामान्य कचरे से अलग रखना जरूरी होगा। चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट। इसमें दवाइयाँ, बल्ब, पारा वाले उपकरण और पेंट के डिब्बे जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें सामान्य कचरे के साथ मिलाने के बजाय तय व्यवस्था के अनुसार अलग रखना होगा। नए नियमों में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले संस्थान, रोज 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी इस्तेमाल करने वाले संस्थान या प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करने वाले संस्थान बल्क वेस्ट जनरेटर्स की श्रेणी में आएंगे। लेकिन शहरों की स्वच्छता की चुनौती केवल नए कचरे के प्रबंधन तक सीमित नहीं है। देश के कई शहरों में वर्षों से जमा पुराने कचरे के बड़े बड़े ढेर मौजूद हैं। ये पुराने डंप साइट्स जमीन के साथ साथ हवा और भूजल पर भी असर डाल सकते हैं। इनमें आग लगने और हानिकारक गैसें निकलने का खतरा भी रहता है। इसलिए जरूरत केवल नए डंप साइट्स बनाने से रोकने की नहीं बल्कि पुराने डंप साइट्स में जमा कचरे का भी वैज्ञानिक तरीके से उपचार करना है। इसी दिशा में सामने आता है लक्ष्य जीरो डंप साइट। देश में करीब 2479 लेगेसी डंप साइट्स की पहचान की गई है। इनमें करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है और ये लगभग 15,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं। इन पुराने डंप साइट्स के उपचार में बायोमाइनिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इन प्रयासों की मदद से अब तक 60% से अधिक लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया जा चुका है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: श्रोताओं, पुराने कचरे के ढेर को हटाने का मतलब केवल एक जगह को साफ करना नहीं है। जब किसी डंप साइट से कचरा हटता है तो उसके साथ वर्षों से बंद पड़ी जमीन भी दोबारा उपयोग में लाई जा सकती है। यानी कचरे के वैज्ञानिक उपचार का असर शहर की सफाई से आगे बढ़कर जमीन के इस्तेमाल और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच सकता है। इसी बदलाव को देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जा सकता है। कहीं पुरानी डंप साइट की जमीन पर पार्क किया गया है, कहीं उसे पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं उसी जगह आधुनिक कचरा प्रसंस्करण की व्यवस्था तैयार की गई है।
2: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक समय 40 एकड़ का क्षेत्र नगर पालिका के कचरे के बड़े ढेर के रूप में इस्तेमाल होता था। करीब 7 वर्षों तक ये शहर का प्रमुख कचरा निपटान स्थल रहा। इस जगह पर जमा कचरे का बायोमाइनिंग के जरिए वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया गया। हर दिन करीब 400 टन कचरे को प्रोसेस किया गया और उससे RDF यानी कचरे से तैयार ईंधन, काली मिट्टी रिसाइकलिंग योग्य सामग्री को अलग किया गया। काली मिट्टी का इस्तेमाल निचले इलाकों को भरने में किया गया जबकि कचरे से तैयार ईंधन को सीमेंट उद्योगों में को प्रोसेसिंग के लिए भेजा गया। धीरे धीरे कचरे का ये ढेर हटता गया और 40 एकड़ की पूरी जमीन को अब कचरे से कंचन राप्ती इको पार्क के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ हरे मैदान, पैदल और जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने की जगह, खुला जिम, योग क्षेत्र और सौर प्रकाश तथा जल संरक्षण की सुविधाएं हैं। पार्क में स्थानीय आजीविका के लिए भी जगह आई गई है। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह शक्ति की रसोई यहाँ एक रेस्तरां चलाता है। यहाँ रोज करीब 500 लोग पहुँच रहे हैं। दिल्ली में भी भलसवा डंप साइट पर पुराने कचरे के उपचार का काम जारी है। करीब 70 एकड़ में फैले इस डंप साइट पर जुलाई 2022 से मिशन मोड में बायो माइनिंग किया जा रहा है। मई 2026 तक साइट के आधे से अधिक हिस्से को दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया जा चुका था जबकि 31 जुलाई 2026 तक 99,07,000 मीट्रिक टन पुराने कचरे का उपचार किया जा चुका था। नागपुर में भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड को भी इसी तरह बदला जा रहा है। यहां 10,00,000 मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे का उपचार किया गया है। इससे कई एकड़ जमीन को दोबारा उपयोग में लाने का रास्ता खुला है। लेकिन नागपुर का प्रयास केवल जमीन वापस पाने तक सीमित नहीं है। भांडेवाड़ी अब तक इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के रूप में काम कर रहा है। यहाँ उपयोगी सामग्री को अलग किया जाता है, कचरे से खाद बनाई जाती है और वेस्ट डिराइव्ड फ्यूल तैयार किया जाता है। धूल नियंत्रण और लीचे

0: उपचार जैसी व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। कर्नाटक के रायचूर में 35 एकड़ के याकलपुरा डंप साइट को भी वैज्ञानिक तरीके से बदला जा रहा है। यहां करीब 62,252 मीट्रिक टन कचरे का उपचार किया गया है और लगभग 22 एकड़ शहरी भूमि को वापस उपयोग में लाया जा चुका है। इस जमीन के एक हिस्से में करीब 5 से 7 एकड़ में मियावाकी जंगल विकसित किया जा रहा है। इसके लिए करीब 60,000 बांस और स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: श्रोताओं, गोरखपुर, दिल्ली, नागपुर और रायचूर के उदाहरणों में तरीका अलग है, लेकिन दिशा एक जैसी दिखाई देती है। पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उपचार करना, उसमें उपयोगी सामग्री को अलग करना, जमीन को वापस उपयोग में लाना और ये सुनिश्चित करना कि उसी जगह फिर कचरे का नया ढेर न बने, यही बदलाव शहरी स्वच्छता को केवल सफाई अभियान से आगे ले जाता है और इसे टिकाऊ व्यवस्था और रोजमर्रा की आदतों से जोड़ता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केवड़ियारय्याः एकता नगरे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मुः इत्यनया द्विसप्ततितम राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारैः कलाविदः समादृताः। नवमन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समुद्घाटनम्। जल प्रबन्धन जटिलता निरसनाय सर्वहितधारकाणां समवायि सहयोगाय उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णेन समाहूतः प्रयासः। मादक द्रव्य दुर्व्यसनोन्मूलनाय नवदिल्ल्यां तृतीय राष्ट्रिय एएनटीएफ प्रमुख सम्मेलनस्य केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन विहितं समुद्घाटनम्। तटीय आंध्रप्रदेशे ओडिशा राज्ये च अद्य अतिवृष्टिपरा संचेतना भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन प्रख्यापिता। अपि च एशियाई क्रीडासु श्रीलंका दलमपाकृत्य भारतीय महिला क्रिकेट दलेन प्रासादितं स्वर्ण पदकम्। अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासु 11,000 धावनांकान् संचित्य स्मृति मन्धानायाः अनन्यः ऐतिहासिकः कीर्तिमानः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गुजरातस्य केवड़िया स्थिते एकतानगरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य सायं द्विसप्ततितम राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारैः कलाजगतः मूर्धन्य प्रतिभावतः भूषयिष्यति। इते सर्वोच्च पुरस्काराः भारतीय चलचित्रस्य श्रेष्ठतां प्रख्यापयन्ति। सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य नूतन नीत्याः प्रभावेन एषः ऐतिहासिकोत्सवः राष्ट्रिय राजधानी दिल्ल्याः बहिः प्रथमवारं आयोज्यते। अस्मिन् मंगलावसरे राष्ट्रपतिः भारतीय चलचित्र जगतः उत्तम अभिनेत्रे अनंतनागाय प्रतिष्ठितं दादा साहेब फाल्के पुरस्कारं अर्पयिष्यति। श्रेष्ठ अभिनेतुः राष्ट्रिय सम्मानं तु भ्रमयुगम चलचित्रस्य कृते मुम्बटी पर्याय तथा चंदू चैंपियन चलचित्रस्य कृते कार्तिक आर्यन इत्यस्मै च संयुक्त रूपेण प्रदास्यते। अमरन चलचित्रस्य उत्कृष्ट संयोजनाय राजकुमार पेरियासामी श्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कारं लप्स्यते। अमुष्मिन्नेव क्रमे कल्कि इति चलचित्रं सर्व मनोरंजक लोकप्रिय चलचित्रस्य पदवीं अवाप्नोत्। अपरं च स्वातंत्र्य वीर सावरकर चलचित्रेण रणदीप हुड्डा प्रथम निर्देशन विभागे विजयं समासादितवान्। इतर विभागे मराठी भाषायाः भंगार उत्तम चलचित्रत्वेन विख्यातं जातम्। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चलचित्राय आनंद एल रायः श्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कारं ग्रहीष्यति। अथ संताली भाषायाः अंगेन

0: चलचित्रस्य कृते रवि राज मुर्मुः प्रथम निर्देशन सम्माननम् प्राप्स्यति। नवदिल्ल्यां जल सप्ताहस्य समुद्घाटनं कुर्वन् उपराष्ट्रपतिः राधाकृष्णन् जल संरक्षणम् अत्यन्तम् अपेक्षितम् इति समदीदृशत्। संबोधने तेन जलस्य मितव्यय प्रयोगाय अत्याग्रहो विहितः, संरक्षणाय च महद् आह्वानम् अकारि। जल प्रबंधन जटिलताः विवृण्वन् सः न्यवेदयत् यत् कापि संस्था एकाकिनी समस्याः सोढुं न पारयति, अतः तेन सर्वहितधारकाणां समन्वित सहयोगः समाहूतः।
1: Water should be used precisely where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
0: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य नवदिल्ल्यां राज्य केन्द्र शासित प्रदेशानां मादक द्रव्य विरोधी विशेष बल प्रमुखाणां तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् द्विदिवसात्मकं सम्भाषणं भावि संततेः मादक द्रव्य दुर्व्यसनात् सुरक्षा प्रदानाय एका महती सुदृढा पीठिका भूत्वा सेविष्यते। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन संयोजिते अस्मिन् अधिवेशने 37 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः ANTF प्रमुखाः भागं गृह्णन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य अहमदाबाद विमानपत्तनं संप्राप्य महतीं नीतिगत घोषणां अकरोत्। तेन प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रेरणया प्रभावितः सन्तः अग्रिमाः राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समारोहाः देशस्य श्रेष्ठ पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यते। अहमदाबाद विमानपत्तने वार्ताहरान् आहूय तेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः स्वपर्यटन स्थलानां प्रस्तावाः आहूताः। यस्य राज्यस्य प्रस्तावः श्रेष्ठो भविष्यति तत् राज्यम् अग्रिम पुरस्कार समारोहस्य आतिथ्यं विधास्यति।
2: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दें। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करें तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हो।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अद्य नवदिल्ल्यां अखिल भारतीय प्रबंधन संघस्य 53वें अधिवेशने प्राख्यापयत् यत् भारतस्य अग्रिम संवृद्धिः गुणवत्ता प्रतिष्ठायाम् एव संभवेत्। सा सर्व उत्पादनशालाभ्यः प्रबंधन मण्डलेभ्यश्च उच्च मानदंड धारणम् अन्वशाषत्। वित्तमंत्री सीतारामन समदीदृशत् यद् वैश्विक व्यापार श्रृंखलायाम् अनिश्चिततायाम् सत्याम् 53 अधः मन्दकाले अपि भारतीय अर्थव्यवस्था 8% समीपम् अबाधित गत्या संवर्धते। कुआलालम्पुरस्थेन भारतीय उच्चायोगेन पर्यटन वीजा पत्रेण मलेशिया देशं प्रति गच्छन्तः भारतीय नागरिकाः तत्र कार्यं न स्वीकर्तुं प्रबोधिताः। एकस्मिन् परामर्शे उच्च आयोगः अवदत् यत् 30 दिवसात्मकस्य वीजा मुक्त सौकर्यस्य उपयोगेन कार्यं प्राप्तुं मलेशिया देशं प्रति आगच्छतां भारतीय नागरिकाणां संख्या वर्धिता अस्ति। बहवः भारतीयाः नागरिकाः मिथ्या कार्य प्रतिज्ञायुक्तैः अविवेकी अभिकर्तृभिः भ्रमिताः भवन्ति, येन अतिवासः अवैध स्थितिः शोषणं

सह वीर गार्डियन विंशति षड्विंशति इति सम्पन्नः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन दिवसे तटीय आंध्र प्रदेशे ओडिशायां विभिन्नेषु स्थानेषु अत्यधिक वृष्टि परं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां अद्य सनु अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे वृष्ट्या बाधितायां पंच क्षेप चक्रीय विंशति प्रतिविंशति अंतरराष्ट्रीय क्रीडायां आदित्य जापान देशः द्वाभ्यां धावनांकाभ्यां पराजितः। एशियाई क्रीडासु भारतीय पुरुष बैडमिंटन दलेन अद्य जापान देशम आयोजिते उपांत्य पूर्व चक्रे आयोजक जापान देशम पराभूय भारताय पदकम प्रासाधि। इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. स्टूडियो में आज हमारे साथ श्रोताओं चर्चा करने के लिए विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: थैंक यू. वेलकम सुषमा.
2: थैंक यू.
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,350. आरबीआई अब्सॉर्ब्स नियरली 72,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम थ्रू ओवरनाइट variable rate reverse repo auction, estimates surplus liquidity in banking system to be over 4.9 lakh crore rupees, and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक फिसला, निफ्टी 23,350 के नीचे बंद हुआ. रिजर्व बैंक ने ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम से 72,000 करोड़ रुपए अंतर्लीन किए. बैंकिंग प्रणाली अतिरिक्त नकदी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है. और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घटे.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया. तो श्रोताओं, प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 330 अंक गिरकर 74,529 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 85 अंक लुढ़ककर 23,329 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.1% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.2% नीचे आया. इससे पहले बाजार सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण मामूली बढ़त के साथ खुले थे. हालांकि कारोबार के पहले ही घंटे में उन्होंने अपनी बढ़त गवा दी और बाद में दोनों सूचकांक फिसलकर कारोबार करने लगे. बाजार ने दिन के निचले स्तर से उबरने की कोशिश की, लेकिन अंततः वे गिरावट के साथ बंद हुए.
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. The Nifty dropped 85 points to settle at 23,329. In the broader market of the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 Index dipped 0.1%, while the Nifty Small-Cap 100 Index declined 0.2%. Earlier, the markets opened with moderate gains supported by positive global cues. However, they surrendered their initial gains within the first hour of trading, with both indices subsequently moving lower. Although the markets tried to recover from the day's lows, but they ultimately ended in bearish territory.

0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक घाटे में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में बजाज फिनसर्व 1.5% से अधिक, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस में 1.5% तथा सनफार्मा में 1.3% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इटर्नल लगभग 2%, इंडिगो 1.5% से अधिक और टाइटन के शेयरों में 0.7% की वृद्धि हुई।
1: In sectoral indices on the BSE, 23 out of 28 sectors edged downward. Among the top losers, housing finance as well as focused IT lost 1%. Capital goods dropped 0.9% and IT fell 0.8%. In contrast, telecommunications climbed 1%, realty increased 0.8%, services rose 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2,087 advanced and 215 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 22 पैसे मजबूत होकर 95.59 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा, हमने देखा कि बाजार ने जो आज अपने कारोबार की शुरुआत की, सत्र की जो शुरुआत की, वो हरी झंडे के साथ की, लेकिन जब खत्म हुआ तो लाल झंडी थी। इस दरमियान क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसे क्रमबद्ध तरीकों से जो क्यूज जिसे हम कहते हैं वो नजर आए इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, जिसने इस तरीके की ट्रैजेक्टरी बनाने में मदद की?
2: देखिए, ये चार दिन के बाद ये बेरिश ट्रेंड फिर से आ गया और एक चीज तो जरूर है, इसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, ये भी है। और दूसरा ये है कि कुछ जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि जुलाई और अगस्त में उन्होंने पैसा डाल दिया था इंडियन मार्केट में, सितंबर में खासकर वो बाहर निकाल रहे हैं। और एक वजह ये है कि एक तो उनको वैल्यूएशंस थोड़ी हाई लग रही हैं और दूसरा वो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं यूएस में और रेट्स उनको वहाँ, वैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ वहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पर जो ये जो माहौल आज का है वो इसी वजह से है। हालांकि क्रूड प्राइसेस नीचे आ रही हैं धीरे धीरे, फिर भी हमारे हमारे नज़रिए में तो काफ़ी हाई है, $98 है, बिलो $100 आ गई है।
0: क्षेत्रीय स्तर पे हमने बिकवाली देखी आईटी सेक्टर में।
2: हाँ, आईटी सेक्टर में अभी भी ये अगर आप देखें तो ये अभी भी ये एआई का जो असर है, ये जो डर लगा हुआ है कि हमारी आईटी कंपनीज बाहर के जो बड़े बड़े एआई जायंट्स के साथ कम्पीट ना कर पाए, वो जरूर ये आईटी क्षेत्र के ऊपर हावी है और ये कई दिनों से है, ये आज की बात नहीं है।
1: IIs and DIIs today show any clear flow pattern, you know, that amplified the late session weakness?
2: Well, I think it's basically you are seeing this clear thing even when the market was going up, that FIIs were pulling out and DIIs were, you know, still investing
0: pushing
2: in the market. And this, of course, is sometimes, you know, analysts are analyzing this and puzzling over that. The fact is that FIIs have far more, you know, they can pick and choose in markets abroad. They feel valuations are somewhat higher here, and of course you are getting better rates, yields, bond yields have gone up. As far as Indian investors are concerned, they are looking at the long term, and you know, if you know, these SIPs are going up, mutual funds, the numbers are going up day by day, and they are putting their faith in the long term growth story of this country. So I think there's a very different perspective of domestic retail investors as well as the foreign institutional investors, completely different outlook.
1: So how much was today's move F&O expiry driven versus fundamental risk off?
2: I would say it's largely expiry driven today because the you know, on the geopolitical front, you could see that, you know, the trends abroad have been better because there have been reports that probably the Strait of Hormuz may open in 7 days. Now we don't know, but these reports have come in, and therefore there was a sort of a feeling of cheer. Pro crude oil prices have come down below the psychological $100 mark, but this despite this having happened, we do. So I think it is largely the expiry issue which has caused today's

0: fall in the market.
1: सुषमा, निवेश की क्या नीति होनी चाहिए इस संदर्भ में, जब हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, जो वैश्विक परिदृश्य इतना अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो एक आम निवेशक क्या नीति बनाए अभी अगर वो बाजार में आना चाहता है तो?
0: देखिए, जो आम निवेशक है उसको तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस हाल में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उनकी वजह से मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो मार्केट गिर जाता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे जो जा रही हैं उनका असर है, क्योंकि इंडिया एक देश है जिसमें हम ज़्यादातर अपने जो तेल की ज़रूरतें हम बाहर से लेते हैं, तो हमारा जो ऑयल इम्पोर्ट बिल है वो अप्रैल के बाद जब से ये वॉर शुरू हुई है तो उसका भी बिल बहुत बढ़ गया है। तो ये जो निवेशक है उसको इस चीज़ से आगे देखना पड़ेगा, इसको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप शॉर्ट टर्म जो वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर आप अपने जो बाइंग एंड सेलिंग की जो का निर्भर इसके ऊपर शॉर्ट टर्म पे ना करें।
2: If we were to look at the sectoral watch, how vulnerable are the rate-sensitive sectors like the realty, autos, and NBFCs if bond yields stay elevated?
0: They are, of course, going to be affected. But if you see, sectors, for instance, like you mentioned, realty is doing well, has rebounded. Auto is doing very well, and I don't think it's going to have much of an impact on auto, because auto is driven largely by domestic consumption, although all exports have gone up a great deal. So I think these are two areas which are not likely to be affected as much by the global bond scenario.
2: So is banking and the energy, these two sectors, now the key anchors for stability?
0: Yes.
2: Or do they carry event risk with global rates and crude, whatever is happening?
0: Banking, of course, I would say certainly is an anchor, but energy, has to face volatility. But at the same time, if you see the domestic oil producing companies, ONGC and Oil India, and even the oil marketing companies, they get the benefit of refining margins with high rates. So it's not that they are making losses throughout, because our pump prices are rather low and they are suffering. OMCs, oil marketing companies, are suffering under recoveries. At the same time, they are making money on what is known as the refining margins.
1: जो एक उभरता बाजार है, जैसा कि एक हमारा हम अगर अपने देश की ही बात करें, ऐसे परिदृश्य में हम कहाँ खड़े पाते हैं अपने आप को, कि जहाँ पर हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल तनाव इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है, और सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, मार्केट्स अपने आप में एक फैक्टर है ये देखने का कि ये सूचकांक है अपने आप में ये देखने का कि किस तरफ हमारी ग्रोथ स्टोरी जा रही है। ऐसे में हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं आपकी राय में?
0: आप मार्केट्स की बात कर रहे हैं
1: जी?
0: हाँ, तो देखिए, मार्केट्स जरूरी नहीं दिखाती है कि हमारी जो इकोनॉमी है कहाँ जा रही है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर निर्भर है, और वो जैसे आपने खुद ही कहा सेंटिमेंट ड्रिवन होती है। तो अभी हाल ही में हमारा जो पहला क्वार्टर इस साल का 2026-2027 में 7.8% ग्रोथ हुआ है, और ये भी उस वक्त जबकि ये यूएस ईरान का वॉर शुरू हुआ और हमें लगा कि शायद इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, और आगे वाले दिनों में हमारी बहुत चुनौतियां हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्रप्शंस हैं। अभी तेल की जो बात अभी हमने की है, तेल का जो के दाम बढ़ रहे हैं, हालांकि $100 से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी 90 और 100 के बीच में है, दैट इज अ वेरी वेरी हाई नंबर। तो हम इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से और इन्वेस्टमेंट पिकअप की वजह से हम इन चीज़ों, ये जो एक्सटर्नल हेडविंड्स हैं उनको इस काफ़ी जो देश हैं उनसे बेहतर इनको फेस कर सकते हैं।
2: सुषमा, इफ टॉक्स एट द यूएन डू नॉट लीड टू डीएस्केलेशन, व्हाट इज योर बेस केस ऑयल प्राइस पाथ ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर?
0: That's a very difficult question, because yes, if the UN talks do not lead to de-escalation, then certainly oil prices will go up. But we should hope that something will happen, because it is in the best interests of all concerned

0: needs to focus on it.
1: Okay. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that global economy is passing through an unpredictable period, while the architecture of global trade and supply chain is undergoing a parallel shift. Addressing the 53rd National Management Convention of All India Management Association, Ms. Sitharaman highlighted that global economic growth is slowing to below 3%, while the Indian economy continues to expand at close to 8%.
2: The post-Cold War assumptions of open multilateralism and dependable logistics and even the logistic corridors have all broken down. We face a parallel shift in the architecture of the global trade and supply chains. In such an environment, resilience cannot mean retreating into economic isolationism. For India, resilience means deep domestic capacity, fiscal strength, and industrial scale so that global shocks are absorbed without interrupting national development.
1: The government today clarified that GST on UPI merchant discount rate, or MDR, will not burden small merchants or make digital payments expensive. In a social media post, National Payments Corporation of India, NPCI, has termed such media reports as incorrect. It said MDR applies only to person-to-merchant transactions above 2,000 rupees. It said the person-to-merchant transactions up to 2,000 rupees continue to have zero MDR and therefore zero GST impact. The GST paid on MDR by a merchant will be adjusted against the GST payable on the sale of goods in the same manner that input taxes are set off against output tax liability. NPCI said merchants with monthly UPI receipts of up to 1 lakh rupees are not liable to pay MDR. On merchant discount rate MDR transaction charges for UPI, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that it will not be passed on to the consumers.
2: यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर 2000 के कम वाले में नहीं लगता, वो टैक्स नहीं है, वो सेस नहीं है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो पैसा जमा नहीं होगा. ये सर्विस प्रोवाइडर्स का उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक चार्ज है, छोटे ट्रांजैक्शन के लिए नहीं. फिर भी ये भी बिटवीन द ऑपरेटर्स चार्ज, कंज्यूमर के ऊपर वो नहीं लगेगा. 2000 के ऊपर जो टैक्स नहीं है वो चार्ज लग रहे हैं, कस्टमर के ऊपर नहीं लगने वाले. पार्लियामेंट सेशन में भी इसका स्पष्टीकरण उसी समय मैंने दिया.
1: Global crude oil prices declined today following reports that Saudi Arabia had resumed operations of its east-west pipeline. Brent crude was trading 2% down at $98.34 per barrel in intraday trade at the time of writing this report. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% lower at $93.30 per barrel in intraday trade.
3: Sushma, तेल, कच्चे तेल के दाम इस बीच हमने आज देखा कि गिरे हैं, लेकिन थोड़े से गिरे हैं, लेकिन ओवरऑल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि उसके भाव पर आपकी क्या राय है.
4: अभी देखिए, जब तक ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है यूएस और ईरान के बीच में, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, जब तक दूसरा स्ट्रेट जो है बाब अल मंडाब में अटैक्स हो रहे हैं वो यमन के हूती ग्रुप से, तब तक ये दाम तो बढ़ते ही जाएंगे. और ये जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता यूएस और ईरान और इसराइल के बीच में, तब तक मेरे ख्याल हमें यही ऊंचे ऊंचे स्तर पर तेल के दाम देखने को मिलेंगे.
1: Hopefully something should happen at the UN.
4: We should hope so because it's not just, of course, in India's case we know that we require a lot of crude and therefore it's very expensive, but it is in everybody's interests. Even the US is feeling the pinch of higher gasoline prices at the pump. Iran is feeling the pinch because they're not able to get their crude out in the market and they are facing economic problem of resources. So therefore everybody wants this war to end. Let's hope something happens.
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए. मगर उससे पहले, भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.8% की गिरावट के साथ 1,52,136 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.9% लुढ़ककर 2,32,922 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. सुषमा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.

0: फिरते हैं आर्थिक सुर्खियों की तरफ।
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,350। आरबीआई अब्सॉर्ब्स नियरली 72,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम थ्रू ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथरा। टिल टुमारो, गुड बाय।
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: का ले लीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। फिल्म जगत को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक शक्ति और विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती हैं। समारोह में दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल की 2898 एडी को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और आर्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकाडी को संयुक्त रूप से दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
2: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगले चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी

0: for enhancing interoperability and strengthening the strategic partnership between the two air forces. The Indian women's cricket team reasserted its continental dominance by clinching a second successive gold medal at the Asian Games, thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nissin in Japan today. This is India's first gold medal at the ongoing Asiad and overall seventh medal. Prime Minister Narendra Modi have congratulated the women's cricket team on the feat. India's men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals and assured itself of a medal at the Asian Games. Indian boxer Jadumani Singh marched into the pre-quarters in the men's 55kg preliminary round. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में प्रस्तुत है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के रूप में यानी पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत कई ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का बहुत फायदा हुआ और खास तौर पे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में इसे एक व्यापक जन अभियान का रूप मिला है। 2014 के बाद से खास करके वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बारे में आज हम अपनी विशेष सीरीज जन सेवा से देश सेवा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश कुमार अरोड़ा, जो पूर्व जीएम हैं, यानी वो फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरोड़ा साहब।
3: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
2: और हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
2: तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि पिछले 25 वर्षों में जन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में और फिर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो, वित्तीय हो, ऐसी परियोजनाओं से योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
3: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है, इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन का पास एक बैंक का अकाउंट हो जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खातों की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी। और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें जीरो बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का, जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रुपए का एलिजिबल अकाउंट्स में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई, जनधन खातों में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट रहता है, सही अकाउंट चलता है, तो उसमें वो भी फैसिलिटी है और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खुलने से।
2: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
4: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए, वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है, क्योंकि अगर

0: आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसमें 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास, जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके, तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है, और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जन सुरक्षा की तरफ हम है। हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया
1: और
0: उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो या फिर अटल पेंशन योजना हो, ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है।
1: बिल्कुल अरोड़ा साहब, जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलैटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलैटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है, सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदें या खेतों से जाकर खरीदें और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं, उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शिशिर आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के स्तंभों में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरोड़ा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर मैं आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं। और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं।
2: जैसे आपने जैम की बात कही, जैम का है जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है। और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उतने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू के काम होता है।
1: बिल्कुल शशिर, यही सवाल आपसे भी है, लेकिन आपसे मैं ये भी खासतौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है, क्योंकि आम तौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी, चाहे कहीं से मिले, सरकार के इससे मिले, कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया, तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता, अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
0: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी में, उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है
1: जी?
0: भाई हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए, यानी कि जनधन आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और वो महिलाएं भी कौन जो ग्रामीण इलाके में हैं। तो अब देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेनदेन करते हैं, वो सशक्त हैं, क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है, और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेनदेन का माध्यम नहीं है, बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है, ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपे कार्ड मिल रहा है, जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे, उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है, क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा, तो यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था, और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है, जिस पे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्क संगत फैसले लेती हैं, वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में, और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। आइए सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जनधन खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी

0: उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक DBT के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,19 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है। इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और PM स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा।
2: उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। अब बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है?
2: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए पेंशन योजना की उपयोगिता क्या है? अब देखिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सहूलियत ये रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है। यहाँ तक कि जब पहली जनवरी 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में है, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में है। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये संख्या, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है और उनके लिए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धशहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3,000 रुपए मिलेंगे। अब फिर वही बात आती है कि क्या 3,000 रुपए पर्याप्त है? हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए और ज्यादा रकम मिले आप जितना योगदान करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है, और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि

0: हरना पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है, या फिर अगर हम खाते की बात करें वो पहले भी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बदलते समय के हिसाब से क्या कुछ बदलाव करते हैं। तो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, वयोवृद्ध बीमा योजना की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के नवीकरण की बात करें, ये तीन ऐसे मामले हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए।
1: बिल्कुल, और अरोड़ा साहब हम वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अपने जीवन के 25 साल जो जन सेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गांव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई या आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
2: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो वो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस जो है, जो डेजिग्नेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5 लाख रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, खासतौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए, जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो 5 लाख तक का उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है। और 70 लाख साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की, जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है, उसमें 1000 से 5000 तक की ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की, तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी, मान लीजिए 5000 की हुई है, 5000 की उनको 10000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2 लाख रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2 लाख तक का, या डिसेबिलिटी, फुल डिसेबिलिटी तो 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपीज सालाना केवल, और 31 मई को कटता है, 1 जून से पॉलिसी शुरू हो जाती है 31 मई के लिए। तो 20 रुपीज के ऊपर 2 लाख रुपए तक का, 20 रुपीज होता ही कितना है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपया। और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए, 436 रुपए सालाना, ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कि खासतौर से हमारी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, तबके लोग हैं जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है, उनके लिए पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है, साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी, और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस, वो भी आपको जाना है दिखाना है, इलाज कराना है और सीधा आप साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं। कोई पैसा, कोई पेमेंट, कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है, खासतौर से 2014 के

0: बिल्कुल शिशिर, जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर, और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ, इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पे स्टडी करते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग के लोगों को खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है, उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है।
1: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच, टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं, उस सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं। और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे, आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया, चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या, झाड़ू लगाना है क्या। लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर, जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई, घर में शौचालय की बात की गई या फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप था। उसके बाद भी भाई देखिए बीमारी कोई बता के तो आती नहीं और बीमारी कभी किसी को आ जाती है, तो आपके पास आप एक सुविधा दे दी कि आप आरोग्य मंदिर में जाकर के आप अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए, आपको जो जरूरत है उस हिसाब से इलाज करवा लीजिए। फिर भी अगर आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रधानमंत्री जो जय है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है, जो हमारे निम्न आय वर्ग है, क्योंकि देखिए मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, निम्न आय वर्ग के पास विकल्प नहीं के बराबर है,
2: लिमिटेड।
1: अब ऐसी सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि पहले स्वच्छता अभियान में आप आओ, फिर शौचालय की बात आप करो, फिर आप आरोग्य मंदिर जाओ, फिर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो, यानी कि आपके पास कई सुविधाएं दी गई जिससे कि आप बीमारी से बचें, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि बॉटम अप अप्रोच है, कि जमीनी स्तर पर आपने उन परेशानियों को समझा, उसके हिसाब से आपने क्रमबद्ध तरीके से आपने योजनाएं बनाई और फिर जाकर के समाज के उन हिस्सों को जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए आपने काम किया।
0: अरोड़ा साहब, पीएम स्वनिधि की हम बात करेंगे। पीएम स्वनिधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर दृष्टि सोच को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, आज हम इसे हकीकत में देख पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने इस स्थिति में किन बदलावों का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं?
3: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेट्रल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब हैं, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिशन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें बैंकों द्वारा पहले ट्रांजिट में यानी पहले भाग में उनको 15,000 रुपए, पहले 10,000 रुपए था, अब उसको 15,000 कर दिया गया, 15,000 तक का लोन दे दिया जाता है। और सेकंड जो भाग में अगर वो 15 अपने रिपेमेंट सही हुई तो उसको 25,000 रुपए तक का लिया जाता है, अगर ये फिर ठीक अपने रिपेमेंट की गई तो उसके बाद उसको 50,000 रुपए का लोन दे दिया जाता है। यानी कि 50,000 तक का लोन रेहड़ी पटरी वालों को, वेजिटेबल को, वेंडर्स को, कोबलर्स को, इनके लिए ये सुविधा है। साथ में इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है और जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी जाती है। कोई इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलेक्टर नहीं मांगेंगे, कोई सिविल नहीं है, तो यानी कि बहुत इजी है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड की गई है, 2020 से लागू की गई थी, अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है जो एक कभी ये बैंक की तरफ आई नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था, आज वो उनको सस्ते

0: दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा और तभी ये पहली भाग सेकंड भाग थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 तक का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी कितना बड़ा बदलाव होगा, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे उसके बाद फिर 30,000 तक ले लें। यानी एक तरह से एक सुविधा होगी, 30,000 तक का वो कभी भी उसको अपना यूज।
1: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है, क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है, या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
2: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पे जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, क्योंकि अचानक आपके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपके बैंक के खाते में गड़बड़ी हुई है या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
1: जी जी,
2: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, और जब आप लॉगिन भी करते हैं या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप इंटर भी कर रहे होते हैं तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
1: जी,
2: क्या नहीं करना है, अपने ओटीपी शेयर नहीं करना है। हम देखिए आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और उस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, पीएम स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें, या ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
1: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
0: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है, कोई आपको लिंक नहीं खोलना, अननोन लिंक, कोई ओटीपी नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को, और अगर मोबाइल चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112, या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका, उसके ऊपर लॉगिन कर
2: और जल्द से जल्द करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जनसेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है, जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब, आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद,
4: धन्यवाद,
3: नमस्कार।
5: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094।

0: ने चार चार नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। कहा, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में किया शुभारंभ। औषधि नियंत्रण विभाग ने नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा, सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व गैंडा दिवस पर गैंडों के संरक्षण का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क, नालियों और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित थे।
1: नजफगढ़ की 7 अनधिकृत कॉलोनियों में करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से 10 अन्य विकास कार्य पहले से प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 58 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से नजफगढ़ की कॉलोनियों में सड़कें बेहतर होंगी, जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी और बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ हजारों परिवारों का जीवन और सुगम होगा।
2: दिल्ली की रीडेवलपमेंट होने से लोगों का जीवन जो है सुविधाजनक होगा। आने वाले समय में ये रजिस्ट्री की फीस भी अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं लगेगी। एक एक व्यक्ति को अपने मकान का स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा।
1: वहीं मीडिया से बातचीत में परवेश साहिब सिंह ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 843 करोड़ रुपए की लागत से कुछ विकास कार्य पूरा कर लिया गया है, वहीं कुछ कार्य अलग अलग चरणों में जारी है।
3: आज 843 करोड़ रुपए के काम या तो हो रहे हैं या भी होने वाले हैं। हर जगह पर अच्छी सड़क, अच्छी ड्रेन, नालियां, गलियां, ये सारी सुविधाएं अभी होने वाली हैं।
1: उन्होंने क्षेत्र में शुरू हुए विकास परियोजनाओं को लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए रजनीश शुक्ला।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नई दिल्ली क्षेत्र के पुनर्विकास और दिल्ली की जल व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। इसी संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर चुनिंदा क्षेत्रों की पुनर्विकास योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के साथ साथ नई दिल्ली की विशिष्ट विरासत और पहचान को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सज्जन सिंह यादव ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान जल आपूर्ति, नालों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन, नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य, सेफ्टीज सफाई मशीनों की तैनाती और यमुना के पुनर्जीवन सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि आवश्यक सुविधाएं उनके क्षेत्र तक पहुंचे। इस अवसर पर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे श्रमिकों को पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी दिहाड़ी का भी नुकसान नहीं होगा।
4: हमारे मजदूर भाई बहन जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क

0: वर्कर हैं उनके रजिस्ट्रेशन की एक सुविधा देंगे। इसीलिए हमारे मंत्रालय ने इस काम को जनता की सुविधा के अनुसार पूरा प्लान किया और आज जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या लेबर चौक पे पाए जाते हैं, ये सारी वैन हर डिस्ट्रिक्ट में एक वैन हम देंगे। ऐसी 13 वैन चलेंगी और वो उन जगहों पे जाएंगी जहां पे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर अपना काम करते हैं।
1: वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि इन मोबाइल वैन्स के माध्यम से श्रमिकों को उपलब्ध योजनाओं और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी।
2: ये वैन उनके कार्यस्थलों पर जाएंगी और वहीं पर इनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी किया जाएगा। किसी भी हमारी श्रमिक बहन भाई से संबंधित योजना उनके लिए अप्लाई करने का काम भी इन्हीं वैन के माध्यम से हो जाएगा और उनकी जानकारी देने का काम भी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। नीदरलैंड्स और जर्मनी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में भागीदार देशों के रूप में शामिल हैं। ये आयोजन भारत और विदेश के शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और युवाओं के साथ साथ वैश्विक जल पक्षकारों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सतत जल प्रबंधन में वैश्विक विशेषज्ञता के आदान प्रदान को सक्षम बनाना है। उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन और सभ्यताओं का आधार है। उपराष्ट्रपति ने इसके विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
4: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
1: इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल संरक्षण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: आकाशवाणी समाचार से एक विशेष बातचीत में भारत में नीदरलैंड्स की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स ने कहा कि जल सहयोग भारत नीदरलैंड्स रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
6: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 96 घंटे में 17 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने इन मामलों में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इनमें

0: 8 मामले वाणिज्यिक मात्रा और 9 मामले मध्यम मात्रा से जुड़े हैं। पुलिस ने लगभग 45 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। एक अन्य मामले में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के आवासीय परिसर से 10 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। औषधि नियंत्रण विभाग ने भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए कीमत की नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नकली दवाओं के माध्यम से लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेबीज एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा बीमारी है, इसलिए रेबीज वैक्सीन की गुणवत्ता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विभाग के अनुसार जांच में सामने आया है कि जब्त वैक्सीन का संबंध कानपुर की एक एजेंसी से है। 120 नमूने जांच के लिए कस्टडी में लिए गए हैं, वहीं बाकी 361 यूनिट और खरीद संबंधी चालान जब्त किए गए हैं। मामले में वैक्सीन की आपूर्ति और पूरे गिरोह की जांच जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने राजधानी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के दौरान लोगों को मिल रहे नोटिस से संबंधित मामलों का जवाब दिया है। श्री सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मतदाता सूची या दस्तावेजों में किसी तरह की कमी या जानकारी के अभाव की स्थिति में निर्वाचन आयोग संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है और उससे आवश्यक जानकारी मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने का मतलब मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाना नहीं है, बल्कि संबंधित मतदाता को अपने दस्तावेजों या विवरण से जुड़ी कमी को स्पष्ट करने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने वाले मतदाता 30 सितंबर तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO के समक्ष अपना जवाब दे सकते हैं।
1: कोई भी नागरिक को, कोई भी वोटर को अगर ये लगता है कि उसका नाम SIR प्रक्रिया से छूट रहा है, तो उसको पूरा चांस भी दिया जाता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को पूरा करके नोटिस का जवाब भी दे। 29 अक्टूबर तक ये पूरा स्क्रूटनी चलेगा, 4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उसके बाद भी अगर किसी का नाम नहीं आता है तो भी वो अपना नाम, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत समेत दुनिया भर में आज विश्व गैंडा दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गैंडों की 5 शेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष का विषय है 5 शेष गैंडों की प्रजातियों को संरक्षित रखें। इसके अंतर्गत गैंडों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, शिकार रोकने और गैंडों के सींगों के अवैध व्यापार पर नकेल कसने का आह्वान किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व गैंडा दिवस पर गैंडों के संरक्षण का आह्वान किया है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि राजधानी में आज से नमो सेवा की अनकही कहानियां अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग तथा साहित्य कला परिषद की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली में लगभग 1250 स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय फिल्में न केवल दर्शकों का मनोरंजन करती हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती भी हैं। गुजरात के एकतानगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में सहायक होती हैं।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगरेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल्कि को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रोपाश्री वरकाड़ी को संयुक्त रूप से मिला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यूरोपीय संसद के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। यूरोपीय संसद की उद्योग, अनुसंधान और ऊर्जा समिति के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में डॉ. सिंह से मुलाकात की। बैठक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व गैंडा दिवस पर भारत के एक सींग वाले गैंडे का उल्लेख करते हुए इनके संरक्षण में जुटे सभी लोगों की सराहना की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के करीब 80% गैंडे की आबादी अब असम में है। उन्होंने काजीरंगा में गैंडे के शिकार पर रोक लगाने के प्रयासों की सराहना की। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: That is the end of this news bulletin.
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं जनाब कि इस प्रोग्राम में हम किसी ना किसी राग के बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो आज जिस राग का जिक्र होगा इस प्रोग्राम में वो राग है राग पूर्वी। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये पहला गीत।

जी हाँ, राग पूर्वी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक गंभीर और संध्याकालीन संधि प्रकाश राग है, जो पूर्वी थाट से उत्पन्न माना जाता है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है और इसका थाट जो है वो पूर्वी है। इसका वादी स्वर गा और संवादी स्वर नी है।

0: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई,
0: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
9: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
8: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
9: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
8: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
9: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है मधुरिमा का। लेकिन मधुरिमा में अब बहुत वक्त नहीं है हमारे पास। जी हाँ, धीरे धीरे ये प्रोग्राम समेटने की बारी आ चुकी है। तो हम बात कर रहे थे राग पूर्वी की। राग पूर्वी की अगर हम आर्फ की बात करें तो सारे गम प ध नी सा और अवरु सा नी ध प म ग म ग रे सा और पकड़ सारे ग म ग म ग प ध प नि ध प म ग रे सा है। और इसके जो गाने का समय है वो शाम 4 बजे से 7 बजे तक का है और ये गंभीर प्रकृति का शांत और करुणामयी राग है। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित इस प्रोग्राम का ये अंतिम गीत। फिलहाल मैं विमलेश आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।
11: तेरे प्यार का

0: हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल और वो भी कुछ अधिक विस्तार के साथ।
1: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का ये अंक। सबसे पहले हेडलाइंस। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता
0: और रोशबीना देवी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियन गेम्स में लगातार तीसरा वुशु मेडल सुनिश्चित।
1: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, भारत के लिए पदक पक्का।
0: और मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी और जादूमणि सिंह का शानदार आगाज, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: और महिला टेबल टेनिस टीम ने थाईलैंड को हराया, क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ कोरिया से होगा मुकाबला।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है देश को। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 147 रन से हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: Now she comes down the track but misses a straight ball. That'll seal the deal. India clinch gold in the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, and make it 2-2. The defending champions, if you may. They said, no, we're attacking champions once again. A margin of 147 runs. India win by 147 runs to clinch gold here in the grand finale.
2: फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 216 रन बनाए। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 99 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 29 गेंद पर 48 रन बनाए। शेफाली के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दूसरे विकेट के लिए स्मृति के साथ 42 रन की साझेदारी की। कप्तान ने 19 रन बनाए। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने स्मृति के साथ पारी को आगे बढ़ाया। स्मृति ने 45 गेंद पर 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के की मदद से 79 रन की पारी खेली। ऋचा ने भी 3 छक्के और 6 चौके की मदद से नाबाद 49 रन की धमाकेदार पारी खेली। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 216 रन बनाए। 217 रन के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 69 रन पर सिमट गई। कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सर्वाधिक 29 रन की पारी खेली। काविशा दिलहारी ने 11 और कौसिनी ने 14 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी श्रीलंकाई खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा छू भी नहीं सकी। दीप्ति शर्मा ने 1.5 की इकोनॉमी रेट से 1 मेडन ओवर के साथ महज 6 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्रीचरणी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कास्ट।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि स्मृति मंधाना ने बेहतरीन प्रदर्शन का कर दिखाया है। फाइनल में उन्होंने 45 गेंद पर 79 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
3: वाह, क्या बात है। प्रशांत, एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस वर्ष पहला स्वर्ण पदक जीता है और इस मुकाबले के दौरान क्या कुछ कीर्तिमान भी भारत ने बनाए?
0: बिल्कुल विनीता, टीम ने इस जीत के साथ ही इतिहास रच दिया। ये रनों के लिहाज से टीम इंडिया की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
3: क्या?
0: इससे पहले भारत ने मलेशिया को एशिया कप 2018 में 142 रनों से हराया था। और विनीता, श्रोताओं को यह भी बताना चाहेंगे कि फाइनल में मिली हार के बावजूद श्रीलंका ने सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि फाइनलिस्ट थे वो भी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए वो फाइनल में थी, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल भी मिला है। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 31 रन से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
3: क्या बात है। प्रशांत, आज पुरुषों का भी मुकाबला खेला गया, तो कैसा रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन?
0: विनीता, अगर पुरुषों की बात की जाए तो ये फ्रेंडली मुकाबला था। पुरुष को भी एशियन गेम्स खेलना है, 28 अक्टूबर से मुकाबला होना है, सितंबर से। तो लेकिन 5 ओवर का गेम हो सका विनीता, 20 ओवर का गेम होना था, लेकिन बारिश के कारण 5-5 ओवर ही खेल हो सका। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 4 विकेट पर 32 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 16 रन बनाए। 33 रन के लक्ष्य के जवाब में जापान की टीम 30 रन ही बना सकी और 2 रन से रोमांचक मुकाबला हार गई। विनीता, मैं आपको यह भी बताऊं कि भारतीय पुरुष टीम 28 तारीख को पहला मुकाबला खेलेगी और महिला टीम की तरह ही भारतीय प्रशंसकों को पुरुष टीम से भी स्वर्ण पदक की उम्मीदें होंगी, क्योंकि जिस तरह से श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं और जो टीम कॉम्बिनेशन भी है भारत का, अगर हम ओपनिंग की बात करें तो संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है, यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भी टीम में है, जसप्रीत बुमराह जैसे बल्लेबाज, शिवम दुबे है, तो उम्मीद की जाए कि भारतीय टीम जो है वो पदक का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा।
3: बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमें स्वर्ण पदक बस मिल ही जाए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी प्रसन्नता व्यक्त करती हुए एक कुछ हमारे लिए भेजा है। ये सराहना जो खिलाड़ियों के लिए की है उन्होंने, तो हम इसको सुने।
1: I am so happy that cricket is won gold and I was there in the coordination committee of organized in the Japan Asian Games coordination committee. So I only have requested them to add the cricket this time men and women. So they accepted and so I just want to see the players are winning gold medals. So I'm so happy that we have won the gold.
2: और अब चलते हैं एशियन गेम्स के वुशु गेम्स की ओर। भारत की रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैन सिन को 5-0 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही रोशिबीना ने एशियन गेम्स में अपना तीसरा मेडल सुनिश्चित कर लिया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: 18 और 2022 एशियन गेम्स की मेडलिस्ट रोशिबीना ने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा कॉन्टिनेंटल मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने पॉइंट्स के अंतर से मैच 5-0 से अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। रोशिबीना ने इससे पहले सोमवार को प्री क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। मौजूदा एशियन गेम्स में वुशु में भारत का ये पहला पक्का मेडल है। रोशिबीना एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं, जब वो सांडा 60 किलोग्राम कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रही थी। उन्होंने 2018 जकार्ता खेलों में भी इसी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा भारत के आर्यन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जो अब मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। आर्यन ने पुरुषों के 56 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान के साफी शहजादा को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। आइए एक रिपोर्ट सुनते हैं। जागरण।
4: He's done it. Ayush Shetty has done what Lakshya Sen did, what Sai Ranki Reddy and Chirag Shetty did. He's taken India to Asian Games 2026 semi-final. That's his first outing in Asian Games, and boy, he's delighted with the coaches. Pulela Gopichand is ecstatic inside for sure, and so is Ivansya, the Indonesian coach.
5: भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में मिली जीत के साथ ही प्रतियोगिता में अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। लक्ष्य सेन ने शुरुआती सिंगल्स मैच में कोडाई नारोका की कड़ी चुनौती का सामना किया। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी ने जीत दर्ज करते हुए भारत को सेमीफाइनल के करीब पहुंचा दिया। वहीं अंत में आयुष शेट्टी ने कोकी वातानाबे को सीधे गेम में हराकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। पहला गेम 11-21 से हारने के बाद लक्ष्य को काफी संघर्ष करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की और दूसरा गेम 21-5 से जीत कर मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचाया। तीसरे गेम में नारोका ने फिर से बढ़त बनाई और 5 अंकों की बढ़त ले ली, लेकिन लक्ष्य ने शानदार वापसी की। उन्होंने स्कोर 19-19 से बराबर किया और फिर अगले 2 अंक जीतकर 11-21, 21-5, 21-19 से जीत हासिल की। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने जापान की ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को पहले गेम में 21-18 से हराया। दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा। जापान ने 3 मैच पॉइंट बचाए और स्कोर 20-20 कर दिया। सात्विक और चिराग ने संयम बनाए रखा और आखिरकार 24-22 से जीत दर्ज कर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। वहीं अंतिम मुकाबले में आयुष शेट्टी ने वातानाबे को पहले गेम में 21-10 से हराया। आयुष ने दूसरे गेम में भी निरंतरता बनाए रखते हुए मुकाबले को जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: बैडमिंटन में भी अगर हम बात करें श्रोताओं, तो लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। आयुष शेट्टी की बात कर ले, सिंगल्स कई सिंगल्स खिताब जीते उन्होंने, लक्ष्य सेन ने कई खिताब जीते हैं, और जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व स्तर पर 5वीं वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट कोई भी हो, भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों को उनसे पदक की उम्मीदें होती हैं। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। भारतीय टीम को जापान से आज 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।
6: क्या बात है।
0: अब बैडमिंटन की बातें हो गई तो बातें मुक्केबाजी की हो जाए। एशियन गेम्स मुक्केबाजी में कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता साक्षी चौधरी ने आज शुरुआती राउंड में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता आयरा विलेगास को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती चरण में नेपाल

0: के चंद्र बहादुर थापा को शिकस्त दी है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट नेहा से।
1: साक्षी ने निशियो जिम्नेशियम में अपने एशियन गेम्स में डेब्यू में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए फिलिपिनो बॉक्सर को 5-0 से हराया। उन्होंने 10-9 के स्कोर के साथ तीनों राउंड जीते। साक्षी के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। बृहस्पतिवार को उनका मुकाबला मौजूदा 51 किलोग्राम वर्ल्ड चैंपियन अलुआ बल्किबेकोवा से होगा। वहीं भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती चरण में नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को शिकस्त दी। इसी के साथ जादूमणि ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सिल्वर मेडलिस्ट ने यह बाउट निशियो जिम्नेशियम में जीती। जादूमणि ने शानदार मुकाबला करते हुए थापा पर 5-0 से जीत हासिल की। जादूमणि ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के खिलाफ धीमी शुरुआत की, लेकिन मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और तीनों राउंड में सटीक पंच से जजों को प्रभावित किया। शुरुआती दो राउंड जीतने के बाद जादूमणि ने अपना दबदबा बनाए रखा और तीसरे राउंड में एक लेफ्ट हुक लगाया, जिससे थापा को स्टैंडिंग काउंट का सामना करना पड़ा। भारतीय बॉक्सर ने तीसरा राउंड भी जीता और मुकाबले को अपने नाम कर लिया। जादूमणि अब शनिवार को प्री क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के बॉक्सर कार्लो पालाम से भिड़ेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
2: साक्षी चौधरी हो, जादूमणि सिंह हो, इन्होंने कॉमनवेल्थ में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और भारत को कई पदक दिलाए थे और एशियन गेम्स में भारत को इन मुक्केबाजों से पदक की उम्मीदें होंगी। और अब चलते हैं टेबल टेनिस की ओर। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो भारत की महिला टीम ने आज थाईलैंड को हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने 2-1 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए थाईलैंड को 3-2 से हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना नॉर्थ कोरिया से होगा। यशस्विनी घोड़पड़े ने 2 जीत के साथ भारत को मुकाबले में बनाए रखा, जबकि सृजा अकुला ने ओलंपियन और एशियन गेम्स मेडलिस्ट सुथासिनी साइबेतकवर 3-1 से जीत हासिल करके मुकाबला पक्का कर दिया। भारत ने अब तक एशियन गेम्स टेबल टेनिस में 3 कांस्य पदक जीते हैं। यह सफलता जकार्ता 2018 में मिली थी, जहां भारतीय पुरुष टीम ने एशियन गेम्स में देश के लिए पहला टेबल टेनिस मेडल जीता था। इसके बाद शरद कमल और मनिका बत्रा ने मिक्स डबल्स में 1 और कांस्य पदक जीता। हांगझोउ 2023 में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने महिला डबल्स में 1 कांस्य पदक जीता, तो टेबल टेनिस से भी भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि हमने टेबल टेनिस की बातें की तो कबड्डी कैसे पीछे रह सकता है। तो कबड्डी की बात करें तो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने प्रतियोगिता के अपने दूसरे मैच में, पता है, साउथ कोरिया को 63-31 से शिकस्त दे दी है।
2: जी, जी।
0: और सुनील कुमार की कप्तानी में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा है और साउथ कोरिया को वापसी करने का तो कोई मौका ही नहीं दिया। और प्रशांत, और क्या बोलते हो कि भारतीय जो यूनिट है पूरे मैच में कैसा
2: बेहतरीन प्रदर्शन किया है,
0: है ना?
2: बात अगर हम करें तो कोरिया के 23 पॉइंट के मुकाबले उन्होंने 38 पॉइंट हासिल कर लिया, जबकि डिफेंस ने कई सफल टैकल के साथ रेडर्स का भरपूर साथ निभाया। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम भी रही है विनीता।
0: जी जी बिल्कुल।
2: अब तक हुए 13 टूर्नामेंट्स में से 11 बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है।
0: बिल्कुल, ये गेम ही ऐसा है कबड्डी, बिल्कुल स्पीड वाला पूरे ओवर से खेला जाता है और हमारी टीम, पुरुष टीम ने 9 में से 8 बार स्वर्ण पदक जीता है और सिर्फ जकार्ता में ही नहीं, 2018 की बात करें, उन्हें वैसे तो वहां पर हार का सामना जरूर करना पड़ा था लेकिन कांस्य पदक मिला था। और महिला टीम ने तो 4 में से पता है कितनी बार स्वर्ण पदक लिया?
2: जी,
0: 3 बार स्वर्ण पदक लिया। और 2018 में उन्होंने रजत पदक से ही काम चलाया। वैसे हमारी उम्मीदें तो हमेशा रहती है कि हमें स्वर्ण पदक ही मिले।
2: बिल्कुल। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन के ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और विनीता को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

0: कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ

0: निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
4: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
5: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जैम पोर्टल GEM जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को

0: सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
2: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award, Yam

0: मंथन।
1: ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: भारत की प्राचीन और परंपरागत चिकित्सा और उपचार पद्धति को पूरी देश दुनिया में प्रसारित करने के मकसद से हर वर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और बीते वर्षों में सरकार की बड़ी सफलता रही है कि विश्व स्तर पर आयुर्वेद जिस तरह से प्रसारित हुआ है, उसमें भारत सरकार ने जो पहल की है, मंत्रालय ने जो पहल की है, उस वजह से अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पद्धति को एक नई पहचान मिली है। तो आगामी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव। बहुत स्वागत है सर, और बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी को समय देने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम मनाने जा रहे हैं, किस तरह से ये विशेष है इस बार?
3: इस वर्ष हम 23 सितंबर को 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, और उसके लिए भी हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को योगा को अपनाइए। तो ये इस साल की हमारी थीम है, और इसका जो आयोजन है हमारा ये 23 सितंबर का, ये साल हम महाराष्ट्र के नागपुर में इसको हम मना रहे हैं, और लगभग 150 से ज्यादा देश भी ये आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को मनाते हैं।
2: मंत्री जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि बीते वर्षों में आयुर्वेद को साइंटिफिक एविडेंस या वैज्ञानिक आधार दिलाने में या साक्ष्य का आधार दिलाने में सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, कुछ इस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे?
3: बिल्कुल, आयुर्वेद ने जो वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित पहचान आयुष को आयुर्वेदा को दिलाने के लिए आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर जामनगर में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया है। 2023 से इसके ऊपर काम चल रहा है, और 23 से लेकर आज तक WHO के साथ में हमने 2 ग्लोबल समिट भी वहां पर किए कि वहां पर दुनिया भर से बहुत सारे कंट्रीज के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। पिछले साल दिसंबर में जो ग्लोबल समिट हुआ था उसमें लगभग 127 कंट्रीज से लोगों ने उसको सहभागी हुए थे, और लगभग 27 मंत्री लेवल के डेलीगेशन भी उसमें आए थे। तो उसके माध्यम से हमने ग्लोबल पहचान साक्ष्य के आधारित देने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे आज पूरे देश में 12,500 आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हमारे हैं, और अच्छे तरह से भी वहां पर फुटबॉल है, लोग वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, और आयुष रिसर्च पोर्टल पर भी हमने 43,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर वहां पर हमने अभी तक प्रसारित किए हैं, और एम्स के साथ इंटीग्रेटिव रिसर्च ने आयुर्वेद को वैश्विक वैज्ञानिक मान्यता दिलाने के लिए भी बहुत काम हमने अभी तक कर चुके हैं।
2: निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार का जो एक दृष्टिकोण है वन नेशन वन हेल्थ, इसके तहत देखा गया है कि जो गांव में स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे लेकर बड़े अस्पतालों तक अब आयुर्वेदिक जो पद्धति है उसको पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। तो किस तरह से ये पूरे देश भर में स्वास्थ्य लाभ की एक बड़ी पद्धति के रूप में ये उभरी है और लोगों को इसका लाभ मिला है?
3: ये देखिए, हमारा जो एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य के माध्यम से हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते, मॉडर्न मेडिसिन और आयुष के माध्यम से देते हैं। तो आज प्राथमिक स्तर पर जो है रूरल एरिया में हमारे मैंने 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहां पर आयुर्वेदिक और आयुष के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे, करोड़ों लोगों को सस्ता और सुलभ उपचार वहां पर मिल रहा है, और आयुष को मुख्य धारा स्वास्थ्य प्रणाली में जोड़ने के लिए रोकथाम और उपचार दोनों वहां पर सशक्त हुए हैं। आयुष उपचार को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ने पर भी हमारा विचार किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जैसे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो है ही, उसके साथ सभी लगभग PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इतना ही नहीं एम्स तक सभी जगहों पर आयुष के विभाग खोले गए हैं, और वहां पर हमारे आयुष के डॉक्टर बैठकर आयुष के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं।
2: अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं या पद्धति है उसको लेकर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या अंतर्राष्ट्रीय मानक या गुणवत्ता को लेकर सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, तो इसको लेकर दुनिया भर में दूसरी पद्धतियों के मुकाबले आयुर्वेद के प्रति कैसे भरोसा बढ़ा है, इस पर कुछ आप कहेंगे?
3: अभी तक हमारे आयुष मंत्रालय ने फार्माकोपिया मानक और आयुष वर्टिकल पर 50 से अधिक लैब टेस्टिंग को अनिवार्य हमने किया है। आयुष मार्ग को भी हम बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे आज 150 से अधिक देशों में भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों पर दुनिया का भरोसा कई गुना बढ़ा है। हमारा एक्सपोर्ट भी लगभग 9 से 10 गुना तक इस 12 साल में बढ़ चुका है।
2: भारत ने अपने जो पारंपरिक ज्ञान और रिसर्च को लेकर जो नए कदम उठाए हैं तो उसको कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से, शोध के आधार पर रिसर्च को लेकर?
3: अभी देखो, रिसर्च के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है और रिसर्च सुरक्षा से हमने युवा शोधकर्ताओं को भी उससे जोड़ने का काम किया है। TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से 4 लाख से अधिक फार्मूले को पेटेंट होने से हमने उनको अभी तक बचाया है। ग्लोबल लेवल पे जो भी हमारा काम चल रहा है उसमें आयुर्वेद स्टार्टअप्स के लिए भी हमने 1000 करोड़ तक इनक्यूबेशन फंड शुरू किया है। आयुष रिसर्च

0: पोर्टल पर भी पारंपरिक ज्ञान के शोधों को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है और इससे हमारे युवाओं में शोध, नवाचार और आत्मनिर्भरता का भी एक नया जोश आया है।
1: सरकार की मंत्रालय की हेल इन इंडिया पहल या जो मेडिकल टूरिज्म की पहल है, इसमें आयुर्वेद को किस तरह से प्राथमिकता मिल रही है, कैसे भारत एक बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है इस फील्ड में?
0: ये देखिए, भारत का जो मैंने पहले ही बताया कि वैल्यू ट्रैवल, आयुष वीजा और निर्यात प्रोत्साहन परिषद के जरिए हम आयुर्वेद उत्पादकों को ग्लोबल ब्रांड उनको हम बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक आयुष के बाजार को 23 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर दो गुना करने का लक्ष्य भी हमने रखा है।
1: हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अब जो चिकित्सा की पढ़ाई है उसमें जो एक आयोग का भी गठन किया गया है और उससे कैसे अब जो युवा है वो आयुर्वेद को एक करियर के तौर पर अपना रहे हैं और कैसे इससे आगे आने वाले समय में एक बड़ी संभावनाएं खुलेंगी जो आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में सामने आएंगे।
0: यानी कि हमारे मंत्रालय के अंदर ही हमने NCISM का गठन वहां पर किया है। अभी हम लगभग 750 आयुर्वेद कॉलेज में पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगारोन्मुख उसमें बनाया गया है। नीट के माध्यम से पारदर्शी प्रवेश सुनिश्चित हुआ है। इससे युवाओं के लिए शिक्षण, अनुसंधान, वेलनेस टूरिज्म और वैश्विक प्रैक्टिस में हजारों नए करियर के द्वार खोले गए।
1: प्रधानमंत्री जी का, मंत्री जी जैसे कि विजन है कि घर घर तक जो पारंपरिक आहार है वो पहुंचे, तो उसमें आयुष मंत्रालय या हमारा आयुर्वेद किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है जिससे कि हमारी स्वस्थ जीवन शैली में जो पारंपरिक आहार है उसकी गुणवत्ता है वो ज्यादा से ज्यादा शामिल हो।
0: अभी जो हम देखते हैं कि जो अभी हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो गैर संचारी रोग या बीमारियां जो बढ़ रही है उसका मेन कारण जो है कि खान पान और हमारे लोगों की दिनचर्या, तो उसके लिए भी हमारा आयुष मंत्रालय काम कर रहा है कि आयुष आहार को हमने प्रमोट किया है कि अच्छा आहार लेने से और दिनचर्या अच्छी रखने से बहुत सारी जो बीपी, शुगर, मानसिक तनाव ये जैसी बीमारी के ऊपर हम नियंत्रित कर सकते हैं और लोगों का और युवा पीढ़ियों का भी स्वास्थ्य हम उसके माध्यम से अच्छा और सुरक्षित रख सकते हैं।
1: हम आज डिजिटल दौर में जी रहे हैं और मेडिकल फील्ड में खासतौर पर डिजिटल सेवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में आयुष की डिजिटल सेवाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है?
0: हमारे आयुष मंत्रालय ने अभी तक आयुष ग्रिड, ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज तक 5 करोड़ से अधिक नागरिक को घर बैठे हमने उनको परामर्श दिया है। डिजिटल तकनीक जैसे AI की मदद ने आयुर्वेद को लोकल गांव से ग्लोबल तक बढ़ावा देने का काम भी हमारा मंत्रालय कर रहा है।
1: बिल्कुल, मैं आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि आने वाला जो हमारा समय है वो कैसे हमारी स्वस्थ जीवन शैली में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है आयुर्वेद इसमें, और कैसे भारत का जो एक निर्माण चल रहा है उसमें आयुर्वेद की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है?
0: ये देखो, आने वाला जो समय है वो सही मायने में उपचार का नहीं है, वो रोकथाम का समय है।
1: जी बिल्कुल,
0: दुनिया इलनेस से वेलनेस की ओर मुड़ रही है और आयुर्वेदिक जीवन शैली रोगों जैसे मधुमेह, मोटापा और तनाव जैसे बचाव का सबसे सशक्त समाधान आयुष में है। स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या से ही होकर जाता है। पूरी दुनिया भारत के ज्ञान को स्वीकार कर रही है और यही हमारे सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री भी हमारे उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं।
1: मंत्री जी बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी के साथ आपने अपना समय निकाला और इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आपने विशेष बातचीत हमारे साथ की,
0: धन्यवाद।
2: भारत के स्वास्थ्य ढांचे में आयुर्वेद पद्धति के महत्व और विश्व स्तर पर आयुर्वेद को मिल रही नई पहचान पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट।
3: भारत की 5000 वर्ष पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आज देश की मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न और सशक्त अंग बन चुकी है। वर्तमान में सरकार एक व्यापक रणनीति के अंतर्गत इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय आयुष मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर देश के स्वास्थ्य ढांचे का कायाकल्प कर रहे हैं। वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए 6400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में 12,200 से अधिक आयुष आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जा चुकी है, जहां लोगों को निवारक और

0: प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही लगभग 13,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष डॉक्टरों और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डिजिटल तकनीक और जन सुविधा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय ई संजीवनी टेलीमेडिसिन मंच के माध्यम से अब तक 50 करोड़ से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं, जहां आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श की सुविधा दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के अनुसार अब आयुष उपचारों को बीमा कवर में शामिल किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ समझौता कर कैशलेस इलाज की राह आसान की है। शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए देश भर में आयुष कॉलेजों, स्नातकोत्तर सीटों और शोध पहलों का विस्तार किया जा रहा है। आयुर्विज्ञान और आयुष स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के माध्यम से जड़ी बूटियों की सुरक्षा और प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं। शोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनुवादिनी AI प्लेटफॉर्म की मदद से अनुसंधान पत्रों को 13 भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद का प्रभाव बढ़ रहा है। गुजरात के जामनगर में स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर और विभिन्न देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते आयुर्वेद को वैश्विक स्वीकृति दिला रहे हैं। विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की शुरुआत ने भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। केंद्रीय बजट में आयुष क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन और नए संस्थानों की घोषणा से ये स्पष्ट है कि आयुर्वेद परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संगम से स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में हमारा देश निरंतर अग्रसर है।
1: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
2: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पख्तिका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोडमैप तैयार किया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
3: तटीय और दक्षिणी ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश जारी है क्योंकि डिप्रेशन तट के करीब आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोरापुट, गजपति और गंजाम के लिए कल और परसों के लिए और कलाहंडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी के लिए इस गुरुवार और शुक्रवार के लिए रेड वार्निंग जारी की है। राज्य सरकार ने ओडराफ की 33 टीमें तैनात की है। चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा है और अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण 4 रजत के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
1: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं

0: रोशिबिना देवी से भारत को और अधिक पदक मिलने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में आज शाम संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामकता क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के विरुद्ध है। उन्होंने अफगानिस्तान, उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और वहां के लोगों के कल्याण और खुशहाली के लिए नई दिल्ली के अटूट समर्थन की पुष्टि की। श्री जायसवाल ने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। एक रिपोर्ट।
1: पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल आतंकवाद को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस बयान पर श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया को उनकी बातों पर विश्वास दिलाने से पहले इस्लामाबाद को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करनी होगी। सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के पाकिस्तानी फैसले पर श्री जायसवाल ने कहा कि तथाकथित फैसला स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का फैसला नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान इसे पेश करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक अवैध रूप से गठित न्यायालय का फैसला है। उन्होंने कहा कि भारत इसे पाकिस्तान द्वारा वास्तविकता को विकृत करने का एक और प्रयास मानता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और अपने दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार के लिए झूठ फैलाने की आदत है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग 100 से ज्यादा दिनों से इंटरनेट बंद के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इंटरनेट बंद होने का असर बैंकिंग, व्यवसाय, शिक्षा और जानकारी तक पहुंच रहा है। ग्रीस की जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सेवा या तो ठप है या उन पर बहुत ज्यादा रोक है। यह तब से हो रहा है जब उस इलाके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। POJK में स्थानीय लोगों और पाकिस्तानी सरकार के बीच दशकों में यह सबसे बड़ा टकराव है, जिसमें जानलेवा हिंसा, इंटरनेट पर रोक, पुलिस की बर्बरता शामिल है। यह विरोध प्रदर्शन पहले बिजली और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर शुरू हुए थे और बाद में राजनीतिक सुधारों, ज्यादा जवाबदेही और प्रतिनिधि सरकार की मांग करने वाले आंदोलन में बदल गया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी समेत कई सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में पिछले कई महीनों से POJK में पाकिस्तानी सेना की ओर से भारी बर्बरता दिखाई गई है। भारतीय वायुसेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल का द्विपक्षीय हवाई अभ्यास और वीर गार्जियन 2026 आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन में संपन्न हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास से दोनों वायुसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मदद मिली। अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने Sukhoi-30 MKI राफेल और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित विभिन्न लड़ाकू विमानों को शामिल किया। वहीं जापान की वायु आत्मरक्षा बल ने F-2A लड़ाकू विमान के साथ हिस्सा लिया। मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास से भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी में सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व व्यवस्था बनाने की अपील की। श्री गुतेरस लंबे समय से वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद देशों से सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया जारी रखने का आग्रह करते रहे हैं। उनका यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका

0: कार्यकाल इस वर्ष के अंत में समाप्त हो रहा है। उनके संबोधन के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक शुरू हुई। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के नेता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी प्राथमिकताएं, योजनाएं और चिंताएं रखेंगे। इस वर्ष की बैठक में ईरान, गाजा, यूक्रेन, सूडान, कांगो और म्यांमार में जारी संघर्ष प्रमुख मुद्दे रहेंगे। साथ ही ये सवाल भी चर्चा के केंद्र में रहेगा कि इन संघर्षों को समाप्त करने के लिए विश्व नेता क्या कदम उठा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। उनका ये संबोधन दुनिया के एक बेहद तनावपूर्ण और मुश्किल समय के बीच हुआ है। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में आना सम्मान की बात है और हम काफी प्रगति कर रहे हैं। हमारा देश बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ट्रंप ने अपना भाषण निजी क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ाने, अवैध प्रवासन को रोकने और अपराधों पर रोक लगाने जैसी प्रगति के बारे में बताते हुए शुरू किया, फिर ईरान के साथ जंग शुरू करने के अपने फैसले का जोरदार बचाव किया। भारत और जापान ने आज रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक निश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिवीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैन सिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के निवासी अपने ऊपर जबरन थोपे जा रहे कदमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारतीय और जापानी वायु सेनाओं के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के साथ ही वीर गार्जियन 2026 अभ्यास संपन्न। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने महासभा में अपने आखिरी संबोधन में आपसी निर्भरता पर आधारित दुनिया बनाने का आह्वान किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु के स्टार खिलाड़ी रोशिवीना देवी ने भारत को और अधिक पदक मिलने की उम्मीद। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अपराजिता नायर विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. POJK residents continue to raise voice against coercive measures. Exercise Veer Guardian 2026 concludes as Indian and Japanese air forces strengthen strategic defense partnership. United Nations Secretary General Antonio Guterres pleads for a world built on interdependence in his last General Assembly address. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking medal tally to 7. Men's badminton team and wushu star Rushivina Devi assure country of more medals. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, such instances of

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। सितारा शाम से निकला हुआ है, दिया भी ताक पर रखा हुआ है, कहीं वो रात भी महकी हुई है, कहीं वो चांद भी चमका हुआ है, कोई नींदों में खुशबू घोलता है, दरीचा ख्वाब का महका हुआ है।

हसीन ख्वाब को जब निगाहों का आसरा मिलता है ना, तो पूरी दुनिया हसीन लगने लगती है, क्योंकि ख्वाबों में रंग होता है मोहब्बत का। और मोहब्बत, मोहब्बत से कायम है सारी खुदाई, मोहब्बत है हर रंजो गम की दवाई, ये रंगत ये शोखी ये गुल ये बहारें, मोहब्बत से हंसी है सारे नज़ारे, ये आसमां पे सितारों की कसीदा कारी, ये सर सर हवाओं के नगमा निगारी, सब कुछ मोहब्बत के दम से है कायम, मोहब्बत से ही है हंसी सारा आलम। और मोहब्बत क्या है, कुछ यही कहता है ये अगला गीत।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है, मगर खुशी मोहब्बत है तो गम भी मोहब्बत ही है। मोहब्बत गर नहीं होती किसी के दूर जाने से, ये दिल तन्हा नहीं होता किसी के रूठ जाने से। किसी के दीद की हसरत मुझे पागल नहीं करती, किसी की याद आकर दिल में हलचल नहीं करती। फिल्म लव स्टोरी का ये गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आपके लिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

ना जाने रात की तन्हाई में ये कौन सा जादू होता है कि बीते दिनों की यादें दौड़ी चली आती हैं, धड़कन धड़कन बेचैन हो जाती है, प्यासा प्यासा जर्रा जर्रा बारिश की बूंदें चिंगारी सी सुलगती हैं और तन्हाई विरह में धुनी सी तपने लगती है। फिर ये दिल पुकार कर कह उठता है, क्या कहता है सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के इस गीत में।

मीठे सोज भरे ये नगमे सोई यादों को सहलाते हैं, बीती बरसातों की गुफा में यादों के जुगनू सा जलाते हैं, और ये जुगनू की टिमटिम कोई दास्तां सुनाती है, वो दास्तां जिसमें दो दिल रात के दामन पर कोई ख्वाब सा बुनते हैं, ख्वाब प्यार के इंद्रधनुष का और जन्म जन्म साथ निभाने का। फिल्म भीगी पलकें का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। फिलहाल इस चैनल पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए।

0: expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से पीओजेके में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
3: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi, the

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. स्टूडियो में आज हमारे साथ श्रोताओं चर्चा करने के लिए विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: वार्म वेलकम सुषमा.
2: थैंक यू.
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,350. आरबीआई अब्सॉर्ब्स नियरली 72,000 करोड़ रुपीस फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम थ्रू ओवरनाइट variable rate reverse repo auction, estimates surplus liquidity in banking system to be over 4.9 lakh crore rupees, and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक फिसला, निफ्टी 23,350 के नीचे बंद हुआ. रिजर्व बैंक ने ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम से 72,000 करोड़ रुपए अंतर्लीन किए. बैंकिंग प्रणाली अतिरिक्त नकदी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है. और दुनिया भर में

0: कच्चे तेल के दाम घटे।
1: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और अब आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। तो श्रोताओं, प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 330 अंक गिरकर 74,529 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 85 अंक लुढ़ककर 23,329 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.1% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.2% नीचे आया। इससे पहले बाजार सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण मामूली बढ़त के साथ खुले थे। हालांकि कारोबार के पहले ही घंटे में उन्होंने अपनी बढ़त गंवा दी और बाद में दोनों सूचकांक फिसलकर कारोबार करने लगे। बाजार ने दिन के निचले स्तर से उबरने की कोशिश की, लेकिन अंततः वे गिरावट के साथ बंद हुए।
1: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. The Nifty dropped 85 points to settle at 23,329. In the broader market of the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 Index dipped 0.1%, while the Nifty Small-Cap 100 Index declined 0.2%. Earlier, the markets opened with moderate gains supported by positive global cues. However, they surrendered their initial gains within the first hour of trading, with both indices subsequently moving lower. Although the markets tried to recover from the day's lows, but they ultimately ended in bearish territory.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक घाटे में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में बजाज फिनसर्व 1.5% से अधिक, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस में 1.5% तथा सनफार्मा में 1.3% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इटर्नल लगभग 2%, इंडिगो 1.5% से अधिक और टाइटन के शेयरों में 0.7% की वृद्धि हुई।
1: Sectors edged downward. Among the top losers, housing finance as well as focused IT lost 1%. Capital goods dropped 0.9% and IT fell 0.8%. In contrast, telecommunications climbed 1%, realty increased 0.8%, services rose 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2,087 advanced and 215 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 22 पैसे मजबूत होकर 95.59 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा, हमने देखा कि बाजार ने जो आज अपने कारोबार की शुरुआत की, सत्र की जो शुरुआत की, वो हरी झंडी के साथ की, लेकिन जब खत्म हुआ तो लाल झंडी थी। इस दरमियान क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसे क्रमबद्ध तरीकों से जो क्यूज जिसे हम कहते हैं वो नजर आए इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, जिसने इस तरीके की ट्रैजेक्टरी बनाने में मदद की?
2: देखिए, ये चार दिन के बाद ये बेरिश ट्रेंड फिर से आ गया और एक चीज तो जरूर है, इसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, ये भी है। और दूसरा ये है कि कुछ जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि जुलाई और अगस्त में उन्होंने पैसा डाल दिया था इंडियन मार्केट में, सितंबर में खासकर वो बाहर निकाल रहे हैं। और एक वजह ये है कि एक तो उनको वैल्यूएशंस थोड़ी हाई लग रही हैं और दूसरा वो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं यूएस में और रेट्स उनको वहां, वैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ वहां ज्यादा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पर जो ये जो माहौल आज का है वो इसी वजह से है। हालांकि क्रूड प्राइसेस नीचे आ रही हैं धीरे धीरे, फिर भी हमारे हमारे नजरिए में तो काफी हाई है, $98 है, बिलो $100 आ गई है।
0: क्षेत्रीय स्तर पे हमने बिकवाली देखी आईटी सेक्टर में।
2: हाँ, आई

0: The Forex swap facility has received Forex inflows of over $143.5 billion till September 18, 2026. According to the latest data, foreign currency non-resident bank FCNRB deposits accounted for the overwhelming majority, amounting to $132.98 billion. Meanwhile, overseas foreign currency borrowings, OFCBs, brought in $5.32 billion, and external commercial borrowings, ECBs, contributed $5.29 billion. The Apex Bank introduced the special USD-INR Forex swap facility covering FCNRB deposits, ECBs, and OFCBs inflows on June 8, 2026, to boost the inflow of dollars amid a weakening rupee. The FCNRB deposit scheme was closed on August 31, 2026, while the facility for ECBs and OFCBs remain available until December 31, 2026. Sushma, quick comment on the Forex swap data and how successful this has been.
1: This has been a tremendously successful scheme, and of course we all know that our foreign exchange reserves have gone up as a result of this, and also it has ensured that the rupee depreciation has been curbed. Rupee depreciation at least has been slowed down, and you know, we have had a strengthening of the rupee, so it's really been a win-win situation. And in fact, you know, the fact that it was closed on August 31st, I mean, it was much earlier than it was supposed to, because the inflow was so huge.
2: अन्य खबरों में, अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के दूसरे चरण के सुधारों को आज एक वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। नए कर ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने चार स्तरीय व्यवस्था 5, 12, 18 और 28% को सरल बनाकर केवल दो स्तरीय व्यवस्था 5 और 18% कर दिया। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करना आसान हुआ है, जबकि रिफंड की प्रक्रिया तेज हुई है और लागत में कमी आई है। इससे कारोबारियों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स के लिए प्रक्रियाएं जो हैं वो आसान हुई हैं। सुषमा, मैं आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी इस पर, किस तरीके से जीएसटी जो कर सुधार की जो व्यवस्था है उसने लाभान्वित किया है देश के नागरिकों को।
1: हाँ, तो आई थिंक दिस होल थिंग इज लिंक्ड टू द अदर रिफॉर्म एज फार एज यूपीआई इज कंसर्न्ड, एंड द मर्चेंट डिस्काउंट रेट विच वॉज सपोज टू यू नो द फी दैट वॉज levied the fee that was levied on UPI ye ab tak to हम सबको मालूम है कि यूपीआई की जो फैसिलिटी है बिल्कुल बिल्कुल फ्री थी, लेकिन अब इसके ऊपर एक समझ लीजिए एक टैक्स समझ लीजिए नहीं एक चार्ज है जो सिर्फ मर्चेंट्स को जाता है, सिर्फ जो स्मॉल बिजनेस के ऊपर लागू होता है, और वो भी ट्रांजैक्शन अगर 2000 से ऊपर हो। तो ये जो क्लैरिफिकेशन आज आया है, ये कहते हैं कि ये जीएसटी इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, ये छोटे उद्योगपति और डिजिटल पेमेंट्स को और महंगा नहीं करेगा। हाँ, इनके ऊपर भार और नहीं पड़ेगा।
0: The Securities and Exchange Board of India, SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey, highlighted the remarkable resilience and massive expansion of India's capital markets. Addressing a press conference, Mr. Pandey affirmed that SEBI's priority is to reduce avoidable friction and use technology intelligently while keeping trust at the center. He highlighted the Swagat F1 framework, which has fast-tracked the digital onboarding of over 200 trusted foreign investors since June this year. SEBI has also launched DMAT 2.0, a pilot project for the tokenization of corporate bonds using distributed ledger technology. The chairman also mentioned that SEBI is consulting on new frameworks, including a credit riskometer to help investors better understand credit risks and stronger cybersecurity protocols to bolster market resilience. Sushma, the SEBI chief has also talked about India's equity market.

0: 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.9% लुढ़ककर 2,32,922 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं आर्थिक सुर्खियों की तरफ।
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,350, आरबीआई अब्सॉर्ब्स नियरली 72,000 crore rupees from banking system through overnight variable rate, reverse repo auction, and global crude oil prices declined. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए लुत्फ उठाते हैं गीत मेरे मनमीत का। पहला गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत। अगला गीत फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अभी आपने फिल्म कश्मीर की गली का ये गीत सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इससे पहले आपने फिल्म दूल्हा दुल्हन का गीत मुकेश की आवाज में सुना। इसी गीत के साथ ही अब गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। जुड़ते हैं समाचारों से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म जूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया कई गंभीर तनाव और चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में आना उनके लिए सम्मान की बात है और अमेरिका काफी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, अवैध प्रवासन रोकने और अपराध पर लगाम लगाने जैसी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए की। इसके बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अपने फैसले का बचाव किया। श्री ट्रंप ईरान पर हुर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलने के समझौते में देरी का आरोप लगाया। भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। बिहार के जमुई जिले में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक प्रीति वर्मा को पत्र लिखकर 7 दिन के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
3: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित हैं। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security." Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the two-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads of states and union territories in New Delhi yesterday, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi yesterday met Shri Shri Vishwa Prasanna Teerth Swamiji of Shri Pejavara

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

इस गीत में मोहब्बत की एक बेहद सादगी भरी गुजारिश है, ना कोई शिकवा ना कोई जिद, बस अपने महबूब से इतना सा कहना है कि दिल ने प्यार मांगा है तो उसे ठुकराइए नहीं। कॉलेज गर्ल फिल्म का ये गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। शिव कुमार सरोज ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

रिश्तों की खूबसूरती शायद इसी भरोसे में है कि हालात चाहे जैसे हों, साथ कभी ना छूटे। इसी एहसास को आवाज दी फिल्म जुर्म के इस गाने में। इसे गाया साधना सरगम ने और कुमार सानू ने।

कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस आंखें मिलती हैं और दिल की सारी बातें कह दी जाती हैं। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है जिसे नापा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। होटल फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज में। उषा खन्ना ने संगीत दिया और इसे लिखा इंदीवर ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आधी रात का सन्नाटा जब अपनी गहराई में उतरता है तो हवाओं में भी जैसे कोई मीठी सी खुशबू घुलने लगती है। दिल बेखबर सा बहकने लगता है और रात की तन्हाई में हर एहसास कुछ और भी हसीन हो जाता है। उत्सव फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। वसंत देव ने इसे लिखा और संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अपने घर अपने पिया के घर की रानी होने का एहसास ही कुछ और है। इंतजार में सजी आंखें, दिल में मिलने की खुशी और हर आहट पर जैसे ठहरती हुई धड़कन। पिया का घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ऐसे करें संतुलित इस्तेमाल। कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हुआ है 12:46 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो जिंदगी की हर खुशी उसी एक शख्स से जुड़ जाती है। उसकी मौजूदगी में हर पल खूबसूरत लगता है और उसकी चाहत ही जैसे जीने की वजह बन जाती है। अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

स्वामी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अमित खन्ना ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 34 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंक वाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और

वक्त हुआ है 1:10, वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

नहीं होती, मगर कभी कभी दिल चाहता है कि सामने वाला अपने मन की बात खुलकर कह दे। कोई झिझक नहीं, कोई पर्दा नहीं, बस दिल है, दिल में जो भी बात है वही सच सच कह दे। बादल फिल्म का आपने गाना सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

जब इंतजार हद से बढ़ जाए तो दिल की धड़कनें भी जैसे एक ही पुकार बन जाती है, लौट आओ, अब और इंतजार नहीं होता। तन्हाई में डूबा दिल बस अपने हमदम की आहट का इंतजार करता है। मधुमति फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

जब दो दिलों की धड़कनें एक सुर में मिल जाएं, तो मोहब्बत अपने आप एक खूबसूरत गीत बन जाती है। तुम्हारे सुर और मेरे सुर का ये मिलन ही तो रचेगा प्रेम की वो मधुर धुन, जिसे दिल बरसों तक गुनगुनाता रहेगा। गूंज उठी शहनाई से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में।

अपने कान का बाला ढूंढती हुई इस चंचल धुन में लोक संगीत की मिठास भी है और प्रेम की खूबसूरत छुअन भी। आपने सुना, ये गीत सुना गंगा जमुना फिल्म से। लता मंगेशकर ने इसे गाया और इसे लिखा शकील बदायूनी ने, संगीत दिया नौशाद ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 48 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: चलना,
1: क्यों माने
0: संभल के चलना,
1: क्या जाने
0: यही तो मौसम।
2: यही तो मौसम है कुछ पल बेफिक्र होकर जीने का, दिल की सुनने का, मुस्कुराने का और जिंदगी की हर छोटी सी खुशी को खुलकर महसूस करने का। कल हमारा है फिल्म से आपने गाना सुना, आशा भोसले और रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

0: खुदा।
1: जब सुरों की मीठी तान छेड़ती है दिल के तार, तो मन भी कहाँ ठहरता है, बस झूम उठता है संगीत की लय पर। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने गाना सुना, रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

मोहब्बत की राह आसान नहीं होती। यहाँ हर कदम पर दिल को संभाल कर चलना पड़ता है। कभी प्यार मुस्कान देता है तो कभी वही प्यार आंखों में नमी छोड़ जाता है। उड़न खटोला फिल्म से आपने गाना सुना। रफी की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

कभी कभी जिंदगी हमें अपनों से दूर तो कर देती है, मगर दिल की डोर को तोड़ नहीं पाती। बिछड़ने की इसी कसक और यादों की इसी मिठास को अपने सुरों में समेटा ये गीत आपने सुना, जिसमें एक दिल दूसरे दिल से बस इतनी सी गुजारिश करता है कि जहां भी रहो हमें अपनी यादों से कभी दूर मत करना। जबक फिल्म का आपने गीत सुना, रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

कुछ तलाश ऐसी होती हैं जिनका कोई पता नहीं होता। बस दिल जानता है कि किसी की कमी है और वही कमी हर पल उसे किसी अनजानी मंजिल की ओर ले जाती है, जैसे भटके हुए मुसाफिर अपनी मंजिल तलाशते हैं। यास्मीन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जानेसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया श्री रामचंद्र ने।

शाम की खामोशी जब धीरे धीरे रात में ढलने लगती है तो तन्हाई और भी गहरी महसूस होती है। ऐसे में किसी अपने की याद, उसकी बातें और उसका गम दिल के बेहद करीब आ जाता है। आह फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

अमर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 44 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। ये समझौता श्री ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की घोषणा के कुछ दिन बाद हुआ है। समझौते के तहत ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में ही रहेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने व्यापार संपर्क मंच का भी जिक्र किया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां और पार्श्व गायिका कृष्णा मुखर्जी का आज मुंबई में 75 वर्ष की आयु में निधन।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी आपके साथ।

मोहब्बत का ये रोग ऐसा रोग होता है जिसका इलाज किसी दवा में नहीं, बस महबूब की एक झलक से होता है। दिल जब प्रेम रोगी हो जाए तो फिर वैद्य भी क्या करे। प्रेम रोग फिल्म का ये गाना आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जिंदगी यूं ही छोटी छोटी खुशियों और खूबसूरत पलों से मिलकर बनती है, तो क्यों ना आज की इस रात में कुछ पल मोहब्बत के नाम कर दिए जाएं, जहां शिकवे ना हो, कोई शिकायत ना हो, बस साथ हो, मुस्कुराहट हो और दिल में प्यार की एक मीठी सी धुन हो। क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 13 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कभी कभी जिंदगी की राहें भी किसी सुहानी डगर की तरह होती हैं। कहाँ ले जाएंगी ये पता नहीं होता, बस कदम बढ़ते जाते हैं। नदिया के पार का ये गीत भी ऐसी ही मासूमियत और गांव की मिट्टी की खुशबू से भरी राहों का एहसास कराता है। ये गीत आपने सुना हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए प्यार की गहराइयों को शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। बस इतना एहसास काफी है कि उस शख्स की मौजूदगी जिंदगी को मुकम्मल बनाती है और उसकी गैर मौजूदगी एक खालीपन छोड़ जाती है। कुदरत फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

दिल की भी अपनी एक खामोश दुनिया होती है। ये लोग मोहब्बत को सिर्फ पाना नहीं, निभाना भी जानते हैं। दिल में कितना ही दर्द क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कान सजाए रखते हैं और अपने गम को सीने में छुपा लेते हैं। शायद यही तो सच्ची मोहब्बत की पहचान है। दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

साथ साथ फिल्म से आपने ये गीत सुना चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। वक्त हुआ है 2:51 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार समाधान तलाशना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी इराटोस्थनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य अनेक परछाइयां एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम

0: space. For Delhi, IMD said the national capital will witness mostly clear skies with no rain. And that is the end of this news bulletin.
1: सौ दशमलव एक मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना ससदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इश्क एक ऐसा एहसास है जिसकी महक से आप सारा दिन सरोबार रहते हैं। सुन ए बहारे हुस्न, तुझे दिल का हाल क्या बताएं? सुन ए बहारे हुस्न, तुझे दिल का हाल क्या बताएं? तेरी हर एक अदा पर हम तो फिदा हो जाएं। ये रात, ये हवा और ये संगीत का समा, बस तेरा नाम ही अब हमारी धड़कन की सदा बन जाए।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म नाइट इन लंदन से अभी आपने गीत सुना। हवाओं में बिखरी है जो खुशबू किसी अपने की, हवाओं में बिखरी है जो खुशबू किसी अपने की, ये उसी प्यार का जादू है, उसी की कसक है। सुनो तो जरा इन फिजाओं की सरगोशी को, ये दास्ताएं मोहब्बत है किसी अपने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रिश्ते जमीन पर बनते हैं, पर सच तो ये है कि असली रिश्ता वही है जहां दिल से दिल का तार जुड़ जाए, जहां लफ्जों की जरूरत ना हो, बस खामोशी ही सब कुछ कह दे। आइए सुनते हैं चरित्रहीन फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना।

लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में फिल्म संगम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी के सफर में कब कौन अपना बन जाए ये वक्त भी हमें नहीं बताता। बस एक हसीन पल होता है और बात दिल तक पहुंच जाती है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म शक्ति से

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अशांति से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार में कसमें वादे होना लाजमी है और कसमें वादे देकर ऐसे लगता है जैसे एक अटूट विश्वास का रिश्ता कायम हो गया है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कसमें वादे से ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म राज से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आन मिलो सजना से।

दोस्तों अब हम भी चलते हैं और हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी, सुबह 6 बजे तक मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता

0: नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितेन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार समाधान तलाशना है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमरीका सहित 8 मित्र देश अपने हवाई संसाधनों के साथ अभ्यास में भाग लेंगे। वहीं 32 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी एराथोस्तनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य अनेक परछाइयां एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी हमें हर मोड़ पर आजमाती है, पर हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है और अपनी मंजिल को पाना होता है। जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होगा ना दोस्तों, तो जिंदगी आपको आजमाना भी छोड़ देगी।

साधना सरगम की आवाज में फिल्म जिंदगी तू ना आसमां से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, जीवन से कभी हार नहीं माननी है और हर मुश्किलों में आगे बढ़ते जाना है, बस ये बात अपने मन में हमेशा रखिए। आइए सुनते हैं दूर के राही फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, जिंदगी में हम कितना कुछ देख लेते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी मिलन कभी विरह, कभी प्रेम तो कभी नफरत, और कभी आशा और कभी निराशा। आइए ऐसा ही कुछ गीत सुनते हैं, जिंदगी आ रहा हूं मैं, मशाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

सुबह के 4:28 और 40 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म शर्मीली से।

दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ अस्थाई है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसका आनंद लें, क्योंकि वह हमेशा रहने वाला नहीं है। और यदि कुछ बुरा चल रहा है तो भी चिंता ना करें, क्योंकि यह भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर, कमलेश अवस्थी, अनवर की आवाज में नसीब फिल्म से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सच है क्या सब सच।
1: मुकेश की आवाज में फिल्म जागते रहो से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हम किसी के चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट ला दें तो समझो कि हमारा आज का दिन सफल हो गया। और अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं तो ऐसा समझिए कि आपके कर्मों में एक अच्छा कर्म बीच में जुड़ गया है, उस लिस्ट में आपका एक अच्छा कर्म जुड़ गया है। आइए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, ये तो आपको पता लग ही गया कि कैसे आप अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं, पर जिंदगी में अगर आपने कुछ और चाहे सीखा हो या ना हो, पर प्यार की भाषा बोलना तो सीख ही लीजिए। आइए सुनते हैं फूल और पत्थर फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

छोटी बहन फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाज़ में। और इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूँगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वो वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

0: भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज एंड एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara in Gujarat today. During the ceremony, the president will confer degrees on more than 12,600 students. She will also award gold medals to students for their academic achievements in undergraduate and postgraduate programs. Later, President Murmu will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of the Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, she will also inaugurate the Spiritual Awakening for World Renewable Project and virtually launched the Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. The President is on a 3-day visit to Gujarat. Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity in at Ekta Nagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations." Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, President Murmu honored a total of 92 awardees from across the country. Prime Minister Narendra Modi met Sri Sri Vishwa Prasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adoshaka Matha Udupi along with other dignitaries in New Delhi yesterday. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishvesha Tirtha Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishvesha Tirtha Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideas. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security.
4: We strongly condemned the attacks from Pakistan, the airstrikes which were launched on Afghanistan in their Kunar and Paktika province. In this airstrikes, several civilians have been killed. We deeply offer our condolences on the precious lives lost. Such instances of aggression against a sovereign neighbor goes against the regional peace and security. We also reaffirm our support for Afghanistan, for their independence, for the sovereignty, for their territorial integrity.
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada attended the stakeholder workshop in New Delhi yesterday, focusing on ease of doing business, opportunities arising from free trade agreements and ongoing trade-related reforms. Speaking at the event, Mr. Goyal emphasized the government's strategy to strengthen export facilitation through both physical and digital mechanisms. National Human Rights Commission Chairperson Justice V. Ramasubramanian has emphasized the need for greater collaboration among national commissions to promote and protect human rights. He made the remarks while addressing a statutory full commission meeting with representatives of the 7 deemed members of the NHRC in New Delhi yesterday. At the Asian Games in HI Nagyo, Japan, double Olympic medalist Manu Bhakkar and Tokyo 2020 silver medalist Mirabai Chanu will headline India's Day 4 campaign today with several medal opportunities in the offing. In shooting, Manu Bhakkar will compete in the women's 10-meter air pistol event alongside Suruchi Singh and Isha Singh. The trio will compete in the team event and individual qualification this morning with the individual final scheduled later in the day. Weightlifter Mirabai Chanu will take part in the women's 49-kilogram final. India is already assured of medals in men's badminton and women's wushu. On day 3, the Indian women's cricket team clinched country's first gold medal of the games, defeating Sri Lanka by 147 runs in the final. The victory took India's medal tally to 7. And that is the end of this news bulletin.

10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम लेकर आज मैं हाजिर हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को सुबह की इस बेला में मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस शांत माहौल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है दिलराज कौर और साथियों ने।

दोस्तों, रास्ते अगर हंसते हंसते कट जाएं तो जिंदगी में फिर चाहे कितने भी दुख आ जाएं उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता।

0: आशा भोसले, साधना सरगम, नितिन मुकेश और सोनाली की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म खून भरी मांग से। बहुत चीलिए दुनिया की फिक्र में, बहुत चीलिए दुनिया की फिक्र में, थोड़ा खुद के लिए भी जी कर देखो जिंदगी, तू थोड़ा झूम ले। बिल्कुल दोस्तों, हम दूसरों का सोचते सोचते अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने बारे में भी सोचा जाए और थोड़ा सा झूम लिया जाए।
1: ओ जिंदगी तो झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा।

गम की सदा कौन सुने, गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है होश नहीं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म कैसे कहूँ से अभी आपने गीत सुना। सुबह के 5:28 और 24 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। भोर सुहानी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में।